तो इसका असर 3 से 4 दिनों में आपको दिखने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि योग करते समय आपको उसकी स्थिति, मुद्रा, आसन, समय और सबसे ज्यादा जरूरी स्वच्छता का ध्यान रखना है। मन की सारी वृत्तियों को एकाग्रचित रखने के बाद में योग ऐसा एक विषय है जिसे हम करते हैं और अपनाते हैं। आइए अब हम बताने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम यानी कि अंतर्मुखी भ्रामरी प्राणायाम से क्या लाभ मिलता है। वैसे तो अंतर्मुखी भ्रामरी प्राणायाम करने से बहुत सारी समस्याओं का हल मिलता है, साथ ही साथ लाभ भी अत्यंत मिलता है। शारीरिक समस्याओं और कई तरह के रोगों की मुक्ति के लिए रोजाना योगाभ्यास लाभकारी होता है, यह आप सभी को पता है। अलग अलग बीमारियां और शारीरिक समस्याओं के लिए अलग अलग तरह के योगासन बहुत सारे हैं, जिनके नियमित अभ्यास से बेहद फायदा मिलता है, जिसमें से मुख्यतः अंतर्मुख भ्रामरी प्राणायाम है और यह स्वस्थ शरीर के लिए रोजाना भ्रामरी प्राणायाम की अभ्यास करने की सलाह भी देते हैं। अंतर्मुखी भ्रामरी प्राणायाम को हमिंग बी ब्रीथिंग तकनीक के तौर पर जाना जाता है। यह एक अंग्रेजी शब्द है। यह प्राणायाम मनुष्य के दिमाग को तुरंत शांत करने के लिए बहुत ही प्रभावी श्वास व्यायाम होता है, जो कि अंतर्मन से निकलता है। अंतर्मुख भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए कई स्वास्थ्य संबंधी फायदे हैं, जैसे इसमें आपका मन शांत रहता है, चिंता और क्रोध की समस्या कम होती है। जो लोग अक्सर तनाव में रहते हैं उन्हें अंतर्मुखी भ्रामरी प्राणायाम जरूर करना चाहिए। नींद, ब्लड प्रेशर, तनाव को कम करने के लिए यह बहुत ही बेहद कारगर है। इस योगासन के अभ्यास से हमें सबसे पहले शांत और हवादार स्थान पर बैठ जाना चाहिए, जिससे कि हमें प्राणायाम करने में आसानी रहे। वैसे तो अंतर्मुखी भ्रामरी प्राणायाम के कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन गलत तरीके से अभ्यास करने से इसका कोई भी लाभ नहीं होता है। योग चाहे कोई भी हो, उसे सही ढंग से करने पर ही उसका संपूर्ण रूप से लाभ मिलता है। अंतर्मुखी भ्रामरी प्राणायाम गर्भवती महिलाओं के अलावा जिन लोगों को कान के संक्रमण या कान में जलन, सीने में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर या मिर्गी की समस्या होती है, उन्हें अंतर्मुखी भ्रामरी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह हमने अंतर्मुखी भ्रामरी प्राणायाम के लाभ, उनसे जुड़े हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि अंतर्मुखी भ्रामरी प्राणायाम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब एग्जाम्स होते हैं तो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि हमें ये याद नहीं है, हम कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो हम तो हमेशा से आपने मॉर्निंग वाली जो कि योग अभ्यास की जो हमारी पाठशाला है, हम उसमें हमेशा से बताते हैं विद्यार्थियों के लिए प्रमुख, तो विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही प्रमुख है अंतर्मुखी भ्रामरी प्राणायाम, जो कि विशेषकर लाभ होता है परीक्षाओं में। परीक्षा सर पे है और हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होने लगता है कि अभी हमारी कोई तैयारी नहीं है और हम अगर याद करने के लिए बैठेंगे तो हमें यह याद कैसे होगा। कोई भी परीक्षा हो, कोई भी एक महत्वपूर्ण कार्य हो, जरूरी है कि आप सबसे पहले 1 मिनट, आधा मिनट अंतर्मुखी भ्रामरी प्राणायाम करें। तत्पश्चात आप कोई भी काम करें जिससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, चिंता नहीं होती है और आपको बहुत ही अच्छा सा लाभ मिलता है। साथ ही साथ जिस तरीके से हमने बताया कि गर्भवती महिलाएं और जिन्हें मिर्गी की आशंका होती है, जिन्हें ये चीजें प्रॉब्लम है, वह यह अंतर्मुखी भ्रामरी प्राणायाम नहीं करेंगे। कानों से संबंधित अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो वे इस प्राणायाम को ना करें। लेकिन हमारी तो विशेष रूप से यह सलाह है कि विद्यार्थी इस प्राणायाम को यानी अंतर्मुखी प्राणायाम से जुड़े, बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है। तो 30 दिवसीय हमारी योग शिविर में आज के दिन अंतर्मुखी भ्रामरी प्राणायाम आपने सीखा और उसका अभ्यास किया। इसी तरह हम कल फिर मिलेंगे।

0: आपके अगले चरण में यानी कि अगले प्राणायाम की ओर। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।
1: सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगपाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आंख में दिक्कत है तो हम आंख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है, जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारी पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें शौच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि हमारी पूरी शरीर को डिटॉक्स करता है। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें। ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा ले तो आसानी से पच जाता है, इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का, गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद को मिला करके पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है, या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। आइए अब सावधानी की ओर चलते हैं। कफ की अधिकता न हो इसलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में हल्की ठंडी होती है और फिर हल्की सी गर्मी, जिसमें कफ की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। तो ये था दोस्तों वसंत ऋतु, जो कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक के लिए एक आसन अभी हम लोगों ने मिलकर के किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह है सूर्य नमस्कार और कपालभाति, भस्त्रिका जो डिटॉक्स के लिए। अगले ऋतु यानी अगले मौसम के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा अभ्यास, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग।
2: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों हर बार की तरह योगशाला में भी आज मैं जो आप सभी के लिए लेकर के आई हूं वो है समय सारणी, मतलब योग की समय सारणी। अब आप सोच रहे होंगे कि योग की समय सारणी क्या होती है। समय सारणी का मतलब होता है कि किस समय कितना और कौन से प्राणायाम को करना है, और उसका लाभ भी एक साथ हम आज आपको बताएंगे। प्राणायाम के साथ साथ आसन और सूक्ष्म व्यायाम हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले बैठने की विधि, सभी प्राणायाम सिंहासन, सुखासन और पद्मासन में ही करना चाहिए। यदि इन आसन में बैठने में परेशानी हो तो अपनी सुविधा अनुसार आसन में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहला आसन जो होता है वो है भस्त्रिका प्राणायाम, 5 मिनट और बच्चों के लिए 2 मिनट। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर मुंह बंद रखकर नासिका से लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरें तथा उसी गति से नासिका से श्वास को छोड़ें। फेफड़ों में जब हम श्वास भरेंगे तो उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे। आइए दोस्तों अब हम आपको बता दें भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ। दमा, अस्थमा व फेफड़ों से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। साथ ही साथ में आज हम आपको सूक्ष्म व्यायाम भी एक बार ये कराते रहेंगे। उसका कारण पता है आपको, एक प्राणायाम के बाद में एक सूक्ष्म व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए, हमारी मानसिक स्थिति के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। सूक्ष्म व्यायाम, श्वास भरते हुए गर्दन को 5 बार ऊपर नीचे, 5 बार दाएं बाएं, 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यानी कुल मिलाकर के ये जो सूक्ष्म व्यायाम है, ये हमें सर्वाइकल में बहुत ज्यादा आराम देता है। जिन लोगों को गर्दन में अकड़न रहती है, गर्दन के आसपास एरिया में दर्द रहता है, आप एक जगह काम करते हैं काफी घंटे बैठकर, तो ये देखा गया है कि गर्दन में और पीठ में यानी रीढ़ की हड्डी में अकड़न हो जाती है। जिन लोगों को ये चीजें होती हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सूक्ष्म व्यायाम ये वाला कर सकते हैं, जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाना है। दूसरा समय सारणी में आता है कपालभाति, यानी कपालभाति प्राणायाम। समय लगातार 5 मिनट 1 सेकंड में 1 बार। प्रथम चक्र जो है वो हम आगे करते हैं। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर पेट को ढीला रखकर पेट को पीठ की तरफ झटका देना व छोड़ना है। नौसिका से श्वास स्वतः बाहर निकलेगी और अंदर जाएगी। मुंह बंद रहेगा। मध्यम शक्ति व मध्यम गति से इस प्राणायाम को करना है।

नमस्कार श्रोताओं, सुबह की भोरी भोरी की पहली किरण के साथ मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा हाजिर हूँ आपके आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी पहली किरण में। आज का दिन बहुत ही पवित्र और पावन है, कारण आज है सीता नवमी यानी वो दिन जिस दिन माता सीता का इस धरती पर अवतरण हुआ था। सीता हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी और महाकाव्य रामायण की नायिका हैं, जिन्हें लक्ष्मी का अवतार और राम की पत्नी माना जाता है। राजा जनक की पुत्री सीता साहस, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। उनके जीवन में 14 वर्ष का वनवास, रावण द्वारा अपहरण और अग्नि परीक्षा जैसी चीजें शामिल हैं। तो बहुत कुछ है जो हम इनके जीवन से शिक्षा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं के जीवन और जीवन शैली पर चर्चा करेंगे आपके सुबह के कार्यक्रम यानी पहली किरण में। फिलहाल चलते हैं एक प्यारी सी देवी गीत की ओर।

जानकी, मैथिली और वैदेही, इन सभी नामों से जानी जाती हैं माता सीता। उन्हें पृथ्वी की संतान माना जाता है, जिन्हें राजा जनक ने एक हल्की नली में पाया था। ये एक आदर्श पत्नी और सद्गुणों की प्रतीक हैं, जिन्हें देवी रूप में पूजा जाता है, जो अपार कठिनाइयों को धैर्य पूर्वक सहन करती हैं। और चूंकि कहीं ना कहीं ये पृथ्वी की पुत्री यानी धरा, धरती माता की गोद से उत्पन्न हुई, तो जिस तरह से जो सहन शक्ति हम माता धरती में देखते हैं, उसी तरह से इनके भीतर भी इनके पूरे जीवन काल में सहन शक्ति देखी जाती है, जो कि महाकाव्य यानी कि रामचरित के कई सारे दृश्यों में पढ़े जा सकते हैं। अब बात करेंगे रामायण की, जिसमें माता सीता के उस गुण की व्याख्या की गई है जिसे बोला गया है पवित्रता। यानी कि रामचरितमानस में माता सीता के सहन के गुण को ऊपर रखा गया, केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं बनाया गया है। और वही जो कि ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित मानी जाती है, उसमें केंद्र बिंदु माता की पवित्रता को बनाया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है। कुछ कथाओं में माता सीता को माया सीता कहते हैं, यानी छाया या फिर भ्रमित सीता, ऐसे भी उल्लेख पाए जाते हैं, जिनका अपहरण कर लिया गया था, जबकि वास्तविकता में सीता सुरक्षित रही। ये सारी चीजें किंवदंतियों में पाई जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। और सीता नवमी और विवाह पंचमी जैसे त्योहारों के साथ इन्हें विशेष रूप से रामानंदी संप्रदाय के भीतर सुंदरता और भक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है और ये दिवस मनाया जाता है। और अगर माता सीता की बात करें तो विपरीत परिस्थितियों में भी स्वाभिमान नहीं छोड़ा इन्होंने। और इनसे लेने वाली शिक्षा की अगर बात करूं तो EQ यानी कि इमोशनल क्वांटिटी जो इनमें है, इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, तो हमें अपनी भावनाएं समझने और संभालने की कला सिखाती हैं माता सीता। जैसे कि टॉक्सिक रिश्तों, परिस्थितियों में सीमाएं तय कर पाना, हम इनके जीवन की अगर चीजों को देखेंगे, पढ़ेंगे, इनकी चीजों को समझेंगे, तो वहां से हमें ये सीख प्राप्त होगी। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना है और निर्णय स्पष्ट किस प्रकार से रखना है, ये हम रामचरितमानस के माता सीता के पात्र से या फिर रामायण के माता सीता के पात्र से बखूबी सीख सकते हैं। चलिए चलते हैं माता सीता की ध्यान की ओर, एक प्यारी सी देवी गीत की ओर।

श्रोताओं, आपने वो कथा तो सुनी ही होगी जो कि पूरे के पूरे 14 वर्षों के वनवास की है। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं जानकी, भूमिपुत्री, जनकात्मजा, रामवल्लभा, भूसुता, मैथिली, सिया आदि नाम वाली माँ सीता की, जिन्हें माना जाता है लक्ष्मी का अवतार। रामायण और रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों में इनका उल्लेख पाया जाता है। इसलिए आज के आध्यात्मिक शो यानी कि पहली किरण में आज मैं लेके आई हूँ माता सीता की जीवन शैली और उनसे जुड़ी हुई कुछ कलाओं को, उनके कुछ गुणों को, जिसको हम अपने जीवन में उतार कर आत्मसात करके अपने जीवन को और सरल और सुगम बना सकते हैं।

अगर इनके जीवन साथी की बात की जाए तो वो थे प्रभु श्री राम। इनके दो संतान थी लव और कुश। माता पिता की बात करें तो जनक जी इनके पिताजी थे और सुनैना इनकी माता थी। जैसा आप सभी जानते हैं कि सीता रामायण के अनुसार मिथिला के नरेश जनक की ज्येष्ठ पुत्री व अयोध्या के नरेश दशरथ की ज्येष्ठ पुत्र यानी राम की भार्या थी, जिन्हें त्रेता में लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। रामायण के अनुसार राजा जनक के खेतों में हल जोतते समय एक कलश से अटक गया था उनका हल। इन्हें उस कलश में पाया गया था। राजा जनक और रानी सुनैना ने गर्भ में इनके कलाओं एवं आत्मा की दिव्यता को महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा स्थापित किया। उसके बाद सुनैना ने अपनी मातृत्व को स्वीकार किया और पालन किया। उर्मिला इनकी छोटी बहन थी। और त्रेता युग में जब बहुत ही विकट समस्या सामने आई तो माना जाता है कि राक्षस लोग इस तरह उत्पात मचा रहे थे कि सभी देवताओं का वो मर्दन करते जा रहे थे और उससे उनके जो रक्त होते थे उसको भर भर के उन्होंने जनक की भूमि पर गिराया था, जिसकी वजह से सूखा पड़ गया था। उस वक्त जरूरत थी कुछ ऐसे चमत्कार की जिससे भूमि फिर से हरी भरी हो सके। तो फिर राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना ने हल चलाया और वहां से उत्पत्ति हुई माता सीता की, जो कि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। और उसके बाद हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इन्हें जानकी, जनकात्मजा और जनक सुता भी कहते हैं। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण ये मैथिली नाम से भी प्रसिद्ध है। भूमि में पाए जाने के कारण इन्हें भूमि पुत्री या भूसुता भी कहा जाता है। सीता जी का जन्म वैशाख शुक्ल नवमी को मिथिला में हुआ।

श्रोताओं, शो चल रहा है आपका भोरी भोरी का पहली किरण। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और आज हम बात कर रहे हैं माता सीता की। अभी हमने कुछ बातें की और अब बात करेंगे माता सीता के विवाह की। महाराज जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा की, जिसमें राम और लक्ष्मण भी उपस्थित थे। महाराज जनक ने स्वयंवर के लिए शिव धनुष उठाने के नियम की घोषणा की। सभा में उपस्थित राजकुमार, राजा व महाराजा धनुष उठाने में विफल रहे। श्री राम जी ने धनुष को उठाकर भंग किया। इस तरह माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह होना निश्चित हुआ। इसी के साथ उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, और मांडवी जो कि माता सीता की बहन थी का विवाह भरत से। साथ ही साथ श्रुतकृति का विवाह शत्रुघ्न से होना निश्चय हुआ। विवाह उपरांत सीता अयोध्या आई व उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतने लगा। सीता की रीति से अगर कुछ सीखने की बात करें तो कर्तव्य निष्ठा इन्होंने बखूबी निभाया है अपनी लाइफ में। परिवार और कर्तव्य के प्रति निष्ठा, प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी यानी भरोसेमंद व्यक्तित्व, टीम में सम्मान और दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता, ऐसे गुण अगर आपको सीखना है तो माता सीता के जीवन से बखूबी आप सीख सकते हैं।

श्रोताओं, अभी आपने जाना माता सीता के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके विवाह के बारे में। अब बारी आती है उस पल की जब 14 वर्ष का वनवास आया। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ द्वारा पत्नी कैकेयी को दिए गए वचन के कारण श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस प्रकार राम व लक्ष्मण के साथ माता सीता चित्रकूट पर्वत स्थित मंदाकिनी तट पर वनवास के लिए गईं। इसके बाद गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में इन्होंने वास किया। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई। रावण ने मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीची सोने के हिरण का रूप धर राम और लक्ष्मण को वन में ले गया और उनकी अनुपस्थिति में रावण ने सीता का अपहरण किया। आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उनके पंख काट दिए। जब कोई सहायता नहीं मिली तो माता सीता ने अपने पल्लू से एक भाग निकालकर उसमें अपने आभूषणों को बांधकर नीचे डाल दिया। नीचे वन में कुछ वानर इसे अपने साथ ले गए। रावण ने सीता को लंका के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों की उपस्थिति में इनकी देखरेख की गई।

यहाँ पर अगर मैं आपसे माता सीता के जीवन से कुछ गुण सीखने की बात करूंगी तो वो है धैर्य। आजकल के लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो यहाँ से हम सीख सकते हैं। अशोक वाटिका में अटूट धैर्य की आवश्यकता थी जो माता सीता ने दिखाई। माइंडफुलनेस स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीक माता सीता के जीवन से हम सीख सकते हैं। दबाव में भी शांति और केंद्रित कैसे रहते हैं ये हम माता सीता के जीवन से सीखते हैं। पढ़ाई काम में निरंतरता और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए माता सीता का अनुसरण करें। चलिए फिर चलते हैं एक प्यारे से देवी गीत की ओर।

जी हाँ श्रोताओं, अभी हम चलेंगे उस ओर जब एंट्री होती है हमारे महाबली की यानी कि हनुमान जी की। जी हाँ, हमने जाना कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ, उनका पालन पोषण कैसे रहा, फिर उनका विवाह, फिर 14 वर्षों का वनवास, उसके बाद में रावण द्वारा इनका अपहरण, और अब बारी आती है हनुमान जी से इनके भेंट की। जैसा कि रामचरितमानस में और रामायण में पढ़ने पे प्राप्त होता है कि सीता जी की वन वन खोज करते राम जटायु तक पहुंचे। जटायु ने उन्हें सीता जी को रावण द्वारा दक्षिण दिशा की ओर लिए जाने की सूचना दी। राम लक्ष्मण सहित दक्षिण दिशा में चले। आगे चलकर वे हनुमान जी से मिले जो उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित अपने राजा सुग्रीव के पास ले गए। राम जी संग मैत्री के बाद में सुग्रीव ने सीता जी के खोज में चारों ओर वानर सेना की टुकड़ियां भेजी। वानर राजकुमार अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की ओर गई टुकड़ी में हनुमान, नील, जामवंत प्रमुख थे और वे दक्षिण स्थित सागर तट पहुंचे। तट पर उन्हें जटायु का भाई संपाति मिला जिसने उन्हें सूचना दी कि सीता माता लंका स्थित एक वाटिका में है।

श्रोताओं, इस प्रकार हनुमान जी को जामुन जी द्वारा उनकी शक्ति का भान कराया गया। हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंचे। लंकिनी को परास्त कर नगर में प्रवेश किया। वहां सभी भवन और अंतःपुर में सीता माता को ना पाकर वे अत्यंत दुखी हुए। अपने प्रभु श्री राम जी को स्मरण व नमन कर अशोक वाटिका पहुंचे। वहां धुएं के बीच चिंगारियों की तरह राक्षसियों के बीच एक तेजस्विनी स्वरूपा को देख सीता जी को पहचाना और हर्षित हुए। उसी समय रावण वहां पहुंचा और सीता से विवाह का प्रस्ताव किया। सीता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न हैं। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय दिया है। राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रण दिया है। रघुवंशियों की वीरता से अपरिचित होकर तुमने ऐसा दुस्साहस किया है। तुम्हारे श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। इस घटना से निराश रावण ने राम को लंका आकर माता सीता को मुक्त कराने के लिए 2 माह की अवधि दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर श्री राम 2 माह की अवधि तक नहीं आए तो उसके उपरांत रावण व सीता का विवाह होना निश्चय है। रावण के लौटने पर सीता जी बहुत दुखी हुई। त्रिजटा राक्षसी ने अपने सपने के बारे में बताते हुए धीरज धराया माता सीता को और कहा, श्री राम जी रावण पर विजय पाकर उन्हें अवश्य मुक्त कराएंगे। चलिए फिलहाल हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा भजन जो कि श्री राम जी को अर्पित है।

त्रिजटा राक्षसी के धीरज धराने के उपरांत हनुमान जी ने सीता जी का दर्शन किया और अपने लंका आने के कारण को बताया। सीता जी राम व लक्ष्मण की कुशलता पर विचार करने लगी। श्री राम जी की मुद्रिका देकर हनुमान जी कहते हैं कि वे माता सीता को अपने साथ श्री राम जी के पास लिए चलते हैं। सीता जी हनुमान को समझाती हैं कि नहीं, ये अनुचित है, क्योंकि जब तक मेरे प्रभु नहीं आएंगे तब तक मेरा जाना उचित नहीं होगा। मैं तुम्हें भले ही पुत्र मानती हूँ पुत्र, पर समाज की नजरों के लिए ये उचित नहीं है। रावण ने मेरा हरण कर रघुकुल का अपमान किया है, अतः लंका से अगर कोई मुझे मुक्त कराएगा तो वो मेरे प्रभु श्री राम ही होंगे, और ये उनका कर्तव्य भी है। विशेषतः रावण के 2 माह की अवधि का श्री राम जी को स्मरण कराने की विनती करते हुए माता सीता ने हनुमान को आदेश दिया। हनुमान ने रावण को उसके दुस्साहस के परिणाम की चेतावनी दी और लंका को जलाया। माता सीता से चूड़ामणि व अपनी यात्रा की अनुमति ले महाबली अपने यात्रा की ओर अग्रसर हुए। इस प्रकार हनुमान जी सागर तट स्थित अंगद व वानर सेना को अपने साथ लेकर हनुमान जी श्री राम जी के पास पहुंचे, माता सीता की चूड़ामणि दी और अपनी लंका यात्रा की सारी कहानी सुनाई। इसके बाद राम व लक्ष्मण सहित सारी वानर सेना युद्ध के लिए तैयार हुई। तो श्रोताओं, ये थी रामचरितमानस और रामायण में उल्लेखित वो कथा जो कि माता सीता के जीवन पर आधारित थी। इसके अलावा अगर आज की लाइफस्टाइल और उस समय की यानी कि त्रेता युग की बात करें, तो अगर हम माता सीता से सीखने की बात करें तो हर परिस्थिति में करुणा और संवेदनशीलता कैसे सीखनी है, ये हम इनके जीवन से जान सकते हैं। रिश्तों में मजबूती और कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए नेतृत्व क्षमता यानी कि लीडरशिप में वृद्धि के लिए भी हम माता सीता के जीवन से कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें स्वाभिमान, अन्याय के सामने झुकने से इनकार करना, समानता, अधिकार और न्याय की समझ, इन सभी को भी हम माता सीता के जीवन से प्राप्त कर सकते हैं। सम्मानजनक समाज का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है, लड़कियों में आत्मविश्वास और लड़कों में संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, तो माता सीता से ये हम सीख सकते हैं। इसके अलावा प्रकृति से जुड़ाव, प्रकृति से गहरा संबंध, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली किस प्रकार हम निर्वहित कर सकते हैं, ये भी हम माता सीता के जीवन से सीख सकते हैं। संस्कार और वैल्यू एजुकेशन, ये सीखना हो तो हमें लवकुश के श्रेष्ठ संस्कारों की ओर चलना चाहिए। कहा जाता है लवकुश बहुत ही छोटे थे उम्र में, तभी से इन्होंने अपने जीवन को ऐसे जिया था, सारी कठोरताओं को सीखते हुए ये बड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं अगर आप इसे माने तो कम वर्ष में राजा बनना था उन्हें, इसलिए कहीं ना कहीं प्रकृति उन्हें सिखा रही थी, प्रकृति यानी माता सीता स्वयं। और जब हम बच्चों को संस्कार देने की बात करते हैं तो हम उनके साथ कठोरता नहीं करते हैं, हम उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अगली पीढ़ी में नैतिकता और अनुशासन डालना बेहद जरूरी है, परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं इससे, इसलिए न्यू अगर डालनी है तो हमें संस्कार डालने होंगे बच्चों में। और ये भी अगर हम सीखने की बात करें तो हम माता सीता के जीवन से बखूबी सीख सकते हैं।

छोटागण, जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधु है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है, स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसकी करुण झांकी

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में है,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा,
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
4: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

0: अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जो कार्यनान आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो आइए इसी कड़ी में भाई चलते हैं। आज जो दिन है वो है ख़ास, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे जैसे ही आता है मुझे ना जाने क्यों वो मूवीज़ की ज़्यादा याद आ जाती है जो मूवीज़ रिलीज़ होती है, और कहीं ना कहीं उसका इंतज़ार भी होता है यार कि इस बार क्या आ रहा है, इस बार क्या कुछ ऐसा ढंग का आ रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक तो ऐसा लगता है कि भाई बॉलीवुड में कोई ढंग की चीज़ बन ही नहीं रही है, और अगर बनती है तो फिर उसका इंतज़ार हम सबको होने लगता है कि हाँ जैसे ही मौका मिलेगा हम ऐसी चीज़ों को ज़रूर प्रेफरेंस के साथ देखेंगे, ऐसी चीज़ों की तरफ चलेंगे। फिलहाल चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ, चूँकि फ्राइडे जैसा स्पेशल खूबसूरत सा और बदली से भरा थॉट है आज का, तो देखते हैं कि भाई आज का फ्राइडे अपने संग थॉट में क्या लेकर आया है आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

थॉट को जान लेने के बाद मतलब मुझे भी ऐसा लगता है एक लाइन में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं इन थॉट्स के जरिए, मतलब लिटरली बहुत बड़ी बात है। तो चलिए बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या लेकर आया है आपके लिए। आज का थॉट कहता है, तय है कि कुछ भी तय नहीं है, तय है कि कुछ भी तय नहीं है, बस बस इतना ही सा थॉट है। अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी, यानी यही तय है कि तय कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन मजेदार भी होता है। वजह क्यों? क्योंकि मिलता जुलता शब्द है और बिल्कुल ऑपोजिट। फिर ये होता है कि ये कैसे है, अगर तय है तो तय नहीं कैसे हो सकता है, राइट? जाहिर सी बात है भाई, तय अगर है और ये तय है कि कुछ भी तय नहीं है तो सुनने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और लग जाता है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बात बिल्कुल सीधी सी है कि लाइफ में ये तय है कि आने वाली लाइफ में अभी अचानक से अगले पल अगले मोमेंट में क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता, और ये अनसर्टेनिटी ही तय है। और इसीलिए लाइफ खूबसूरत है और इसीलिए हम मेहनत करते हैं और इसीलिए हम खोजते हैं। अगर सब कुछ पहले से ही पता हो कि ऐसा ही होना है और वैसा ही होना है तो फिर कोशिशें छोड़ दी जाए, तो फिर उम्मीदें लगाई ही ना जाए, तो फिर अपनी चीज़ों को करने के बाद समझा ही ना जाए, उसको देखा ही ना जाए और सब बहुत बोरिंग सा हो जाए। अरे पहले से ही पता है यही होना है, बट ऐसा नहीं है। पहले से कहां पता होता है कि बर्बादी होनी है? यह तय होता है कि अगर कुछ ना किया जाए तो बर्बादी कंफर्म्ड होनी है, लेकिन अगर कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली बर्बादी नहीं होनी है। फिर तो कुछ ऐसा है कि आपको नया ही मिलने वाला है खोजते खोजते। लिटरली सही बता रहे हैं। और यही वो वजह है कि आप इस बात को समझते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं करने के लिए, वो इसीलिए क्योंकि हमको लगता है कि हम करेंगे वो चीज़ें चेंज होंगी। ये एक उम्मीद होती है, ये एक आस होती है जो शख्स खुद से करता है, अपनी ज़िंदगी से करता है, और उसके बाद होता भी वही है कि भाई हम जैसा सोच रहे होते हैं वैसा ही कुछ अलग करने का मौका हमको मिल जाता है, और यही अलग हमको अलग फील कराता है। और इसीलिए मुझे ये थॉट बहुत पसंद आया, क्योंकि बिल्कुल सच है, हम बहुत कुछ प्लान करते हैं, बहुत कुछ एक सा बना के चलते, अचानक से चीज एकदम चेंज होती है, जिसको आपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा, जिसका आपने अंदाजा दूर दूर तक नहीं लगाया होगा, वो हो जाता है। और कई बार हम बस यूं ही कर रहे होते हैं, शायद हमको इतने बेहतर की उम्मीद नहीं होती और अचानक से चीजें चेंज होती है और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा मौका मिलता है जिसके बारे में हमने दूर दूर तक नहीं सोचा होता है। यही तो खासियत है जिंदगी की बाबू मुशाय, और इसीलिए तो हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, हर कोई बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, और यही हमारे समाज को, यही इस दुनिया को खूबसूरत बनाने वाली बात है। तो इसलिए ये तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। और जब हमको ये पता चल जाता है कि भाई तय कुछ भी नहीं है तो हमारा फर्ज क्या है? जब तय ही नहीं है तो हर वो चीज करने की कोशिश करें जिसे बेहतर हमको लगता रहे, और जैसे हम बेहतर बनते रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम करेंगे तो होगा नहीं, करने से चीजें होती हैं। क्योंकि ये आप कर्मों के बारे में बहुत ज्यादा सुने हैं, न सिर्फ सुना है बल्कि आपने इस चीज को फील भी किया है कि हाँ कर्म में ही सब कुछ है, अगर कर्म हो जाते हैं तो सारी चीजें हो जाती है, है ना? ऐसे लाइफ के कई सारे एग्जाम्पल्स होंगे, बहुत छोटी छोटी सी चीजें होंगी जब आपने करने की कोशिश की होगी तो हुआ होगा, नहीं तो कितने साल महीने और कितने दौर से आप सिर्फ उसके बारे में सोच रहे थे, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन जब आपने शायद किसी से मिला होगा तो उसके बाद भी कई चीजें टूटी होंगी, क्योंकि उसको बताने वाले लोगों ने अलग अलग तरह से उसे पोर्ट्रे किया होगा, लेकिन जब आपने मुलाकात की होगी किसी से, उनसे मिला होगा, तो फिर आपने अपने अकॉर्डिंग चीजों को समझा होगा।
तो वो आपका एक एक्शन था कि चलो समझ के देखते हैं, चलो चल के देखते हैं। तो फिर चीजें नाम हर चीज दूसरा निकलता है, इसीलिए कौन क्या बताता है आपको ये कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी अपनी निगाहें हैं और आप अपनी तरह से चीजों को समझते हैं। इसलिए आज का थॉट बहुत ज्यादा स्पेशल बना देता है। सो आज के बाद से हमको क्या ध्यान रखना है कि तय है कि तय कुछ भी नहीं है। यस, सो यही तय है कि तय कुछ भी नहीं है। ये सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। आई होप कि भाई आपको ये बात समझ में आ ही गई होगी। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। एंड फिलहाल इन्हीं बातों के साथ में अब हम चलते हैं, एक खूबसूरत सा आपको नगमा सुना देते हैं और उसके बाद देखते हैं आकर के कि भाई इसी सुनने वालों में किन किन लोगों ने चैट बॉक्स पर आकर के लिखा है और उनका पैगाम हम तक लाइव गुड मॉर्निंग गोंडा में पहुंच चुका है। स्टे ट्यून्ड।

0: Yes, this is love. जो कुछ भी आप चाहें उसे करें शिद्दत के साथ, यही तो मोहब्बत है। फिलहाल चलिए आपको ले चलते हैं आपके ही भेजे गए मैसेजेस की तरफ, क्योंकि आप सुनते हैं हमको फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 FM की एप्लीकेशन से। और जब आप सुनते हैं एप्लीकेशन से, तो आपको ऑप्शन मिलता है चैट करने का आपके लाइव शोज में आपके फेवरेट आरजेस के साथ। सो फिलहाल कौन कौन से मैसेजेस आए और किसने भेजे हैं और क्या भेजा है, ये सब कुछ बताते हैं आपको आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई देखिए कई सारे मैसेजेस आ चुके हैं। अब इनमें कौन कौन से मैसेजेस को हम पढ़े? अरे भाई सारे ही पढ़ेंगे, डोंट वरी, इसमें कोई वरी करने की बात नहीं है। सो क्या क्या है, आइए आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या मैसेजेस आए हुए हैं। सो यस, सबसे पहले जो इस शो में मैसेज आया है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। और पहला मैसेज सविता दुबे जी का है और आपने लिखा है, सुप्रभात सभी को, आपको भी सुप्रभात, स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। धर्मेंद्र मोहन जी हैं आवास विकास से, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू, आपको भी। सुशील यादव जी हैं, लिखते हैं, खुशियां बहुत सस्ती है इस दुनिया में, हम ढूंढते ही हैं उन्हें महंगी दुकानों में। क्या बात कही है, बिल्कुल फैक्ट, थैंक यू। नीना मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। और सविता जी कहती है, बहुत सुंदर सुविचार, सही बात कही आपने, थैंक यू सो मच कि आपको विचार काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और मुझे लगता है आप भी इसी बात पे बिलीव करती हैं कि भाई जब कुछ भी तय नहीं है तो चलो करो जो करना है ना। आशु जी मौजूद है हमारी लखनऊ से और लिखती है, सुप्रभात सर जी, सुप्रभात आपको भी, बीत गई तारों वाली सुनहरी रात, याद आई फिर वही प्यारी सी बात, खुशियों से हो हर पल आपकी मुलाकात, इसलिए मुस्कुराते हुए करें दिन की शुरुआत। आहा, चलिए हमने कर भी दिया है दिन की शुरुआत, आपकी भी हो गई होगी दिन की शुरुआत। एंड हमारी प्रीति जी हैं बहराइच से, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आशु जी ने बोला है, वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच कि आपको भी थॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और सविता जी ने कहा है कि मन लगा के गाने इसलिए सुनती हूँ कि मेरी रोटी जल जाती है। ऑलराइट कोई बात नहीं, रोटियाँ जल जाती है ये कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं ना कहीं बात ये जो है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा डेडिकेटेडली आप किसी चीज़ को जब चाहते हैं, जब सुनते हैं, जब उसमें इंडल्ज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो चीज़ें अलग हो जाती है और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आप तक पहुंच जाती है। तो चलिए भाई, दिन की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस के साथ में हो गई है और मुझे लगता है कि आपको और बातें जो आज हम बताने वाले हैं, जो आज फ्राइडे स्पेशल ले करके आए हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है आपके मॉर्निंग वाले शो में। सो फिलहाल हम लेकर चल रहे हैं अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ और उसके बाद आज कई कहानियों का दौर और कई स्टेटमेंट्स, कई सारी बातें, कई फैक्ट चेक्स, बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहे हैं आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद मॉर्निंग जॉक आरजे अरमान।

ईमानदारी से बताइए, अगर आज छुट्टी मिल जाए तो सबसे पहले आप कहाँ जाने की कोशिश करने वाले हैं? जी हाँ, मुझे लगता है कि कभी कभी अलग, कभी कभी क्या मतलब, ऐसा होता है रोज़, जैसे कभी कभी का मूड है, कभी कुछ मूड है। अगर कहीं जाने का मौका मिले और आपको दे दिया जाए छुट्टी अचानक से कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, तो सबसे पहले आप किधर जाने वाले हैं, क्या सोचा है किधर का आप जाएंगे, और अगर किधर जाने वाले हैं उसके बारे में भी आप बता दें तो समझ में आएगा कि आज आपका प्लान किधर का है। मतलब आप जान ही रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप बस बताने वाले कि अगर छुट्टी आपको मिल जाती आज तो कसम से आप बता रहे हैं आप बिना ज़्यादा सोचे समझे वहीं निकल जाते। सो कहाँ का सोचा है कि कहाँ निकल जाते और कैसे जाते, ये ज़रा हमको बता दीजिए, क्योंकि अब हम ला रहे हैं एक दूसरा सुपर्ब सॉन्ग आपके मॉर्निंग वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉकर जनान आपके मॉर्निंग वाले शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा। स्टे ट्यून्ड।

दे दो तुम मुझको नैनीताल का टिकट। क्या बात है भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया हमारी प्रीति जी ने। बहराइच से वो नैनीताल निकलना चाहेंगे अगर आज उनको छुट्टी मिल जाए। कौन सी ट्रेन पकड़ेंगे अभी भी बता दीजिए आप।

भाई साहब, एक आवाज़ तो आपने ज़रूर सुनी होगी और कई बार सुनी होगी, क्योंकि आपके काम की ये आवाज़ होती है। तो चलिए एक बार आपको वापस से इस आवाज़ को रूबरू कराते हैं। जी हाँ, सुना ट्रन या फिर आपने सेकंड वाली आवाज़ तो ज़रूर सुनी होगी। जी हाँ, आपको बताया कि भाई ये जो आवाज़ें हैं, दरअसल ये ऑनलाइन पेमेंट डन होने की बात है, चाहे वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हो। आपको बताया कि आप अगर यूपीआई जो है यूज़ करते हैं तो आप इस आवाज़ से वाकिफ़ होंगे, या आपने ऑनलाइन पेमेंट होते हुए इन आवाज़ों को ज़रूर सुना होगा। फ़िलहाल दो दिन से चर्चा काफ़ी तेज़ी से चल रही है, क्योंकि यूपीआई पर चार्ज लगने की बात हो रही है। बट यूपीआई पर किस तरह से चार्ज लगने वाला है, कितना बढ़ने वाला है, लेकिन किन के लिए बढ़ने वाला है, ये भी जान लेना ज़रूरी है। तो हम सारी जानकारी आपको अब आ करके बताने वाले हैं कि भाई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने साफ कर दी है पूरी बात कि यूपीआई पर कितना चार्ज देना होगा और किसको देना होगा। ये सारी बात आपको हम बताने वाले हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन, और इस खूबसूरत से गाने को एंजॉय करिए। वापस से आते हैं, सो आकर के आपको बताने वाले हैं कि भाई ये आखिर चार्जेस किस चीज़ के हैं और किन लोगों के लिए हैं और कितने हैं।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
0: चलिए भाई, प्रीति जी ने पूछ लिया है, सर जी आपकी हेल्प लूंगी जाने के लिए, क्योंकि मेरे को ना पता, शायद बहराइच से चलती है एक ट्रेन, मैं मॉर्निंग में। ओके, सो लेट मी क्लियर। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि आपको अगर नैनीताल जाना है और जाना है बहराइच से, तो दरअसल आपके पास कौन कौन से पॉसिबल ऑप्शंस हैं और आप कैसे नैनीताल की वादियों में जा सकती हैं विदाउट एनी स्ट्रेस, आराम से, और वहां की वादियों को फील कर सकती है। चलिए बताते हैं आपको।
6: Now you're listening, Good Morning Koda, with your favorite, RJ Khan.

सो देखिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन की अभी बहराइच उत्तर प्रदेश से फिलहाल नैनीताल उत्तराखंड तक के सफ़र के लिए कोई सीधी ट्रेन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नैनीताल एक पहाड़ी एरिया है और वहाँ सीधी रेलवे स्टेशन कोई ऐसा नहीं है। सो नैनीताल के पास में आपने ज़रूर सुना होगा काठ गोदाम का नाम, जो कि लगभग 35 किलोमीटर है और वहाँ पे लाल कुआं जंक्शन है। सो इसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपको हम बताते हैं। पहला आपका सबसे नियर बाई जो रूट है वो वापस से आपके मायके से होकर यानी गोंडा जंक्शन से होकर के ही जाता है और यही सबसे बेस्ट है। जी हाँ, सो आपको चूंकि पता ही है कि भाई बहराइच से गोंडा जंक्शन की दूरी सिर्फ 60 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ से आपको सीधी ट्रेन भी मिलती है गोंडा से। क्या करना है, बहराइच से गोंडा जंक्शन के लिए आपके यहाँ से जो ट्रेन चलती है वो आ सकती हैं, बस से आ सकते हैं आप, टैक्सी से आ सकते हैं, लगभग 1 से 1.5 घंटे के आसपास का सफ़र होता है। दूसरा है गोंडा से काठ गोदाम तक जाना आपका। सो यहाँ से बाघ एक्सप्रेस चलती है जिसका नंबर है 13019 और ये ट्रेन रोज़ाना गोंडा जंक्शन से रात के लगभग 9:30 बजे यहाँ से निकलती है और अगली सुबह लगभग 9:30 बजे ही यानी 12 घंटे बाद काठ गोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। अगली बात जो है कि भाई काठ गोदाम तक तो आप पहुंच गए, तो वहां पे स्टेशन के बाहर ही नैनीताल के लिए शेयरिंग आपको कैब्स मिल जाएगी या प्राइवेट कैब, टैक्सी या फिर उत्तराखंड रोडवेज की बसें आपको आसानी से मिल जाती हैं, जिसकी दूरी महज 35 किलोमीटर है काठ गोदाम से और वहाँ पर भी आपको जाने का जो वक्त लगता है वो 1 से 1.5 घंटा। यानी अगर टोटल वक्त आपका हम बहराइच से नैनीताल तक का जोड़े तो 1.5 घंटा अगर आप मान लीजिए वहाँ से निकलती हैं गोंडा तक के लिए, गोंडा से पकड़ने के बाद ट्रेन जो है 12 घंटे ये लेती है और उसके बाद 1.5 ही घंटे आपको नैनीताल तक पहुँचने में लगता है। सो 12 × 3 = 15, टोटल 15 घंटे लगते हैं और जिसमें से अगर हम मार्जिन ले कर रख ले तो 16, 17, 18 घंटे मैक्सिमम। सो फिलहाल आप 18 घंटे बाद अपनी वादियों में होने वाले हैं, तो जल्दी से प्लान कर लीजिए आप नैनीताल निकलने का, क्योंकि हमने तो आपको रूट बता दिया है कि आपको कैसे जाना बेहतर रहेगा, इजीली कैसे आप ट्रेन से वहां तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि रास्ते में आपको कई सारी जगहों से होकर गुजरने का मौका मिलने वाला है। आपको भाई पता ही है इतनी सारी चीज़ें हैं। अब आप बहराइच से निकलेंगे गोंडा आएंगे, गोंडा से आपको उसके बाद रास्ते में सीतापुर पड़ जाने वाला है, बरेली पड़ जाने वाला है और इतने सारे स्टेशन्स होते हुए आप जो जाएंगे वो सीधे लाल कुआं जंक्शन से होते हुए काठ गोदाम जाएंगे और काठ गोदाम के बाद से नैनीताल काफ़ी ज़्यादा यानी 35 किलोमीटर ही दूर है। और उसके बाद अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो मुक्तेश्वर है, अल्मोड़ा है, रानीखेत है, ये सब बहुत ही खूबसूरत जगह है, पिथौरागढ़ है, ये कहीं ना कहीं आपको घूमने के लिए बहुत बेहतरीन मौके देने वाला है। सो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार आपके लिए होने वाला है। सो आई होप कि भाई अब आप जाने का प्लान ज़रूर करने वाले होंगे। फिलहाल इसी बीच में हमारे कुछ और लिसनर्स जुड़ गए हैं जो चैट बॉक्स पर आए हुए हैं। मिश्रा जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। महेंद्र भी आ गए हैं, सुप्रभात आपको भी, नमस्कार। और हमारी गीता श्रीवास्तव जी भी हैं गोंडा से, गुड मॉर्निंग आपको भी। सो आप सबका वेलकम करते हैं। इसके अलावा जस्ट अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है थ्रू फ्रिक्वेंसी या फिर रेडियो गार्डन, आपका भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आइए, फिलहाल वक्त है आपको ले चलने का, एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा सा गाना सुनाने का आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, क्योंकि आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आज फ्राइडे स्पेशल कई सारी बातें करने वाले हैं। सो इसलिए आपको बने रहना है और सुनते रहना अपना गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, तो भैया आपने कहा था कि आने के बाद आपको बताने वाले हैं कि भाई क्या कुछ होने वाला है आज यूपीआई पेमेंट को लेकर के। सो दो दिन से काफ़ी तेज़ हो गई हैं चर्चाएं, तो इसी बीच मुझे लगता है कि भाई जो विधेयक लाने की बात हो रही है और यूपीआई पर चार्ज लगाने की बात हो रही है, उसके बारे में आपको हम बता दें कि दरअसल ये विधेयक कैसा है, क्या कुछ होने वाला है और इस नियम के तहत क्या बदलाव होने की संभावनाएं जताई जा रही है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो भाई साहब, आपको हम बता दें कि यूपीआई पर चार्ज वाली जो बात है वो दरअसल क्या है और कैसे है। यस, तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि देखिए, आरबीआई ने बताया है, मामला जो है वो ये है कि संसद में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम संशोधन विधेयक 2027 जो है पेश हो रहा है और नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट पर MDR लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। सो क्या होगा कि 2000 रुपए से ज़्यादा मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लागू हो सकता है अगर ये बिल पास हो गया तो। सो अभी बिल पर जो है वो बातचीत जारी है, अभी कोई इसको लेकर आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। सो RBI का क्या कहना है? RBI ने कहा है कि RBI का फोकस UPI को और बढ़ावा देने पर है, सरकार अभी प्रस्ताव पर जो है वो चर्चा कर रही है। सो बात आती है कि अगर मान लीजिए जिस विधेयक पर मंथन जारी है वो लागू होता है तो इससे UPI के यूज़र पर क्या असर पड़ने वाला है। सो RBI का कहना है कि आम यूज़र जो UPI के हैं इन पर कोई असर नहीं होगा, दूध सब्जी किराना जैसी रोज़मर्रा की जो ख़रीदारी है वो पहले जैसी ही रहेगी, ऑटो रिक्शा और टैक्सी का UPI भुगतान भी जो है वो अफेक्टेड नहीं होगा। सो बात आती है अगर आम यूज़र पर अफेक्ट कोई नहीं पड़ रहा है, सब कुछ वैसे ही रहने वाला, तो होने क्या वाला है? सवाल आपका वाजिब है, यानी आपके जहन में जो सवाल आ रहा है वो सही है। तो हम बता दें किस पर लागू हो सकता है ये। दरअसल मर्चेंट पे हो सकता है, मर्चेंट मतलब व्यापारी जो बेचने वाले हैं, इन पर UPI ट्रांजैक्शन पर हो सकता है। बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स पर करेंगे, जो बैंक है और जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है, चाहे वो फ़ोन पे हो चाहे पेटीएम हो, इन पर। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 95% UPI ट्रांजैक्शन 2000 से कम होता है, सिर्फ 5% जो है मर्चेंट ट्रांजैक्शन के इस दायरे में आ सकते हैं। सो MDR क्या है जिसको लाने की बात कही जा रही है, इसको ज़रा हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल MDR मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये एक प्रोसेसिंग फीस है। दरअसल व्यापारी जो है वो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने पर बैंक या फिर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को भुगतान करता है, और ये कस्टमर्स पर नहीं बल्कि व्यापारियों पर लागू होता है, यानी जो व्यापारी इसकी सर्विस लेते हैं उन पर ये लागू होता है। सो MDR जो है डिजिटल भुगतान की प्रोसेसिंग लागत को कवर करने के लिए लिया जाता है। जनवरी 2020 से इसे लागू करने की ये योजना थी, सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसे रोक दिया था। सो क्या है 2000 की लिमिट? जो प्रस्ताव आया है वो 2000 रुपये से ज़्यादा के मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन से जुड़ा है। सो आम यूज़र से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और जो सामान्यतः UPI पेमेंट लिमिट है वो 1,00,000 प्रतिदिन ऐसी ही बनी रहेगी। अस्पताल है, एजुकेशन है या टैक्स जैसी जो कैटेगरीज हैं, इससे ज़्यादा लिमिट की फैसिलिटी रहेगी। सो ये फ़िलहाल अभी बताया, यानी अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि MDR आने की संभावना बनी हुई है, और MDR आने के बाद से जो मर्चेंट व्यापारी हैं उनको जो है वो कहीं ना कहीं भुगतान देना होगा सरकार को, और 2000 रुपए के ऊपर के मर्चेंट की बात की जा रही है। सो अभी फ़िलहाल इसको लेकर कोई आखिरी फैसला नहीं आया है, अभी पूरी तरह से कोई ओके नहीं है, लेकिन हाँ इस पर लगातार विचार जारी है और ऐसा होने की संभावना फ़िलहाल ज़्यादा है। सो फ़िलहाल UPI पर ये जो MDR आ रहा है इसको लेकर अगर आपकी भी कोई राय है तो आप भी चैट बॉक्स पर आकर के बता सकते हैं। फिलहाल इस गाने को एंजॉय करिए, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया अपना गोंडा वाला FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

एक चीज़ गौर की है? नहीं, आज अगर आप देखेंगे या मैं देखता हूँ तो एक चीज़ बड़ी पाते हैं, अगर लोगों की, आम लोगों की बात करें तो लोग मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा टूट रहे हैं। सो आखिर क्या है ये मानसिक रूप से टूटना, यानी मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाते हैं या कुछ ऐसा होता है जो उनके लिए काफ़ी खौफनाक होता है, या वो बहुत ज़्यादा अकेले हो रहे हैं? और ये किसी एक शख्स की बात नहीं है, ये आपके भी कहीं ना कहीं दिल के कोने में ये चीज़ है और इसको आप समझते भी हैं, लेकिन हाँ किसी के सामने कह नहीं पाते हैं क्योंकि इस पर कोई बात ही नहीं करता, और करता भी है तो आप थोड़ा सा डरते हैं कि अपनी बातों को किस तरह से किया जाए। चलिए फ़िलहाल कुछ रीज़न्स हम बताने वाले हैं जो कि कॉमन रीज़न है, कहीं ना कहीं शायद ये हमारे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो और हम इसको समझ पाए और इसके लिए कुछ बेहतर कर पाए, क्योंकि अगर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बेहतर चेंजेस आने वाले हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वाह क्या बात है भाई, इतने उम्दा सॉन्ग के बाद एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो मैंने अभी जाने से पहले कहा था कि भाई लगातार लोग जो हैं वो टूट रहे हैं, और क्यों टूट रहे हैं? मानसिक रूप से, मेंटली जो है वो कहीं ना कहीं उनको झटके लग रहे हैं, कहीं ना कहीं मेंटली परेशान है। और क्यों? इसकी कई वजह है, लेकिन क्या आप भी? हाँ शायद आप भी, थोड़ा सा ही सही लेकिन है आप भी। तो चलिए, ये ऐसी बात है कि हर किसी से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि जब इसको आप जान लीजिएगा तो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा जिनको ये सच में पहुंचा दे ही देना चाहिए, है ना? लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

सो मानसिक रूप से लोग टूट रहे हैं। वजह क्या है? बहुत सारी वजह है और शायद इन वजहों में काफ़ी सारी चीज़ें आपको अपने से मिलती जुलती भी लगे। जी हाँ, बेशक सही सुना आपने। दरअसल बात जो है वो ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आज इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पैसा, बेरोजगारी या फिर रिश्ते, क्या प्रॉब्लम बताएंगे आपको क्या लगता है? अगर मैं यही सवाल आपसे करूं कि आज इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पैसा है, बेरोजगारी है, रिश्ते हैं, आप क्या कहेंगे? शायद कुछ जवाब ऐसे आएंगे कि पैसा है, कुछ जवाब आएंगे बेरोजगारी है, कुछ जवाब आएंगे रिश्ते हैं, और कुछ जवाब आएंगे कि हाँ, इन सभी की वजह से कहीं ना कहीं हो रहा है। हाँ, बेशक बेशक ये फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर हम सबसे बड़ी समस्या की जब बात करते हैं तो आता है मानसिक रूप से टूट जाना। क्योंकि बाहर से मुस्कुराता हुआ इंसान अंदर से बिखरा हुआ हो सकता है। फिर सवाल आता है कि आखिर लोग मानसिक रूप से टूट क्यों रहे हैं, यानी कौन सी ऐसी वजह है? तो आइए, दरअसल मनोवैज्ञानिक इसको कैसे समझते हैं, कैसे समझाते हैं, और समाज शास्त्र की निगाह में या फिर आज की बदलती लाइफस्टाइल को देखते हुए इसके बेस पर हम बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सो पहली चीज जो है, जो अगर हमने बताया ना कि जीवन शैली देखे या समाज शास्त्र के हिसाब से या मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग, तो लगातार कंपैरिजन, जी हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको जरा गौर से सुनिए क्योंकि ये आपकी भी प्रॉब्लम है। सो पहले जो लोग थे वो अपने गांव या मोहल्ले से एक दूसरे का तुलना करते थे, यानी कंपैरिजन करते थे। आज पूरी दुनिया से आपका कंपैरिजन है। सोशल मीडिया पर हर दिन किसी की आप स्टोरी देखते हैं, किसी की लग्जरी लाइफ आप देखते हैं, किसी की खूबसूरती, किसी की नौकरी, किसी का रिश्ता, ये सब कुछ आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देता है। सो धीरे धीरे इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी को दूसरों की हाइलाइट्स से कंपैरिजन करने में अब लगा रहा है। सो ये जो कंपैरिजन है, ये कॉन्फिडेंस को कम कर सकती है और लगातार आपके अंदर असंतोष पैदा कर सकती है। ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल फैक्चुअल है। यानी लगातार कंपैरिजन एक बहुत बड़ा फैक्टर मानसिक रूप से टूटने का ये है। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं अवास्तविक उम्मीदें। जी हाँ, आज हर इंसान जल्दी सफल होना चाहता है, जल्दी पैसा, जल्दी फेम, जल्दी परफेक्ट सा जो है वो लाइफ। लेकिन दरअसल रियल लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जब उम्मीदें सच्चाई से बहुत बड़ी हो जाती हैं तो निराशा बढ़ जाती है। यानी सच्चाई है कुछ और हमारी उम्मीदें उससे ज़्यादा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि लाइफ में कभी आपको मौका नहीं मिलने वाला है, लेकिन एक प्रोसेस है, एक टाइम है, एक नेचुरल तरीका है उसके बढ़ने का। जब तक उससे आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपको सिर्फ निराशा ही समझ में आने वाली है। इसके बाद है अकेलापन। सो हजारों ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में शायद ही कोई आपको सामने से आपकी फीलिंग्स के साथ समझ पाता है। सो मेंटली जो है अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से जो है ये अफेक्ट कर सकता है। सो इंसान को सिर्फ इंटरनेट समझने वालों इंसानों में भी नहीं, बल्कि रियल के लोगों की ज़रूरत है, जहां आप बैठते हो, लोगों से मिलते हो और बातचीत कर सके। इसके अलावा लगातार स्ट्रेस,

जी हाँ, सो बचपन से कई लोगों को सिखाया जाता है कि रो मत, कमज़ोर मत बनो, सब ठीक है बोलो, लेकिन दबाई गई जो भावनाएं हैं ये गायब नहीं होती हैं, धीरे धीरे अंदर ही जमा होती हैं और यही चीज़ आपको तोड़ने का भी काम करता है। तो भावनाओं को दबाना नहीं है, एक्सप्रेस करना है, खुल कर बोलना है ताकि वो चीज़ें अंदर ना रह जाए। इसके अलावा एम्बिशन का अभाव यानी लैकनेस, जी हाँ, सो जिस इंसान के पास ज़िंदगी का एम होता है वो मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ने की वजहें खुद ब खुद खोज लेता है, लेकिन जब डायरेक्शन ही नहीं होती है तो छोटी छोटी जो असफलताएं हैं, मुश्किलें हैं, वो भी बहुत बड़ी लगने लगती है। यानी एक डायरेक्शन आपका सीधा होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी में बहुत घूमना है, आपको बहुत बेहतरीन रिश्तों के साथ आज़ादी से जीना है और आपको लोगों को भी आज़ाद ही रखना है। कुछ भी अगर आप बनाते हैं तो डेफिनेटली आपका जहन जो है वो इस तरफ काम करेगा, और जब कुछ भी नहीं पता है क्या होना है और कुछ सोच भी नहीं पा रहे और कुछ कर भी नहीं रहे, हम बढ़ भी नहीं रहे, बस परेशानी लेते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली परेशानियाँ ही आएंगी। इसके अलावा रिश्तों की क्वालिटी, जी हाँ, सो मानसिक मजबूती सिर्फ पैसों से तो नहीं आती, ये बात तो हमको भी पता है। अगर यकीन की बात करें, रेस्पेक्ट की बात करें, अपनेपन की बात करें, सेफ्टी की बात करें, सो ये रिश्तों में जो मानसिक स्वास्थ्य है ये इन सारी चीज़ों से आता है, ना कि पैसों के ही बिहाफ पे आता है, राइट। इसके अलावा कंप्लीटनेस की जो बात होती है, सो कुछ लोग सोचते हैं या तो मैं सबसे अच्छा बनूंगा या मैं असफल हूँ, यानी या तो आप बहुत अच्छे हैं या तो आप सीधे असफल हैं। अरे भाई, लाइफ बीच में होती है, कोई सफलता हो कोई असफलता, उसको लाइफ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या मानते हैं, लाइफ तो अपने अकॉर्डिंग चलती है, और लाइफ को हम कैसे उसके साथ एक्सेप्ट करते हैं ये देखने वाली बात होती है। सो कहीं ना कहीं ये इंसान सोच पर लगातार जो है वो दबाव डालती है, और सच में जो है हमारी प्रोग्रेस कंप्लीटनेस से ज़्यादा ज़रूरी होती है, यानी सब कुछ हो उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कुछ नहीं था वो धीरे धीरे हम अचीव कर रहे हैं, हम धीरे धीरे उन सारी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने हमेशा आपसे कहा है कि ये जो सफ़र होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा है जो हमारी मेंटली इलनेस है और मेंटल स्ट्रेस है, इसमें फ़र्क, इसके अलावा हम किस तरह से मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इन सारी बातों का मतलब क्या निकलता है, ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। बात बहुत गहरी है और बहुत ज़्यादा आपकी और बहुत ज़्यादा मेरी है, इसलिए ज़रा गौर से सुनिए और कहीं लगता है कि इसको बतौर तोहफा पहुँचा ही देना चाहिए तो पहुँचाइएगा भी ज़रूर।

0: हाँ बच्चों, ए नीला झोला नीली पन्नी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।
1: खड़े हो गए मास्टर साहब।
0: गिनती सुनाओ जरा, और नहीं सुना पाए तो गेट आउट फ्रॉम द क्लास विद पन्नी। सुनाओ।
1: कितने तक सुनाऊं मास्टर साहब?
0: अरे 10 तक सुनाते हो।
1: 1 2 3 4 5 7 8 9 10। एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस।
0: अरे छह कहाँ गया है?
1: मास्टर साहब वो तो मर गया।
0: मर गया?
1: हाँ मर गया।
0: कैसे?
1: आज टीवी पर सुबह सुबह रे बता रहे थे कि डेंगू में 6 की मौत हो गई।
2: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञान स्थली बीट्स नॉन स्टॉप, जहाँ गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM।

0: हाँ जी सुभाई, जाने से पहले हमने आपको बताया था कि आखिर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है, यानी मानसिक रूप से इंसान आखिर क्यों टूट रहे हैं, जिसकी हमने कुछ वजह बताई। कुछ वजहों में आपको हमने बताया कि लगातार खुद का कंपैरिजन करना किसी ना किसी से, कि ये बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा है कि एक ऐसी अनरियल उम्मीदें पालना जो सच्चाई नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। तीसरा हमने बताया था आपको, अकेलापन भी इंसान को बड़ा मुश्किल में डालता है। दोस्त बहुत सारे हैं सोशल मीडिया पर, हज़ारों लाखों में लाइक्स और व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन फ़िलहाल सामने से समझने वाला कोई नहीं होता है। एंड इसके अलावा भावनाओं को अपनी दबाना यानी एक्सप्रेस ना कर पाना। एंड इसके बाद हमने बताया आपको कि हमारी लाइफ का अगर एम नहीं होगा तो हम सच में बड़े प्रॉब्लम में पड़े रहेंगे। इसके अलावा रिश्तों की क्वालिटी यानी सिर्फ पैसों से नहीं आएगी, कि भाई पैसा है तो सब कुछ है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जिनके पास है वो इस बात को जानते हैं, और जिस दिन आपके पास आया है उस दिन के बाद से आप भी इस बात को जान ही गए हैं। एंड इसके अलावा जो है कंप्लीटनेस की दौड़, कि हम पूरी तरह हो जाए, सब कुछ हो, सो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एंड खुद की अपेक्षा करना, जी हाँ, अगली बात हम ये बताने वाले थे। आइए आखिर इस बात में क्या है राज छिपा, ये बताते हैं आपको।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई अब बताने वाले हैं कि ये पॉइंट जो है वो है खुद की ही उपेक्षा। जी हाँ, और खुद की उपेक्षा कैसे होती है? अपनी बुराई करके? नहीं नहीं नहीं, जब आप नींद कम लेते हैं तो वो भी स्वयं की उपेक्षा ही कहलाता है। इसके अलावा कम एक्टिविटी करना, जो आप अगर अपने शरीर का ध्यान नहीं देते हैं यानी कम एक्टिविटी करते हैं, ये भी आप खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी, कभी भी खाना खा ले रहे हैं, कभी भी कुछ हो जा रहा है, उसका कोई नियत वक्त नहीं है, तो भी आप अपने ही साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये सभी जो है एक्टिविटीज़, ये हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मन और बॉडी दोनों अलग अलग नहीं चलते हैं, पहली चीज़। अब दूसरी बात आती है कि भाई मानसिक बीमारी और मानसिक तनाव में फ़र्क क्या है। देखिए, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर इसमें लोगों को लगता है कि भैया ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी मानसिक बीमारी है। बट ये जानना पड़ेगा कि मेंटल इलनेस और मेंटल स्ट्रेस आखिर है क्या। सो हर तनाव जो डिप्रेशन कहला जाता है, बट वो कहलाता है हमारी आपकी भाषा में, बट वो होता नहीं है। हर उदासी जो है वो मानसिक बीमारी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा साइन, कोई ऐसा लक्षण बहुत लंबे वक्त तक बना रहे और रोज़मर्रा की जो आपकी लाइफस्टाइल हो उसको भी प्रभावित कर रहा हो, तो आपको एक्सपर्ट्स से सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। जब आपको लगे कि आपसे चीज़ें नहीं हो पा रही और लंबे टाइम से बनी हुई है, तो ज़रूर आप कर सकते हैं। इसके अलावा मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनना होता है, कुछ बातें हैं जो मनोवैज्ञानिक आपको बताते हैं, जो समाज शास्त्रियों के अकॉर्डिंग है और जो आधुनिक लाइफस्टाइल को देखते हुए हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। पहली चीज़ तो है अपना कंपैरिजन सिर्फ अपने आने वाले कल से खुद से ही करना है, कि आज जैसे हैं इससे बेहतर आप कल होंगे। दुनिया का कोई शख्स आपके कंपैरिजन में नहीं हो सकता। सबकी अपनी स्ट्रेंथ है, सभी की अपनी वीकनेस है, सबके अपने सपने हैं, सबके अलग अलग एम्बिशंस है, सबकी अलग अलग डायरेक्शंस है, सबके अलग अलग करने के तरीके हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा कि आपका कंपैरिजन कोई नहीं है सिवाय आपके। दूसरा है कि भरोसेमंद लोगों से, आप जिन पर भी बिलीव करते हो, भावनाओं को व्यक्त करना सीखें, खुलकर बोलना सीखें, नहीं तो ये आपको मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। रेगुलर अगर नींद नहीं ले रहे तो आपको रेगुलर नींद लेनी है, आपको बैलेंस्ड डाइट लेनी है। इसके अलावा आपको भी कहीं ना कहीं अपनी शारीरिक गतिविधियों को महत्व देना है, यानी कि एक्टिविटीज़ करते रहना हो। अपनी भावनाओं को पहचानना और व्यक्त करना है कि आखिर आप क्या चल रहा है आपके मन में, आप क्या सोच रहे हैं, उसको आपको एक्सप्रेस करना होगा। ज़िंदगी में छोटे छोटे लेकिन सच्चे जो है वो हमको लक्ष्य बनाने हैं, जो सच में हो सकते हैं, ऐसी हवा हवाई वाली बातें नहीं, है ना, जिसको हम करने के लिए सच में बढ़े और हमको खुशी भी हो कि हाँ हम सोच भी रहे हैं और हम करने के लिए बढ़ भी चुके हैं और हमको मिलना भी शुरू हो चुका है। इसका जो निष्कर्ष है वो निकल के आ रहा है कि देखिए, लोग इसलिए नहीं टूट रहे हैं कि वो कमज़ोर हैं, लोग इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि वो लगातार दबाव, कंपैरिजन, अकेलेपन और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी का सामना कर रहे हैं। मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी दुख नहीं होगा, आप परेशान नहीं होंगे, आपके लिए परेशानी नहीं आएगी। ना ना ना ना ना, बिल्कुल गलत है। बल्कि इसका मतलब ये है कि दुख आएंगे, जैसे सभी के जीवन में आते हैं, आपको भी आएंगे, लेकिन उनसे मदद लेना, उनसे सीखना और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना। ये हमेशा याद रखिएगा कि बॉडी का इलाज जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी मन का भी इलाज है, है ना। उन लोगों तक पहुंचा दिए जिनको स्पेशली इसकी ज़रूरत है और आपको लगता है कि हाँ ये बातें उन तक भी पहुँचनी चाहिए, और वो कहीं ना कहीं आपके अपनों में भी आते हैं। भाई मुझे लगता है ये बड़ी ही ज़रूरी बात है और बड़ी ही पेचीदा बात है, तो इसलिए आप तक आनी ये बातें ज़रूरी है। फ़िलहाल अब आपका क्या है मानना, ये आप हमको बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हर किसी की बात है, ये आपके अंदर भी एक कॉर्नर है जहाँ पर ये बातें चलती है। तो चलिए फटाफट से ज़रा आप भी एक्सप्रेस तो करिए, और वैसे भी हम हैं ना जो कद्र करते हैं आपकी भावनाओं की।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: Yeah. Wanna feel that?

0: चलिए हल्के हल्के में कुछ बड़ा भारी भरकम सा आपको हम बता देते हैं। नहीं, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत हेवी सा फील होगा, लेकिन हाँ, बात तो सच में बहुत ज़्यादा बड़ी है। क्या है, जब ये कोई कह दे कि भाई धड़कते दिल के साथ अगर कोई ट्रेन से पहुंचा दे और कहीं ना कहीं उस शख्स को दूसरी ज़िंदगी मिल जाए, तो आप इस घटना को क्या कहेंगे? चलिए पहले तो हम बता देते हैं, उसके बाद सोचने के लिए हम खुद ही आपको मौका जरूर देने वाले हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो भाई आपको हम बता दें, चूंकि ये बहुत बड़ी बात है कि एक धड़कते दिल को भारत में पहली बार ट्रेन से एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाया गया। सो कहीं ना कहीं रेलवे ने बताया कि ट्रेन नंबर 20901 मुंबई सेंट्रल गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस ने एक डोनर के धड़कते दिल को साथ में सूरत से अहमदाबाद लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय की है। और मिनट मिनट पर चूंकि ज़िंदगी और मौत की जंग चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे सुरक्षा बल और लोकल पुलिस ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से यूएन मेहता इंस्टीट्यूट तक दिल को तेज़ी से बिना किसी रुकावट के पहुंचाने के लिए खास ग्रीन कॉरिडोर बनाया था। सो नतीजतन क्या हुआ कि दिल को वक्त के अंदर ही हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया और ट्रांसप्लांट का प्रोसेस वक्त से शुरू हो सका। सो मुख्यमंत्री ने बताया कि अहमदाबाद में मौजूद यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में एक मरीज का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, जिससे उसे नई जिंदगी मिली। सो मुख्यमंत्री ने इसे सेवा का एक उदाहरण बताया। जी हाँ, सो अहमदाबाद के डिविजनल रेलवे मैनेजर ने वेद प्रकाश ने बताया कि भाई भारतीय रेलवे के लिए गर्व और संतोष का क्षण बताया। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया कि भाई भारतीय रेलवे ने इतिहास रच दिया। बहुत ही संवेदनशील और वक्त के अंदर ही जिंदगी को बचाने वाले इस अभियान को रेलवे, लोकल पुलिस, आरपीएफ और मेडिकल टीमों के बीच में बेहतरीन तालमेल के और बहुत तेज़ी से कार्रवाई ने ही इसको मुमकिन बनाया। सो ये अचीवमेंट दिखाती है कि कहीं ना कहीं अगर चीज़ों को सिस्टमैटिक ढंग से किया जाए और एक हौसले के साथ, तो चीज़ें हो ही जाती है। क्योंकि मुझे लगता है ये खबर आप तक पहुंची गई होगी कि भाई एक धड़कते दिल को ट्रेन से गुजरात में ही इधर से उधर एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाया गया था। एंड चूंकि ये बड़ी ही अलग बात थी और फर्स्ट टाइम हुआ था इंडिया में, तो इसलिए शायद ये हमारे लिए काफ़ी अलग सा हमको लगा और मुझे लगा कि ये बात आप तक पहुँचानी चाहिए। सो अगर आपने भी सुनी है ये खबर, जानी है और इसको लेकर के आप भी कोई भावनाएं अपनी व्यक्त करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली करिए, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप लोगों ने, हमने चूंकि मानसिक रूप से जो लोग टूट रहे हैं उसको लेकर के बताया था, जिस पर आपके अपने विचार हैं, आप लोगों ने रिएक्शंस दिए हैं, क्या लिखा है आपने वो हम आकर के ज़रूर बताने वाले हैं। सो फिलहाल आपको ले चलते हैं एक बेहतरीन सॉन्ग की तरफ। इस म्यूज़िकल ट्रैक को एन्जॉय करिए, क्योंकि ये आपके आज के मॉर्निंग शो का धमाकेदार सॉन्ग है।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेख बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: अरे सुना?
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853346।

हाँ जी सुभैया, एक आपने शायद उस ट्रेंड के बारे में सुना या नहीं सुना, लेकिन फिलहाल एक बच्चों वाला ट्रेंड निकला है सेल्फी में, जिसमें बच्चों का पूरा क्लियर चेहरा ही नहीं आता है। सो ये जो है, कहाँ से आया ये ट्रेंड अगर आपको हम बताएं, तो ये सब शुरू हुआ है सऊदी अरब के एक ब्रांड सहाबा अबाया से, इंस्टा हैंडल से। चूँकि इंस्टा हैंडल पर एक बच्चे ने ऐसे अधूरी फ़ोटो अपनी शेयर की, और एक ब्रांड की गलती शायद इंस्टा का नया ट्रेंड बन गई। सो BMW, जेप्टो, आइकिया, डिलीवरी और तमाम ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि इस ट्रेंड में जुट गए हैं, और फिर ये बन गया है इंस्टा का लेटेस्ट ट्रेंड। जी हाँ, सो फिलहाल ऐसे कई ब्रांड हैं जिस पर बच्चे इस तरह से फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, और इसकी शुरुआत जैसा कि हमने बताया आपको कि भाई ये हुई थी सऊदी अरब के सहाबा अबाया से। और अभी फ़िलहाल जितने भी बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, बच्चों की अधूरी फ़ोटो डालने का जो ये एक चलन है, फ़िलहाल वो चल चुका है। चलिए इससे पहले हम बता देते हैं कि भाई क्या क्या मैसेजेस आ गए हैं और किसने क्या कुछ लिखा है। सो हमने जो लास्ट मैसेज पढ़ा था उसके बाद भी कुछ मैसेजेस आए हैं। सनी का आया है, गुड मॉर्निंग अदनान जी, गुड मॉर्निंग टू यू, स्वागत है, वेलकम है। हमारे धर्मेंद्र मोहन जी आ गए हैं, अदनान सर जी हैप्पीनेस भरा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आपको भी, स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। और सविता जी ने बोला कि पहले मैं टूटी थी, अब धीरे धीरे झूल रही हूँ, अब धीरे धीरे आप जुड़ रही हैं, क्या बात है। सो नगेश्वर लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, और लिखते हैं, घड़ी के रुक जाने पर ज़िंदगी नहीं रुकती, जीवन तो अपने हिसाब से चलता ही रहता है। बेशक सही बात है। महेंद्र लिखते हैं कि उम्मीदें मत रखो किसी से, खुद को हद से ज़्यादा बिजी और टाइमिंग हर काम की, तभी अच्छे से ज़िंदगी चलेगी। वाह क्या बात है भाई, आपका भी फ़लसफ़ा ज़बरदस्त है। धर्मेंद्र जी लिखते हैं कि हर रोग का मूल कारण मानसिक तनाव है, किसी भी तनाव को स्वयं पर हावी ना होने दें, भूल कर माफ़ करके आगे बढ़ें, नकारात्मक घटनाएं और बातें सोच सोच कर बीमारी पैदा करती हैं। बेशक सही है। सुजीत शुक्ला आपका भी गुड मॉर्निंग गोंडा शो में वेलकम करते हैं, और आपको भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है धड़कते दिल की। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बहुत खूब सारी हमने बातें की और काफ़ी सारा मज़ा किया, फ़न किया। मुझे उम्मीद है कि भाई कहीं ना कहीं आपको भी आज का ये शो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। फ़िलहाल कैसा लगा आप भी हमको बता सकते हैं, और हाँ फिलहाल बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो के बाद अपने 89.6 FM वाले रेडियो स्टेशन पर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9286 9876 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट समता। गांव के गूंज की अपार सफलता के बाद हम सभी श्रोताओं के लिए एक और एपिसोड मिलकर ला रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य गायिका श्रीमती किरण पांडे जी के मधुर मधुर सावन के गीतों की माला जो है वो पिरोई गई है। और हम सभी मिलकर के एक बार और आपका सावन के एपिसोड में मनोरंजन करने आ रहे हैं। अरे श्वेता, आओ आओ।
5: क्या समता दीदी?
4: क्यों, क्या हुआ?
5: अरे मेरे भैया तो बाहर हैं और इस बार पता नहीं आए कि ना आए।
4: तो क्या हुआ, अगर वो नहीं आए तो हम चलेंगे, और नहीं तो उड़े उड़े जाए मोरी राखी।
5: हाँ ये सही है, उड़ी उड़ी जाए मोरी राखी।

0: क्या हुआ श्वेता, क्यों परेशान हो? अरे इतना प्यारा तो अभी गाना सुनवाया है, चलो सभी मिलकर मेहंदी लगाते हैं।
1: हाँ हाँ, हम भी लगाएंगे, तो चलो सब लगाते हैं।
2: आओ श्वेता, हमने तो मेहंदी के कोन, नींबू चीनी घोल सब तैयार करके रखा है।
3: पर एक मेहंदी गाने के साथ हो जाए,

0: भाई अब सावन के कुछ ही दिन बचे हैं और इस बार सावन बहुत दिनों तक रहा, 2 महीने तक। क्यों समता दीदी?
1: हाँ श्वेता, और इस बार सावन में बाबा दुखरनाथ मंदिर में बड़ी ही रौनक रही।
2: हाँ भाई, ये तो है। बाबा दुखरनाथ मंदिर पे वो जो जल चढ़ाने की कतार, फूल और प्रसादों की दुकानों पर रौनक छाई रहती है, वो बड़ा ही अद्भुत नजारा रहता है।
3: तो चलो भाई, क्यों ना एक भोले बाबा का भजन हो जाए।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं।

0: वाह किरण दी, मजा आ गया, क्या गाना सुनाया है आपने। कैलाश पर्वत पे भोले बाबा रहते हैं।
1: हाँ वो तो है, और वहीं क्यों रहते हैं, उनका वास तो कड़कड़ में है, हर एक चीज में है, सावन में सभी पर उनकी असीम कृपा रहती है।
2: तो किरण दीदी, एक भोले बाबा का भी गीत सुना ही दीजिए ना।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं।

0: वाह, मन आनंदित हो गया, क्या खूब गाना था। अच्छा किरण दीदी, सावन की बात चल रही है तो ये कांवरियों की भी बड़ी रौनक सी लगी हुई है।
1: हाँ श्वेता दी, हर जगह ये कांवरिया जल लेने सरजू नदी तक जाते हैं और तो और वहाँ से पैदल यात्रा करते हैं।
2: हाँ हाँ, सच कहा जिम्मी तुमने, बड़ी ही श्रद्धा से कांवरिया जल लेने जाते हैं और दुखरनाथ बाबा पर जल चढ़ाते भी हैं।
3: तभी तो कहूँ पूरे सावन इतनी बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी। तो चलिए एक गीत कांवरियों के नाम सुना दीजिए।
2: अरे चला चली शिव के नगरिया, कंवरिया ले चला है सैया।

0: देखा सभी ने कैसे सावन में कांवरियों की रौनक रहती है।
1: हाँ हाँ दीदी, बहुत ही सुंदर नजारा रहा। और अब तो सावन भी जा रहा है।
2: हाँ वो तो है।
0: तो चलो भाई, सावन के जाते जाते एक भोले बाबा का गीत भी हो जाए।
1: बिल्कुल किरण दीदी। और अब ये सावन तो बीत ही गया, अब तो ये एक साल बाद ही आने वाला है।
2: तो चलिए किरण दी, जाते जाते एक और सावन गीत हो जाए, भोले बाबा का सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी सुनो।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: हुक्कई से खेलन जइबो सावन मां कजेरिया, बदरिया घेरिया इलन

क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा

हाँ जी दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब भाई। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और इस रंग भरी दुनिया को जानने की फिराक में होंगे। जी हाँ, देखिए रंग भरी दुनिया, और हम दुनिया की बात क्यों ही करें जब हमारा भारत ही इतना ज़्यादा कलरफुल है। भारत पे बात करेंगे, लेकिन भाई कैसे हैं आप सब भाई। जल्दी से आइए हमारे चैट बॉक्स में और ये बताइए कि भैया आपके हाल चाल कैसे हैं। भाई मेरे तो अच्छे हैं, और आपको मेरी एनर्जी देख के पता चल रहा होगा कि एनर्जी इतनी हाई है, तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैं एक ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ, ऐसी कला के बारे में लेकर आई हूँ जिसके बारे में हम सब जानते हैं लेकिन बहुत थोड़ा। और मैं आपको इतना डिटेल में बताने वाली हूँ कि भाई ये कला हमारे कल्चर में क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्या इसका रोल है इकोनॉमी में, क्या रोल है, और भी कई सारी चीज़ें हम बात करेंगे उस पर। तो चलिए पहले चलते हैं आज के मुद्दे पर। आज का मुद्दा जो है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा रंगीन होने वाला है। आप जानते हैं कि आज दिन शुक्रवार है, और शुक्र है शुक्रवार आता है, जिस पर हम बात करते हैं कुछ ऐसी कलाओं की जो कहीं ना कहीं छुप के रह गई हैं, दब के रह गई हैं, लेकिन हमें उसको आगे लेके जाना है जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन भी उसे जान पाए। इसी को जानने के लिए आज के शो में हमने जिसको लास्ट टाइम भी नाम दिया था रंग ए भारत, तो रंग ए भारत में आपका स्वागत है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक और रंग के लिए। जी हाँ, क्योंकि देखिए अब अगर हम बात करें तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कला की जो हज़ारों साल पहले अपना जलवा बिखेर रही है। जी, दीवारों से लेकर के दुनिया भर के फैशन रनवे तक इसी का ही जलवा फैला हुआ है। जी हाँ, देखो वहाँ देखो भाई कि ये कला है, लेकिन हम सोचते हैं ये तो नॉर्मल पेंटिंग है, लेकिन मैं बता दूँ जिस पेंटिंग को हम नॉर्मल कह देते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा यूनिक होती है। मैं बात कर रही हूँ आज मधुबनी की। अब मधुबनी पेंटिंग, ट्रस्ट में गाइस, ये कहानी किसी बॉलीवुड मसाला की मूवी से कम नहीं है। जो मधुबनी आर्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए सीधा चलते हैं बिहार के मिथिला में। हाँ, वही मिथिला जहाँ की सीता मैया थी, और उनकी शादी हमारे अवध में हुई थी रामलला से। अब वहाँ से, मिथिला से जन्मी है एक कि बहुत ही अच्छी धरोहर भारत की, जहाँ से मैं आपको बताऊँ तो जहाँ है अपना मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, मिथिला में ही एक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है उसी के पास, और बस यहीं से निकला है एक नाम मधुबनी, जिसे हम मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसे मिथिला पेंटिंग भी बुलाते हैं, दो नाम, लेकिन भाई जादू इसका एक ही है। अब सुनिए भाई कि इसकी ओरिजिन की स्टोरी क्या है, फुल ऑन एपिक है ये। देखिए, कहते हैं कि राजा जनक ने अपनी बेटी, वही हमारी सीता मैया, उनकी शादी में भगवान राम से जब तय की थी, तो उन्होंने ऑर्डर दिया था पूरे मिथिला नगर को सजाने के लिए। और बस दोस्तों, वहीं से शुरू हुआ ये रंग, ये कला और ये जादू जो आज तक चलते आ रहा है। सोचिए ज़रा कि हज़ारों साल पहले की चीज़ आज भी उतनी ही फ्रेश है, उतनी ही ज़िंदा है। कितना कमाल की बात है ये ना। आज भी हम जब बिहार जाएंगे, मिथिला जाएंगे, या हम अपने ही उत्तर प्रदेश के गाँव के इलाकों में जब जाएंगे, तो हम देखेंगे जब किसी की शादी होती है तो दीवारें रंगी जाती हैं, दीवारों पे उनका नाम भी लिखा जाता है, जो जिस जोड़े की शादी हो रही होती है उसको फूल पत्ती, कई सारे चिड़िया, उन सब की इमेज बना के पेंटिंग करके उसे सजाया जाता है। इसी ही तरीके की होती है मधुबनी पेंटिंग। सबसे पहले ये दीवारों पर की गई थी क्योंकि शादी का उत्सव था, और ये मिथिला से शुरू हुई जो कि आज कई जगह पे मनाई जाती है। बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड के कई इलाकों में इनका क्रेज आज भी उतना ही ज़्यादा है जितना पहले हुआ करता था। लेकिन रुको, स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती है। शुरुआत में ये तो कोई फैंसी गैलरी वाली चीज़ें नहीं थी, ये थी गांव की महिलाओं का अपना जादू, मिट्टी की धरोहर, आंगन में, त्योहारों में, बस एक ब्रश उठाया, अरे ब्रश भी नहीं मिलता था भाई, पहले तो क्या करते थे, एक लकड़ी उठाते थे, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, उस पर कोई सूती कपड़ा, जिसे हम कॉटन का कपड़ा कह सकते हैं, उसको भी बांधते थे, कभी कभी कॉटन लगा देते थे, और उसको कलर्स बना के, कलर भी उनके ऑर्गेनिक हुआ करते थे, नेचुरल हुआ करते थे, उससे पेंटिंग बनाई जाती थी। माँ, बेटी, सास, बहू, बुआ, मासी सब मिलके ये काम करते थे जब भी घर में कोई फंक्शन पड़ता था, कोई त्यौहार होता था। बिना किसी स्कूल के, बिना किसी डिग्री के, ये कला सीधा दिल तक जो है जाती थी, और दीवारों पे जब आती थी ना, तो बिल्कुल लोग के कहते ना, देखते ही आँखें चमक जाने, तो बिल्कुल एक ये ऐसी ही कला थी। अब मैं आपको सुनाती हूँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट। जी हाँ, देखिए 1934 में बिहार में आया एक बड़ा भूकंप। जी हाँ, बहुत बड़ा भूकंप, सब कुछ हिल गया, लेकिन उस दौरान एक ब्रिटिश ऑफिसर रिलीफ का काम से आया था,
और वहाँ पे गिरी हुई थी दीवारें, जिसमें उन्होंने देखा एक अनोखा आर्ट, और वो आर्ट कोई और नहीं था, वो हमारी मधुबनी कला थी। और उसकी आंखें वहीं की फटी रह गई कि बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना मशीन के, सिर्फ हाथों से इतनी बड़ी कला कैसे हो सकती है। और वहीं से ये कला बिहार से लेकर के पूरे विश्व तक फैलने का सफ़र शुरू हो गया। और फिर आया 1960s। देखिए 1960s में जब सूखा पड़ा था बिहार में, तब खुद ही तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सूखा पड़ने पर जो बिहार है उसका दौरा किया था। उसके साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो भास्कर कुलकर्णी नाम का एक ऑफिसर थे, जिन्होंने गांव-गांव घूमते हुए दीवारों पे बनी पेंटिंग को देखा और सोचा कि ये टैलेंट जो है आज कई लोग सराहते हैं, अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने भी सराहा, इसे लेकर भी गए।

हाँ, कलाएं भी जो है हमारी वो भी गई हैं वहाँ पे। आज भी जब कुछ पड़ता है उनके कभी कभी ड्रेसेस में, इवन गुची प्राडा जैसे ब्रांड्स के अगर कोई भी नए प्रोडक्ट निकलते हैं तो उसमें अधिकतर देखा गया है कि भारत से जुड़ी हुई चीज़ों का वो लोग ज़रा ज़रूर जो है कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, कोई ना कोई कैटलॉग में दिख ही जाता है। क्या होता है, कौन सा कैटलॉग है, उन सभी के बारे में हम बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं ही जाना, आपको आना है चैट बॉक्स में और ये बताना है कि जब आप अपने गाँव जाते हैं या जब आप अरे अपने मम्मी या दादी नानी को देखते हैं कोई कला करते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारी जो दादी नानियां हैं ये सारी लोग जो है अभी भी हमारी धरोहर को संजो के रखे, उसको सहेज के रखे। तो क्या आप उसे लेके जाना पसंद करेंगे आगे, या फिर यही होगा कि आगे आने वाली जनरेशन क्या मधुबनी होता है, क्या बांधनी होता है, क्या कथक होती है, इन सबको भूल जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि इनका फ्यूचर क्या होने वाला है, ये ज़रूर से आके चैट बॉक्स में बताइए और इन्जॉय करिए बहुत ही प्यारा सा गाना। इस गाने के बाद आएंगे और आपसे बात करेंगे मधुबनी पे।

जी दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब भाई? आ चुकी हूँ वापस आपका प्रोग्राम लेकर के ज्ञानश्री लाइव, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं मधुबनी पेंटिंग की। जी हाँ, एक ऐसी पेंटिंग जो दीवारों से लेकर के कैनवस तक आई, भारत में नहीं बल्कि विदेशों तक छाई, और इसका जलवा कैसे, क्या सारी चीज़ें हम आज बात कर रहे हैं। तो भैया, बी प्राउड ऑफ योर कल्चर। कितना प्यारा है, कितना रंगीन है। कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे कल्चर ही नहीं है, और हमारे यहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ धरोहर ही धरोहर है, लेकिन हम शायद उसकी कद्र नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब हम करेंगे, क्योंकि अब ये जिम्मा मैंने उठा लिया अपने कंधे पे कि मैं आप सभी को अपने कल्चर की हर एक एक चीज़ों के बारे में बताऊँगी, समझाऊँगी, उसकी इंपॉर्टेंस बताऊँगी, और ये बताऊँगी कि भैया वो कितना कीमती है। अब चलते हैं हम फिलहाल चैट बॉक्स की तरफ। हमारे चैट बॉक्स में कई सारे लोग हैं जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें से एक हैं सनी पांडे जी, जिन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून मैम, चाय और पकोड़े खाकर आई हैं तभी इतनी एनर्जी है आज। नहीं, चाय पकौड़े तो नहीं खाए थे, लेकिन चाय के साथ मैंने ब्रेड खाई थी। पकौड़े मैंने सोचे थे खाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा था बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। चलिए, आप कह रहे हैं तो शाम को आज चाय पकौड़ा ही खाया जाएगा। चलते हैं अपने शो की तरफ, अपने कंटेंट की तरफ, अपनी जानकारी की तरफ। अब देखिए भैया, जानकारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी है और मज़ेदार है। हम वापस हैं फुल जोश के साथ, और उम्मीद है कि वहाँ हम बैठे हैं जहाँ फ़ोन हाथ में और दिल में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके दिलों में। जी हाँ, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बात की कि मधुबनी पेंटिंग जो है वो बनती है तो वो एकदम काइंड ऑफ वन कैसे है। सबसे पहले अगर हम आपको इसका एक मज़ेदार फैक्ट बताएं, तो इस पेंटिंग में आपको मिलेगा ज्योमेट्रिक पैटर्न का तूफान। यानी कि आपको खूब सारे ट्रायंगल्स दिखेंगे, लाइंस दिखेंगी, फूल पत्तियों के डिज़ाइन ज्योमेट्रिकल दिखेंगे। यानी कि जब आप पत्तियां देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो पत्तियां हैं ये कहीं से कर्व नहीं है, ये बल्कि चार लाइनों को जोड़ के बनाई गई हैं। इस पेंटिंग में एक भी खाली जगह नहीं छोड़ी जाती है, जीरो, बिल्कुल भी नहीं। पूरा कैनवस डिज़ाइन से भर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि कलाकार के दिल में ये था कि भैया कोई खाली जगह छूट ना जाए। और मैं आपको याद दिलाऊं कि भाई, जो मेरी परदादी कहती थी, वो भी ये कहती थी कि जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन बनाते हैं, पहले के ज़माने में जब लड़कियों की शादी होती थी तो पियरी रंगी जाती थी। पियरी होती है शादी के लिए पीला कपड़ा, जो लड़की की तरफ से बनता है, जिसमें एक पूरा वाइट कपड़ा लेते हैं, सूती का होता है, जिसे हम कॉटन भी कहते हैं, हमारी अवधि में सूती कहा जाता है और कॉटन कहा जाता है इंग्लिश में। और इसको हम लोग रंगते थे, और फिर इसको कोई क्या होता था कि प्लेन साड़ी येलो पहनता था, कोई क्या करता था उस पर डिज़ाइन बनाता था, उसमें गोटे लगाता था, उसको लेस सजाता था। उसको मधुबनी का भी इस्तेमाल हुआ करता था पियरी को सजाने के लिए। और साथ ही साथ जब शादी होती थी, जैसे मैंने आपको बताया कि दीवारें भी रंगी जाती थी, दीवारों पे भी आर्ट्स बनाई जाती थी। सिर्फ शादी में ही नहीं, बल्कि किसी के यहाँ अगर बच्चे होते थे तो भी, आज भी आप देखेंगे अपने गाँव में, अपने घर में, तो जब बच्चे होते हैं हमारे यहाँ, जब उनके 6 दिन पूरे हो जाते हैं, छठी का उत्सव होता है, बरही का उत्सव होता है 12 दिन पूरे होने पर, तो हमारे घर के दीवारों के आसपास जो है, दीवारों के दोनों ओर एक डिज़ाइन बनाया जाता है, एक आर्ट बनाई जाती है, वो भी एक काइंड ऑफ मधुबनी आर्ट ही है। अब देखिए कि बिहार से निकल के ही उत्तर प्रदेश तक कैसे पहुंचा, और आज भी हमारे जीवन में ये कैसे शामिल है। अब सुनो रंगों की कहानी। पुराने ज़माने में ये सब नेचुरल कलर्स होते थे, यानी कि हल्दी से पीला रंग निकाला जाता था, फूल पत्तों से ग्रीन और रेड निकाला जाता था, कोयले से काला रंग निकाला जाता था, और बिलीव इट और नॉट, गोबर से भी कलर बनाए जाते थे। नेचर का पूरा इस्तेमाल करते थे, और इनसे हम जो है वो आउटलाइन भी करते थे कई बार, जो उसे और सजाने के लिए, जैसे जिसकी आर्ट, जैसे जिसका मन होता था, वो मोती भी लगाते थे उसमें सजाने के लिए, और भी कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, जो इस आर्ट को और भी ज़्यादा निखार देती थी। लेकिन जो इसका रॉ होता था, जो रॉ पेंटिंग होती थी, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगती थी, जस्ट नेचुरल कलर और हाथों की कला होती थी, उसका जो कह सकते हैं टक्कर है, वो आज तक कहीं नहीं है। अब बात करते हैं थीम्स की। अब थीम भी इनकी बहुत ज़्यादा रंगीन हुआ करती थी। पहले के ज़माने में जब हमारे दादा दादी नाना ने ये सब आर्ट बनाते थे, बिहार में भी बनती है और आज भी जो होता है, तो ये कोई ऐसे ही कुछ नहीं बना देते थे कि कुछ भी उठाया सीनरी, जैसे हम बच्चे करते नहीं हैं दोस्तों, कि अपने स्कूल में वो पहाड़ बना देते हैं, फूल बना देते हैं, एक घर बना देते हैं, पहाड़ों के बीच में से नदी निकाल देते हैं। ये ड्राइंग नहीं बनती थी मधुबनी में। मधुबनी में बनते थे देवी देवता,
पूरी शान के साथ। जी हाँ, जैसे राधा हो गई, कृष्ण जी हो गए, दुर्गा माता हो गई, गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी, इन सब के चित्र बनाए जाते थे। और जो खाली जगह भर जाती, जो खाली जगह बच जाती थी, उसमें फूल पत्तियों के भी डिज़ाइन बना दिए जाते थे। साथ ही नेचर के सीन्स भी उसमें बनाए जाते थे, जैसे चांद हो गया, सूरज हो गया, मछली हो गई, मोर हो गया, हाथी, यानी फुल जंगल सफारी। साथ ही साथ डिवोशन जो होता था वो भी दिखाया जाता था। और शादी विवाह में ये सीन इतने ज़्यादा कलरफुल होते थे कि लगता था कि जैसे आजकल के घरों में आपने देखा होगा कि जब किसी के यहाँ शादी पड़ती है तो पूरा घर पेंट कराने लग जाते हैं। शादी का सबसे पहला काम यही होता है कि भैया घर रंगवाओ, घर को पेंट कराओ। और पहले के ज़माने में भी यही होता था कि शादी पड़ रही है, चलो घर में आर्ट बनाओ। और अब एक मसालेदार फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, वो ये है दोस्तों कि मधुबनी पेंटिंग में होती थी पूरी 5 स्टाइल। हाँ भाई, थीम है, रंग है, आर्ट है, तो स्टाइल क्यों ना हो, भारतवासी किसी में पीछे नहीं है, इसमें भी स्टाइल है। वो है भरनी, काचनी, तंत्रिका, गोड़ा और कोहबर। अब कोहबर से आपको कुछ याद आया? नहीं याद आया, मैं बताती हूँ। जरा अपनी मम्मी को बुलाइए, नहीं है, कॉल करिए और पूछिए कि मम्मी कोहबर क्या होता है। कोहबर होता है दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा इसका चलन है। हमारे उत्तर प्रदेश में इन पांचों में से जो कोहबर होता है, इसका चलन बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जब हमारे यहाँ किसी की शादी होती है तो हमारे यहाँ एक कमरा होता है, या फिर हम ज़्यादातर पहले कमरा हुआ करता था। अब क्या होता है, आपने सुना होगा कि हमारे घर में देवता या देवता पितर की भी पूजा होती थी, जो हमारे पितर होते थे उनकी पूजा होती थी, तो एक कमरे का एक कोना होता था जिसे हम कोहबर बोलते हैं, और वहाँ पर इसकी कला जो है ज़रूर लिखी होती थी, ज़रूर बनाई होती थी, दीवारों पे चित्र बनाए होते थे जिसमें देवी देवता होते थे। और हम लोग कहते थे कि ये कोहबर है, यहाँ पे पूजा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब किसी के यहाँ शादी होती थी, कोई बड़ा फंक्शन होता था, यहाँ तक कि भागवत कथा भी सुनाई जाती थी, तो कोहबर में साल भर तक दिया ज़रूर जलता था। डेली उसमें जो घर की बड़ी होती थी वो दिया जलाती थी। और ये कहा जाता था कि कोहबर जो बनाते हैं वो शुभता की निशानी है। अगर कोहबर आपके घर बना हुआ है तो आपके घर में शुभ वाइब, या कह सकते हैं पॉजिटिव वाइब जो है, वो हमेशा आती हैं। हर एक स्टाइल का दोस्तों अपना एक स्वैग है, अपना एक स्टाइल है, अपनी ही एक वाइब है। भरनी स्टाइल की अगर हम बात करें तो इसमें स्ट्रॉन्ग कलर, बहुत ही पतली पतली लाइन ऊपर जो है बनाई जाती थी। जबकि गोदना में जो आप देखते हैं, गोदना ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। आपको मैं याद दिलाऊं कि जो हमारे घर में देखा होगा आपने, दादी नानी के जो हाथों में टैटूज ज़रूर बने होते थे, तो वो टैटू नहीं होता है, टैटू तो आजकल बनता है भाई, पहले गोदना ही होता था। तो ये गोदना सिर्फ दीवालों के लिए नहीं होता था कि दीवालों पर ही बने, ये बिल्कुल टैटू जैसी लाइन्स होती थी जो इंसान अधिकतर अपने शरीर पर बनवाते थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो अपनी दादी के हाथों में तो कहीं ना कहीं फूल पत्ती ज़रूर नज़र आ जाएगी। अगर आप और देखेंगे कि आप और पीछे जाएं और कल्चर डिफरेंस देखेंगे, तो आप अगर राजस्थान और गुजरात के इलाके में जाएं तो वहाँ पे भी ये गोदना बहुत ज़्यादा प्रचलित है। गोदना यानी कि टैटू बनवाना, ये शुभ माना जाता था और ये कहा जाता था कि हर एक इंसान को अपनी लाइफ में गोदना ज़रूर बनवाना चाहिए क्योंकि ये हमारे कल्चर की एक निशानी है। अब सोचिए कि लोगों को अपने कल्चर में उस ज़माने में इतना प्यार हुआ करता था कि वो अपने शरीर पर भी गोदना बनवा लेते थे। लेकिन सबसे कॉमन चीज़ है दोस्तों इसमें प्रैक्टिस, पेशेंस और ट्रेडिशन के लिए फुल रिस्पेक्ट। हाँ तो दोस्तों, अभी तो हमने जाना इसके बारे में फैक्ट, क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे ये हमारे उत्तर प्रदेश से लिंक है, और ये भाई बिहार से भारत में उत्तर प्रदेश तक पहुंचा, झारखंड में पहुंचा, बंगाल तक पहुंचा, और अभी मैंने बताया कि ये गुजरात और राजस्थान के भी कई इलाकों में पहुंचा। और अब हम बताएंगे इसके बारे में और भी रोचक तत्व। रोचक तथ्य ये हैं, देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो ये सिर्फ एक कला हमारे दिल पे ही राज नहीं कर रही, बल्कि इसकी वजह से हमारे घर भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। कैसे, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना हमारे साथ अपने शो ज्ञानश्री लाइव में, जिसमें हम आज सुन रहे हैं रंग भारत। रंग भारत में आज हम सुन रहे हैं मधुबनी को। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब भाई? आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानस्त्री लाइव, जिसमें आज है फ्राइडे और फ्राइडे को आप सभी जानते हैं कि हम एंजॉय करते हैं रंग ए भारत, और आज का भारत का रंग है मधुबनी, क्योंकि हम इस दिन एंजॉय करते हैं और जानते हैं अपनी परंपरा को, कल्चर को और अपने रूट्स को, और इसी सारी चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन चलते हैं चैट बॉक्स की तरफ, जिसमें सनी पांडे जी लिख रहे हैं कि मर्दाना धोती भी होती है। जी हाँ, शादी जब होती है तो उसमें पियरी के साथ साथ एक धोती, जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके की लुंगी होती है, जो हमारे अवध क्षेत्र में पहनी जाती है, उसको भी रंगा जाता है। साथ ही साथ महेंद्र दीपन जी हैं जो कि राजस्थान से हमें सुन रहे हैं। वाओ, हम राजस्थान की तरफ पहुँचे ही थे और इन्होंने बताया कि राजस्थान में कम है लेकिन गुजरात में आज भी गुदना जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। जी देखिए, राजस्थान गुजरात, लेकिन जो है जहाँ तक मेरी जानकारी है तो ये गुजरात में और राजस्थान में भी देखा जाता है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ हाथ पे और उस पर, मतलब हाथ पे और चेहरे पे यहीं नहीं बनाया जाता, बल्कि ये कई जगह पे हमारे बॉडी पार्ट्स में गुदना बनवाया जाता है। कई जगह, कई समुदाय के लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में सैकड़ों गुदना हैं। आप देख सकते हैं कि कितना क्रेज़ है लोगों का गुदना का हमारे भारत में। उसके बाद सनी पांडे जी लिख रहे हैं कि मैम, हमारी दीदी सीता रसोईया में अपने हाथ से गुदना बनवाई थी, बहुत ही बड़ी बात है। देखिए, आज भी अगर वो परंपरा जिंदा है तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक तरीके का सम्मान दे रहे हैं उसे, यानी कि हमारी कला को, हमारी परंपरा को। महेंद्र जी लिख रहे हैं, आज की मशहूर गायिका आकृति कक्कड़ का जन्मदिन है। जी हाँ, हम जानते हैं, बात करेंगे उन पे। साथ ही साथ अनोखी शर्मा जी लिख रही हैं, नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। लिखी हैं, गुड आफ्टरनून, कैसी हो आप? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी का आनंद भी उठा रहे हैं। चलते हैं हमारे आज के मुद्दे की तरफ, यानी कि मधुबनी। और अब हम जानेंगे कि वुमेन एम्पावर और इकोनॉमी में इसका क्या रोल है। जी देखिए, ये सुनकर दिल आपका गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि स्टोरी की जो हिम्मत है, पावर है, वो सक्सेस की है। जी ये सिर्फ एक कला हमारे दिल को खुश नहीं किए, दिल का ही राजा नहीं है, बल्कि ये हमारे इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा इसका जो है रोल है। दोस्तों सोचिए कि जो कला है ना, ये सदियों से सिर्फ महिलाओं के हाथों से चल रही है। माँ से बेटी, बेटी से सास, बहू, नंद, देवर, देवरानी जो है, सॉरी देवर नहीं देवरानी, और घर की जो महिलाएं हैं वो इस ट्रेडिशन को पूरा पावर में लेके आगे चल रही हैं। और आज के टाइम पे ये सिर्फ ट्रेडिशन ही नहीं रही, बल्कि ये बन गई है बिहार के गांव-गांव की महिलाओं की एक सेल्फ रेजिलियंस का सुपर पावर। अब ज़रा सोचिए कि एक महिला जो अपने घर बैठी है, अपने, उसने अब आजकल के ज़माने में तो सारी चीज़ें हैं, उसने ब्रश उठाया, अपनी कमाई कर रही है, कमाई क्या कर रही है, उसने कैनवस उठाया, वहाँ पे मधुबनी बनाना लग गई और उस पेंटिंग को वो सेल करने लग गई, जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, जिसका कॉन्फिडेंस पूरा स्काई हाई है, पूरा रॉकिंग है, और जिसकी रिस्पेक्ट डबल हो जाती है ये लोगों को जब पता चलता है कि ये हमारी कला को ले करके उसको निखारती है, उसको एक कैनवस पर उतारती है और लोग उसको खरीदते भी हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज़ बिल्कुल ओरिजिन हो, बिल्कुल रियल हो, उसके जो मोल है वो बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि अपने डिसीजन खुद लेती है, खुद के खर्चे उठाती है। आज जहाँ पे लड़कियों का सशक्त होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे रीज़न है, उसमें मधुबनी जो हमारी कला है उसने भी कई लड़कियों को इंडिपेंडेंट बना रखा है। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ शौक ही नहीं है बल्कि एक धमाकेदार बिजनेस के रूप में भी ये सामने आया है। मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, सीताराही हो गया, ऐसी जगहों पे ये कला बन चुकी है पूरे कॉटेज इंडस्ट्री। लोग पेंटिंग बनाते हैं, बेचते हैं, कई सारे साड़ियों में, कपड़ों में, सूट में, धोती में, और कई सारी जगह पे जो है अब मधुबनी बनने लग गई है। आप जब बिहार जाएंगे, बिहार के मिथिला जाएंगे, दरभंगा जाएंगे, पटना जाएंगे, तो आपको मधुबनी जो है वो आर्ट दिख जाएगी। यहाँ तक कि आप जब पटना के एयरपोर्ट पे आएंगे, रेलवे स्टेशन पे आएंगे, तो आपको वहाँ पे मधुबनी ज़्यादा दिखाई देगी, और मधुबनी में आपको दिखाई देगा कि मधुबनी पेंटिंग के थ्रू उन्होंने छठ पूजा को एक नए रूप से, एक नए तरीके से दीवारों पर उतार रखा है। जब आप बिहार स्टेशन पर, जो बिहारी होते हैं, जिनका वो कल्चर, जिनका वो जगह है, जिनका वो होम टाउन है, तो वहाँ पर उतरते ही लगता है कि एक रिलीफ आता है कि भाई हम पहुँच गए हैं अपने घर, अपने देश, अपने बिहार में। ऐसे ही अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये मधुबनी सिर्फ इन्हीं तक पेंटिंग तक ही नहीं, बल्कि ये टेक्सटाइल तक भी गई है।
लोग में आज भी जब कहीं टाइल्स बनती है तो आजकल ऐसी टाइल्स भी आने लग गई है, ऐसे कपड़े आने लग गए हैं, ऐसी पेंट आने लग गई है जिसमें मधुबनी बन के आती है और लोग उसे खुशी खुशी अपने घर में लगवाते भी हैं और अपने घर को सजाते भी हैं। इसका एक और रिजल्ट मैं आपको बता देती हूँ, हज़ारों फैमिलीज़ का चूल्हा जल रहा है सिर्फ एक इसी कला की वजह से, एक अकेली आर्ट फॉर्म जिसने इतनी सारी जिंदगियों को बदल के रख दिया, ये सोचते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब एक दिल छू लेने वाली मैं आपको बात बताती हूँ, कई आर्टिस्ट ऐसी भी हैं जिन्होंने समाज के एक बहुत ही बड़े सोच को तोड़कर ये कला अपनाई है, जैसे कि गोदना पेंटिंग करने वाले कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिसमें दलित अगर हम बात कर ले, जो माइग्रेट हुए हैं लोग उनकी हम बात करें, ऐसी कम्युनिटीज़ जो होती हैं जो माइग्रेट हुई हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से इसको सीखा जो गोदना आर्ट है, और आज भी ये कई जगह पे, कई मंदिर पे, अपना दुकान पे, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये अपना स्टॉल लेकर बैठते हैं, गोदना जिसे हम गोदना कहते हैं, गोदना बनाते हैं और इसको और भी ज़्यादा निखारते रहते हैं, और आजकल के ज़माने में हम इसी गोदना को टैटू के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये रियल पावर है जो कि कहीं ना कहीं हमने छुपा दी, अरे हमने नाम बदल दिया, मधुबनी को हमने पेंटिंग के नाम से कह दिया, या फिर कई लोग कहते नहीं है कि भैया ये तो गांव की कला है, ये गांव की कला नहीं है दोस्तों, ये हमारे ही कल्चर की कला है, हमारे भारत की कला है, इसे हम सिर्फ कला के नाम से नहीं जान सकते, ये हमारी पावर है, हमारी धरोहर है और इसकी हमें रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। गोदने की हमने बात की कि गोदना भी होता है जिसे हमने नाम बदल के आज टैटू कर दिया, और हर इंसान आजकल टैटू का क्रेज़ लेके घूम रहा है, मैंने भी करवाया हुआ है। तो जो टैटू है इसका रियल नाम गोदना है, ये तो आपको पता चल गया, और ऐसे ही जो इसके कई सारी जो फॉर्म्स हैं, जो स्टाइल्स हैं, उनसे कई सारी ऐसी काम निकले हैं जिसको लोग आज भी अपना रहे हैं, स्पेशली विमेन और ऐसी महिलाएं जो, और मैं अगर आपको सही बताऊं तो हमारे इंस्टाग्राम पे जो है, देखिए इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ी दुनिया है, अपने में ही वो एक बहुत बड़ी दुनिया है, अगर आप उसे बस स्क्रॉल करेंगे ना, और आपके पास अगर कोई, आप हैंडमेड चीज़ों के शौकीन हैं तो आपको मधुबनी आपको ज़रूर दिख जाएगी। आज हाल ही में अगर मैं बताऊं तो हमारे उत्तर प्रदेश में, अगर मैं बात करूं अपने गोंडा ज़िले में, तो मेरे ही घर में एक शादी हुई थी जहां पे ऑनलाइन मंगाई गई थी एक साड़ी जिस पे मधुबनी आर्ट हुआ था, और मधुबनी आर्ट से पूरे शादी का प्रोसेस उसमें बना हुआ था। अब सोचिए कितनी खूबसूरत वो साड़ी होगी, और वो साड़ी जहां से मंगवाई गई थी वो पूरी महिलाओं के द्वारा चलाई गई एक कंपनी है जिसमें उन महिलाओं को रखा गया है जिन्हें मधुबनी आती है, जो गरीब परिवार से हैं, जिनके सर पे कोई है नहीं, जो अपने खर्चे खुद उठाती है, अपने परिवार का खर्चा खुद उठाती हैं। तो आपकी एक छोटी सी कोशिश जस्ट कि आप अपने कला को रिस्पेक्ट दें, अपनी जो धरोहर है उसको अपनाएं, अपनी शादी विवाह और बड़े चीज़ों में उसे पास ऑन करें, क्योंकि हमारी जो रियल भारत की धरोहर है अगर हम उसे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वही चीज़ है जो हम आगे अपनी जनरेशन को पास ऑन भी कर सकते हैं, यानी कि हमारी दादी से हमारी मम्मी को मिलते हैं, मम्मी से हमें मिलती है और हम अपने बच्चों को देंगे। तो इन चीज़ों को अपनाएं और आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें, और आज ये सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये पुरुषों तक भी सीमित है। आपको क्या लग रहा है कि महिलाओं के बाद इसमें पुरुषों ने नहीं अपना हाथ आजमाया होगा? बिल्कुल आजमाया, कई सारे ऐसे पुरुष भी हैं जो मधुबनी आर्ट करते हैं और वो सपोर्ट करते हैं उन लोगों को जो मधुबनी आर्ट करते हैं, उनकी चीज़ों को, क्योंकि बिज़नेस रन करने में कई सारे लोग की मेहनत होती है, वो बिज़नेस रन करने में महिलाओं की मदद भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक कला जो कि दीवारों से शुरू हुई, सिर्फ कभी कभी बनने वाली, एक कैसे एक पूरा इंडस्ट्री खड़ा कर सकती है, उसके बारे में हमने जाना। लेकिन अब हम जानेंगे ग्लोबल फेम की। जी हाँ, ये मधुबनी सिर्फ हमारे भारत तक ही थोड़ी ना सीमित है, या सिर्फ लोग इस्तेमाल ही थोड़ी ना करते हैं, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा फेम मिला है और सोशल पावर मिली है। क्या है, कैसी है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना हमारे साथ, इन्जॉय करना ये बहुत ही प्यारा सा गाना। इसके बाद आएंगे और आपसे बात करेंगे मधुबनी पे कुछ खास चीज़ों के बारे में।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

Welcome back. आ चुकी हूँ वापस. मैं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव, जिसमें हम आज इंजॉय कर रहे हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में. हाँ, अब हम बात करते हैं इसकी ग्लोबल फेम के बारे में. भैया, ये इतनी छोटी मोटी कला नहीं है, ये बहुत बड़ी कला है. इसे विदेशों में भी सराहा गया है, इसे अवार्ड भी मिले हैं. आज मधुबनी पेंटिंग जो है सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है दोस्तों, ये पहुँच चुकी है इंटरनेशनल म्यूजियम तक, आर्ट गैलरीज तक. विदेशों में भी एग्जीबिशन जब लगते हैं उसमें लोग एक्साइटेड होके देखने आते हैं, साड़ी खरीदते हैं, कुर्ता खरीदते हैं, स्कार्फ खरीदते हैं जिस पे मधुबनी डिज़ाइंस बने होते हैं. और इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर्स भी अपने कलेक्शन में शान से इसको यूज़ करते हैं. अब इसे क्या बोले दोस्तों, इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर. बिना किसी हथियार के हम पहुँच चुके हैं विदेशों तक, बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ अपनी कला का इस्तेमाल करके, अपनी कल्चर से निकली एक चीज़, इंडिया की एक शानदार इमेज पूरी दुनिया भर में बिखरी हुई है. इसे हम कहते हैं कल्चरल डिप्लोमेसी एट इट्स फाइनेस्ट. जी, लेकिन सबसे कूल बात यह है दोस्तों कि ये आर्ट सिर्फ पुरानी कहानियों में ही नहीं रुकी, आज इसे आर्टिस्ट जोड़ रहे हैं नए नए मैसेजेस से, जैसे एनवायरनमेंट बचाओ, पेड़ लगाओ, पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल करो, पॉल्यूशन रोको, लड़कियों का सम्मान दो, सही से गाड़ी चलाओ, ज़्यादा हॉर्न मत बजाओ. ये सारी चीज़ों को दिखाने के लिए भी मधुबनी पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक मैसेज देने के लिए, एक अच्छा मैसेज देने के लिए. ये सब थीम पे आपको पेंटिंग दिख जाएगी. हमारे उत्तर प्रदेश में ही आपने कई जगह देखा होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कैंपेन्स की जो चल रहे हैं, उनको भी दिखाने के लिए इस कला का यूज़ होता है. सफाई का मैसेज देने के लिए कई सारे रंग यूज़ होते हैं और हम इस कला का इस्तेमाल करके दीवारों को सजाते हैं. यानी दोस्तों, ये सिर्फ डेकोरेशन ही नहीं रही, बल्कि ये बन चुकी है समाज में बदलाव लाने की एक पावरफुल जरिया. पुरानी ट्रेडिशन नए ज़माने के साथ पूरी तरीके से सिंक में है. अब दोस्तों, ये थी मधुबनी की एक ग्लोबल जर्नी. लेकिन अब हम आपको बात बताएं कि इसकी जो पूरी दुनिया में है, इसको कई सारे अचीवमेंट भी मिल चुके हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें नेशनल अवार्ड की, देखिए 1970 में जगदम्बा देवी पहली महिला बनी जिन्हें मधुबनी पेंटिंग के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, और उन्होंने इस कला को फोक डेकोरेशन से उठाकर एक रिस्पेक्टेड आर्ट बना दिया था. अब सुनिए पद्मश्री की लिस्ट. जी हाँ, ये तो बिल्कुल एकदम हॉल ऑफ फेम है. सीता देवी 1981 में पद्मश्री उनको मिला. उनकी पेंटिंग आज लंदन के विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम में, पेरिस के म्यूजियम में और लॉस एंजल्स के कंट्री म्यूजियम में लगी हुई है. वहाँ पे ये परमानेंटली डिस्प्ले भी होती है. सोचिए ज़रा, गांव की दीवारों से निकल के हम कहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, लंदन पहुँचे, पेरिस पहुँचे, लॉस एंजल्स, विच इज़ माई ड्रीम कंट्री, और यहाँ तक हमारी कला पहुँची हुई है. अब एक तरीके का प्राउड मुझे भी महसूस हो रहा है, आपको भी महसूस हो रहा होगा. और ऐसी कई सारी अचीवमेंट है जो हमारे भारत के लोग हमारी कला से लेकर के आए हुए हैं, उन सभी पे हम बात करेंगे. लेकिन आज हमने बात की मधुबनी की. फ़िलहाल वक्त हमें इजाज़त दे रहा है, हमें फ़िलहाल जाना होगा मन में एक प्राउड ले करके कि भाई हमारे भारत में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करें, जिसका एक सही उपयोग करें तो हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, कमा भी सकते हैं और उनको आगे भी बढ़ा सकते हैं. इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा. आशा करती हूँ कि आपको ये शो अच्छा लगा है. अच्छा लगा है तो ज़रूर से आके चैट बॉक्स में फीडबैक दीजिए. हम आपसे कल मिलेंगे आपके अपने शो स्वास्थ्य संगिनी में, जिसमें हम बात करते हैं आपके हेल्थ की. कल का मुद्दा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई बारिशें जो होती हैं ना, बारिशें अपने साथ कई बीमारियाँ भी लाती हैं. उसी से एक बीमारी है जिसके बारे में हम कल बात करेंगे, उसको जानने के लिए आपको कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा. इंतज़ार करिए कल का. मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही और लाभ कई। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। जी हां, आपने ट्यून करके रखा हुआ है अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। पिछले दो कार्यक्रमों में हमने गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी कि एनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS, पोषण तथा मध्यम तथा गंभीर एनीमिया में IVFCM जैसे उपचार विकल्पों के बारे में बात की। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है, बच्चे के जन्म के बाद माँ का क्या? क्या प्रसव के बाद कमजोरी होना हमेशा सामान्य है? क्या खून की कमी प्रसव के बाद भी बनी रह सकती है और इसका असर माँ और नवजात शिशु दोनों पर कैसे पड़ सकता है? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सेहतिया सिंह जी और हमारी टीकन भाभी। सेहतिया सिंह जी, अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद कमजोरी होना तो सामान्य बात है, क्या ये सही है?
1: देखिए आरजे, परसों के बाद शरीर को आराम और रिकवरी की जरूरत होती है, इसलिए कुछ थकान महसूस होना सामान्य हो सकता है। लेकिन अगर कमजोरी लगातार बनी रहे, चक्कर आज आए, सांस फूलने लगे, रोजमर्रा का काम मुश्किल लगे या महिला बहुत ज़्यादा थकी हुई है महसूस करे, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
0: यानी ये खून की कमी का संकेत भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, और यही कारण है कि परसों के बाद भी माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है।
0: टीकन देवी जी, क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को इस बात का महत्व समझा सके?
2: बिल्कुल, हमारे ही इलाके की शबाना की कहानी सुनिए। शबाना ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद भी शबाना को लगातार कमजोरी रहती थी। वो जल्दी थक जाती थी, बच्चे को गोद लेकर ज्यादा देर खड़ी भी नहीं रह पाती थी। घर वालों ने कहा, अभी अभी बच्चा हुआ है, थोड़ा समय तो लगेगा। लेकिन जब स्वास्थ्य कर्मी ने घर आकर हालचाल पूछा और आगे जांच की सलाह दी, तब पता चला कि उसे एनीमिया है।
0: फिर क्या हुआ?
2: उसे स्वास्थ्य केंद्र से उचित सलाह मिली, परिवार ने भी उसका सहयोग किया और धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर हुई। वो अपने बच्चे की देखभाल अधिक आराम से कर पाई।
0: यानी प्रसव के बाद भी कमजोरी को भी गंभीरता से लेना चाहिए।
2: बिल्कुल।
0: सेहतिया सिंह जी, प्रसव के बाद एनीमिया का असर केवल माँ पर पड़ता है या बच्चे पर भी?
1: माँ और बच्चे दोनों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर माँ लगातार कमजोर रहेगी तो उसकी रिकवरी प्रभावित हो सकती है।
0: और बच्चे के संदर्भ में?
1: जब माँ स्वस्थ रहती है तो वह अपनी नवजात शिशु की देखभाल बेहतर तरीके से कर पाती है, इसलिए माँ का स्वास्थ्य और बच्चे का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: यानी स्वस्थ माँ स्वस्थ परिवार की नींव है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या प्रसव के बाद भी जाँच करवानी चाहिए?
1: हाँ, अगर स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर सलाह दें या महिला में कमजोरी और अन्य लक्षण बने रहें तो जांच करवाना जरूरी है।
0: यानी प्रसव के बाद स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क खत्म नहीं होना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं। गर्भावस्था के दौरान मिली सलाह और प्रसव के बाद की देखभाल दोनों मिलकर अच्छे स्वास्थ्य परिणाम देते हैं।
0: टीकन देवी जी, शबाना की कहानी सुनकर एक बात समझ आती है कि कई बार महिला खुद भी अपनी परेशानी को नजरअंदाज कर देती है।
2: बिल्कुल, प्रसव के बाद अक्सर महिला का पूरा ध्यान बच्चे पर चला जाता है। वो सोचती है कि पहले बच्चे की जरूरतें पूरी हो, अपनी तकलीफ बाद में देखेंगे। लेकिन यही सोच कई बार परेशानी बढ़ा देती है।
0: यानी माँ खुद को सबसे आखिर में रख देती है।
2: जी हाँ, हमारे समाज में ये बहुत आम बात है। अगर बच्चा रो रहा हो, घर का काम हो, मेहमान आ रहे हो, तो महिला अपनी कमजोरी, चक्कर या थकान के बारे में बताने से भी हिचकती है। कई बार उसे लगता है कि लोग कहेंगे कि वो शिकायत ज्यादा कर रही है।
0: लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल नहीं। बच्चे की देखभाल जितनी जरूरी है, माँ की भी देखभाल उतनी ही जरूरी है।
0: सेहतिया सिंह जी, प्रसव के बाद महिला के जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, क्या ये भी उसकी सेहत को प्रभावित कर सकता है?
1: बच्चे के जन्म के बाद महिला की दिनचर्या पूरी तरह बदल जाती है। रात में कई बार उठना पड़ता है, आराम कम हो जाता है, शरीर परसों से उभर रहा होता है और साथ ही नवजात शिशु की देखभाल की जिम्मेदारी भी होती है।
0: यानी ये समय केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
1: बिल्कुल, इसलिए इस समय परिवार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर महिला को आराम का समय मिले, उसकी बात सुनी जाए और उसकी जरूरतों

0: ख्याल का हिस्सा है।
1: बिल्कुल, अगर महिला बार बार कह रही है कि उसे कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, या वो पहले जैसा महसूस नहीं कर रही है, तो उसकी बात को गंभीरता से लेनी चाहिए।
0: सेहतिया सिंह जी, क्या प्रसव के बाद स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क बनाए रखना जरूरी है?
2: बिल्कुल, कई लोग सोचते हैं कि बच्चे का जन्म हो गया है, अब स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रसव के बाद भी स्वास्थ्य कर्मी की सलाह घर पर मुलाकात और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है।
0: यानी माँ की देखभाल की कहानी प्रसव पर खत्म नहीं होती?
2: बिल्कुल नहीं, वास्तव में प्रसव के बाद का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना गर्भावस्था का समय है।
1: और मैं सभी परिवारों से कहना चाहूँगी कि जब घर में नया बच्चा आता है तो केवल बच्चे की खुशियाँ मत मनाइए, बल्कि उस माँ का भी पूरा ध्यान रखिए जिसने उसे जन्म दिया है। उसकी सेहत, उसका आराम, उसकी जरूरतें भी परिवार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
0: सचमुच स्वस्थ माँ ही नवजात शिशु को सबसे अच्छा सहारा दे सकती है। टीकन देवी जी, इस समय परिवार की भूमिका क्या होती है?
1: परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार पूरा ध्यान बच्चे पर चला जाता है और माँ की जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। लेकिन परिवार को याद रखना चाहिए कि माँ की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है।
0: परिवार क्या कर सकता है?
1: सबसे पहले तो माँ को पर्याप्त आराम मिलना चाहिए, इसका ध्यान रखें। दूसरा, उसे समय पर पौष्टिक भोजन मिले। तीसरा, अगर स्वास्थ्य केंद्र जाने की जरूरत हो तो परिवार उसका साथ दे। चौथा, अगर कोई दवा या पूरक खुराक दी गई हो तो उसे नियमित रूप से लेने में उसकी मदद करें। और सबसे जरूरी बात, उसकी कमजोरी या परेशानी को नजरअंदाज ना करें।
0: बहुत ही महत्वपूर्ण बात। सेहतिया सिंह जी, पिछले कार्यक्रम में हमने IFA, MMS और IVFCM के बारे में बात की थी। क्या प्रसव के बाद भी डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी है?
2: बिल्कुल, हर महिला की स्थिति अलग होती है, इसलिए आगे की देखभाल, दवाओं या पूरक खुराक के बारे में सलाह माननी चाहिए जो स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर दें।
0: यानी अपने मन से दवा बंद या शुरू नहीं करनी चाहिए।
2: बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य केंद्र की सलाह सबसे महत्वपूर्ण है।
0: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ है कि बच्चे के जन्म के बाद माँ की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके स्वास्थ्य को पीछे छोड़ दिया जाए।
1: अगर प्रसव के बाद भी कमजोरी बनी हुई है, चक्कर आते हैं या शरीर पहले जैसा नहीं लग रहा, तो इसे सामान्य मानकर टालिए मत।
2: समय पर जांच, सही सलाह और उचित देखभाल से माँ की रिकवरी बेहतर हो सकती है, और जब माँ स्वस्थ होगी तो बच्चे की देखभाल भी बेहतर तरीके कर पाएगी।
0: चलते चलते आज के कार्यक्रम की चार महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। पहली, प्रसव के बाद भी खून की कमी बनी रह सकती है। दूसरी, लगातार कमजोरी या चक्कर को नजरअंदाज कतई ना करें। तीसरी, जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। और चौथी, माँ को पौष्टिक भोजन, आराम, परिवार का पूरा सहयोग दें।
1: माँ की सेहत पर ध्यान देना है, बच्चे के भविष्य पर ध्यान देना है,
2: और समय पर पहचान तथा उचित देखभाल माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम ला सकती है।
0: इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाए। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है सब पूछने लगते हैं, अच्छी खबर कब आएगी? लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपतियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696746006। कपड़ा

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है
3: आरजे अंशिका।
2: जी हाँ, और हम आ गए हैं एंड जैसे कहते हैं ना कि शुभारंभ जब अच्छा होता है किसी चीज का तो अंत तो ऑलरेडी अच्छा होता ही होता है। तो आज बहुत सारी गुड न्यूज देनी है आपको। आई मीन गुड न्यूज क्या है, आज का दिन बहुत ही शुभ एंड पावन है हम सभी के लिए और खास करके उस ज्ञानस्थली परिवार के लिए जो एक एक बच्चा, एक एक टीचर, एक एक बंदा, एक एक चीज अगर ज्ञानस्थली से जुड़ी हुई है तो क्यों खास है, क्या खास बात है, हम सब बताएंगे, सब ब्रीफ करेंगे। लेकिन उसके पहले आइए विश कर देते हैं। आपका अपना पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है
1: सुन सहेली
2: विद आरजे समता एंड आरजे
3: अंशिका।
2: जी हाँ, और जैसे कहते हैं ना कि जब हम बहुत ज्यादा अंशिका की जुबानी सुनते हैं, कि जब हम बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं, किसी के लिए पॉजिटिव होते हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। आप किसी के लिए भी अच्छा सोचते हो ना तो वो सामने वाले से अच्छा एक पॉजिटिव होता है। लेकिन
3: लेकिन
2: लेकिन मैं कल से थोड़ा सा नाराज हूँ किसी से, तो वो मेरा कुछ आपस का टेंशन है, वो ठीक हो जाएगा जल्दी से अभी। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जब हम किसी के बारे में इतना पॉजिटिव सोचते हैं तो नेगेटिव थॉट थोड़े बहुत तो आती हैं, बिल्कुल क्लीन नहीं हो जाता है दिमाग से, है ना अंशिका?
3: ये तो होता है।
2: पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अंशिका यहाँ होकर के यहाँ नहीं है।
3: नहीं ऐसा नहीं है, मैं यहाँ होकर के यही हूँ। मैं जस्ट आपने कहा ना कि मैं नाराज थी तो मैं उस पॉइंट पे सोचने लगी कि क्या हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा,
2: कुछ तो हुआ ही होगा जिससे मैं नाराज हूँ ना।
3: यस yes.
2: नहीं मैं बिल्कुल किसी खास से जो प्यार वाला नाराज होता है ना,
3: हाँ,
2: वो वाला नाराज।
3: आप वही होते हो, आप सीरियस वाला नहीं होते हो।
2: अरे रहने दो, अब तुम सीरियस वाला नाराज जिस दिन मेरा देख ली ना तो फिर क्या ही
3: बता। मैं क्यों देखूं?
2: हाँ तुम बस भगवान से यही मनाना कि तुम ना देखो।
3: मैं क्यों देखूं?
2: तुम भगवान से यही मनाओ कि तुम ना देखो बस,
3: और कोई देख सकता है, हैंडल कर सकता है, मैं नहीं।
2: हाँ ठीक है, तो चले शुरू करते हैं आपका पसंदीदा शो को। और उसके साथ ही साथ में मैं बता दूं कि प्यारी सी दोपहर है, मतलब बहुत ज़्यादा आज गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, अच्छा वाला मौसम है। और इसी अच्छे वाले मौसम के साथ में एक साथ एक ही फ्रेम में हम बोलेंगे दोनों क्या,
3: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और दोपहरिया है जबरदस्त क्योंकि हम दोनों ही हैं बहुत ही मस्त। आज का दिन बहुत प्यारा, बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल, लेकिन वो क्यों है ये आपको मैम बताएंगी। और इसी के साथ आज हमारा फ्राइडे भी है जो कि हमारी रिश्तों की डोर से बंधा होता है, और रिश्तों की डोर से सिर्फ बंधे ही नहीं होते हैं, कई बार कुछ लोग बांध भी लेते हैं किसी को। तो रिश्तों की डोर ऐसी ही होती है, प्यारी, पावन, बहुत अच्छी, उसके लिए वर्ड्स नहीं होते। तो आज हमारा रिश्तों वाला दिन है, तो आज बांधेंगे भी, बंधन भी बांधेंगे, खुद भी बांधेंगे, औरों को भी बांधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक रिश्ते की डोर में हर किसी को कहीं ना कहीं बंधना चाहिए, और जो नहीं बंधना चाहते हैं उन्हें पकड़ पकड़ के लाकर बांधना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जो बंधन में बंधे होते हैं वो अच्छी एक सेपरेट लाइफ जीते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आज़ाद कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पंछी को आज़ाद होता है
2: तो वो बिगड़ जाता है।
3: हाँ
2: आसमान में, क्योंकि बहुत सारे पंछी होते हैं तो उनको देख के तो वो बिगड़ने का सवाल ही उठता है।
3: जो बंदिश में होते हैं वो नहीं बिगड़ते, जो खुली हवा में सांस लेते हैं वो जल्दी बिगड़ जाते हैं।
2: अच्छा ऐसा है?
3: ऐसा है।
2: चलो तो भाई मेरे हिसाब से जो खुली हवा में रहते हैं उन्हें बिगड़ने के चांसेस नहीं होते हैं, जो बंदिश में होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी को आज़ादी देते हैं, अमूमन हम अपने घर के किसी भी एक रिश्ते को उठा लो, ठीक है, अगर हम आज़ाद उसे आज़ाद करते हैं ना, तो वो जैसे माँ बेटी का रिश्ता हो गया, एक पिता और पुत्र का हो गया, दो फ्रेंड्स का हो गया, दो मेल फीमेल फ्रेंड्स का हो गया, अगर हम उसे अपनी संपूर्ण रूप से आज़ादी देते हैं तो वो घूम फिर करके उसके मन में यही आएगा, वो किसी गलत राह पे नहीं जाएगा।
3: बिल्कुल मन
2: में आया, इसीलिए कहते हैं कि बड़े का होना कहीं पर ज़रूरी होता है, छोटों की जो सोच होती है ना वो अभी अभी अविकसित है, जैसे अंशिका की सोच है।
3: अब तो मैं तो अविकसित, मतलब
2: अविकसित दिमाग से अविकसित। तो सुनो आप, मुझे और बोलना है अभी इस पे।
3: अच्छा,
2: तो क्या होता है कि जैसे माँ बेटी है, अगर माँ ने अपनी बेटी को बंदिश में रखा तो वो 100% है कि वो उसके विचार, उसके सब कुछ वो गलत होने ही होने हैं। लेकिन अगर उसको आज़ादी दे दी और आज़ाद कर दिया, बोला कि भाई तुम कुछ भी हो जाए तुम मुझे सब बताना, तो वो बच्ची कभी भी गलत नहीं हो सकती।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
2: अब आते हैं आपकी बात पे, आपकी बात भी सही है। जहाँ पर अगर हम किसी से प्यार करते हैं, चाहे जैसे मैं किसी से प्यार करती हूँ एग्जाम्पल, और मेरा कोई भी है सामने, तो अगर मैंने उसे आज़ादी दे रखी है और वो तमाम जगहों पर जा रहे हैं, वहाँ तमाम लड़कियाँ औरतें सब हैं, तो अगर उसका मेरे प्रति प्यार सच्चा होगा तो वो कहीं नहीं फिसलेगा।
3: बिल्कुल।
2: आसमान में बहुत सारी चिड़ियाँ होती हैं, अलग अलग टाइप की चिड़ियाँ होती हैं, ठीक है
3: जी,
2: लेकिन वो जो एक एक एक जो बर्ड है, वो अगर किसी को दिल में बिठा के रखा हुआ है, अगर वही है केवल, तो वो इधर उधर देखेगा ही नहीं। समझ में है। और कुछ लोग होते भी हैं जो हर जगह मुंह मारने वाले, तो
3: हाँ वो तो एक अपनी वो होती है, मतलब कहते हैं ना हम कि जैसे जब थोड़ा सा इसको अगर ऐसे कैरी करें कि अगर अच्छे लोग होते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं, तो ठीक उसी तरीके से अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। कुछ लोगों में बहुत नेगेटिविटी होती है, तो नेगेटिविटी को तो वैसे भी दूर रखना चाहिए, और बंदिश सिर्फ उतनी होनी चाहिए जितनी प्यार में जरूरी हो।
2: जरूरी है मतलब ज्यादा नहीं होनी चाहिए,
3: ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इंसान सोचे कि मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको कॉल करके बताना है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ और मैं इतने तक आऊंगी, ये एक रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि हम इन्फॉर्म तो एटलीस्ट करें। पता लगा हमने किसी को बताया नहीं, हम चले गए, अब अगला परेशान है कि अब फोन आएगी, अब फोन आएगी, अब फोन आएगी, और आपने बताया नहीं कि आप कहीं बाहर जा रहे हो। तो वो थोड़ा सा एक होना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, समझना चाहिए, केयर करनी चाहिए। और वैसे भी कहते हैं ना, वाइफ का तो हक बनता है अपने हस्बैंड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस का। जैसे कहते नहीं है वाइफ बहुत टोकती है मेरी वाइफ, तो वैसे वाला थोड़ा सा टोकना चाहिए भी,
2: टोकना चाहिए थोड़ा सा,
3: क्योंकि टोक टोक के कई बार हम सुधार देते हैं। जैसे कहते हैं ना मैम कि जो जेंट्स होते हैं वो प्रॉपर तभी सुधरते हैं जब उनके पीछे कोई फीमेल आ जाती है, वरना तो वो ऐवें ही रहते हैं। तो ऐवें से जब सुधारना है तो थोड़ा सा टोकना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा
2: हो गया, सुधार ली,
3: सुधार ली,
2: अब आगे बढ़े,
3: आगे बढ़े।
2: हां मम्मी
3: क्या हुआ,
2: चोटू लग गई, चोटू। चलो तो अब शुरू करें पोयम।
3: जी मैम। मैम मुझे देख रही है,
2: पोयम शुरू कर रहे हैं।
3: हाँ तो मैं तो चलिए करते हैं एक नई शुरुआत प्यारी प्यारी बातों के साथ। बहुत सारी हंसी, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी खुशियों की होगी बात, क्योंकि आज हम करेंगे आरजे समता के साथ शुरुआत। तो आइए शुरुआत करते हैं। जिस क्या हुआ मैम, अच्छी नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी आपको, आपने ऐसे क्यों हंसा?
2: बहुत अच्छी थी।
3: ऐसे आपने ऐसे मैम स्माइल करती है तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ,
2: बहुत अच्छा,
3: अच्छी लगी, बुरी लगी।
2: चलो अब इसका जो फीडबैक है ना, आपकी जो रास्ते देने वाले का जो फीडबैक है, मेरी स्टोरी, मेरी पोयम से आपको पता चल जाएगा, ठीक है?
3: ओके।
2: रिश्ते होते हैं मोतियों की माला जैसे, रिश्ते होते हैं मोतियों की माला जैसे, धागे में पिरोए अनमोल जज्बात जैसे, दूरियां चाहे कितनी भी बढ़ जाएं इसमें, पास रहते हैं ये दिल के एहसास जैसे, कभी खट्टी कभी मीठी सी तकरार होती है, तो कभी इनमें बेपनाह मोहब्बत होती है। बिना कहे जो दिल की बात समझ ले, बिना कहे जो दिल की बात समझ ले, वही तो एक सच्चे रिश्ते की इबादत होती है। सुख दुख के हर मोड़ पर, सुख दुख के हर मोड़ पर ये साथ निभाते हैं, गिरते हुए कदमों को हमेशा संवारते हैं। दुनिया की इस भीड़ में जो कभी ना छोड़े हाथ, वही रिश्ते जिंदगी को जीना सिखाते हैं। इन्हें वक्त की धूप से हमेशा बचा कर रखना, इन्हें वक्त की धूप से हमेशा बचा के रखना, विश्वास और सम्मान से हमेशा सजा के रखना। कांच से भी नाजुक होती है ये डोर रिश्तों की, कांच से भी नाजुक होती है ये डोर रिश्तों की, बड़े प्यार और हिफाजत से संभाल के रखना।
3: वाह जबरदस्त, बहुत ही प्यारा, और मतलब इतना अच्छा वाला फीडबैक, बहुत ही प्यारी लाइंस मैम। मैं ये सोचती हूँ कभी कभी कि मैम इतनी प्यारी प्यारी पोइट्रीज लाती कहाँ से हैं। वैसे तो मैम मुझे कहती हैं कि तुम लिखती अच्छा हो, अब तो मुझे लगता है मुझे कहना पड़ेगा
2: कि
3: आप सुनाती बहुत अच्छा हो।
2: सुनाते अच्छा है ना, हम बहुत वैसे भी बहुत कुछ सुनाते अच्छा
3: नहीं, पोयम
2: नहीं,
3: मेरा सिर्फ पोयम का कॉन्टेक्स्ट,
2: मेरा सुनाने का अंदाज भी बहुत अच्छा वाला है। एग्जैक्टली अच्छा वाला है,
3: अच्छी बातें सुनाती हैं मैम,
2: ठीक है, अच्छी बातें सुनाते हैं। तो आइए फटाफट चलते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की ओर, और उसके बाद सुनाएंगे गाना, देन शुरू करेंगे आज के टॉपिक्स को।
3: तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ ये कहता है कि रिश्तों में हमेशा मैं हूँ नहीं होना चाहिए, रिश्तों में हमेशा हम होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपके रिश्तों में मैं जगह ले लेता है उस दिन आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। इसलिए अपने रिश्तों में हमेशा हम को लेकर साथ चलिए, क्योंकि हम का मतलब होता है कि हम दो लोगों को जोड़ रहे हैं। जैसे अगर मैं कहें तो शायद उतना मजा नहीं आता, लेकिन कभी हम कहते हैं ना ये हमारा परिवार है या ये हमारी संस्था है, तो उसमें आपने सभी को जोड़ लिया, ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी हैं आपने सबको जोड़ा। तो इसी तरह अपने रिश्तों में हमेशा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए उन सभी को जो आपके साथ जुड़े हुए हों।
2: जी एग्जैक्टली। और चलिए अब यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे आज के दिन की, जो कि मैंने भी स्टार्टिंग में बोला था कि आज है कुछ खास और स्पेशल डे, हम उस पर भी बात करेंगे पूरा, सब वन टू ऑल बताएंगे कि क्या है आज, क्या हुआ हमारे ज्ञानस्थली परिवार में, ज्ञानस्थली कॉलेज में, और क्यों चीज़ें मतलब आज के दिन हम लोगों ने सेलिब्रेट करा, क्या क्या सेलिब्रेशन हुआ, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उसके पहले आइए सुना देती हूँ एक प्यारा सा गाना, उसके बाद हम आते हैं आपके लिए फिर से।
4: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है RJ
6: अंशिका।
5: जी हाँ, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ कि भाई आज है 7 अगस्त, यानी कि आज हमारी फाउंडर मैम जो हमारे बीच ना हो करके भी हमारे बीच में है, यानी कि हमारी डॉक्टर कृष्णा सिन्हा मैम, और उनका आज है बर्थडे। यानी उनके बर्थडे पे हम लोग फाउंडर डे के उपलक्ष्य में हम लोग उनके इस नाम से उनके आज के दिन को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, जब से उनकी डेथ हुई है। और मैं बताऊं कि मैंने तो उनसे पढ़ा हुआ है और इतनी ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना सौम्य, कोमल और इतनी ज़्यादा दिल की अच्छी इंसान थी कि आज भी जब कुछ होता है तो मैं तो उनका नाम ज़रूर लेती हूँ। और मुझे लगता है कि हर एक लड़की जो यहाँ से पढ़ के जाती है, पढ़ रही है, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी सभी को होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि हमारा कॉलेज यानी कि नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा, जो कि दुखरनाथ के बगल में स्थित है, हम सभी लड़कियों के लिए ये एकमात्र हमारे गोंडा जनपद का कॉलेज है जहाँ पे हर प्रकार की सुविधा आपको मिलती है। पढ़ाई के साथ साथ उनके व्यक्तित्व को निखारना, साथ ही साथ में उनके कल्चर एक्टिविटीज को लेकर के और जॉब भी, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटीज हैं कि अगर कोई बच्ची यहाँ से पढ़ करके और अपनी एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैनुअल डिग्री अगर वो प्राप्त करके फिर से यहाँ पर जॉब के लिए आती है तो भी यहाँ पर जॉब वैकेंसीज यहाँ पर निकलती हैं। साथ ही साथ में हमारी मैम का जो एक स्वभाव था वो हर एक बच्चे में अपनी बेटी और अपना परिवार ही ढूंढती थी, और वाकई में उन्हीं के प्यार के कारण से आज हम सब, क्योंकि मैं तो यहीं की पढ़ी बड़ी हूँ, और उनके प्यार उनके स्नेह से आज भी मुझे लगता है कि मैं क्या बता दूँ बस। तो ये आज के दिन हमारे कॉलेज में हर साल कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें मेहंदी होता है, राखी होता है, पोस्टर मेकिंग होता है, गायन होता है, एकल गायन होता है, तो काफ़ी चीज़ों को आज हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटे से प्रोग्राम को लेकर के हम लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया और एक प्यारी सी सभी लोगों ने मिलकर के उनको एक श्रद्धांजलि दी।
6: मैं सिर्फ सुन रही थी क्योंकि मैम इतने प्यार से फाउंडर मैम के लिए बता रही थी, और मैंने भी सुना है मैम यहाँ सभी से कि पहले के टाइम में क्या होता था ना कि फोटो खिंचवाने के लिए कैमरा वगैरह नहीं होते थे। हाँ। तो जो लड़कियाँ लेकर के आती थी कहीं से भी कैमरा, या मैम से कहती थी मैम मेरे साथ फोटो खिंचवाइए, तो मैम एक एक बच्चे के साथ में फोटो खिंचवाती थी और सभी को बहुत प्यार करती थी, ऐसा मैंने यहाँ पे सुना है और अभी मैम से भी सुना। मैं जब आई तो मतलब मुझे तो उनका सानिध्य नहीं मिला, लेकिन जितना सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, उससे लगता है कि वो यही हैं, कहीं नहीं गई। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी कर्म भूमि में हमेशा हमारी जो आत्मा होती है वो बसी होती है, और उसकी महक आप कण कण में महसूस करते हैं, जैसे हम यहाँ महसूस करते हैं। तो वैसा ही प्यार उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर आज भी उतना ही बना हुआ है जितना तब था जब वो साक्षात थी, और अब नहीं है तब भी है। क्योंकि यहाँ जो भी लड़कियाँ आती हैं, पढ़ती हैं या यहाँ पर टाइम स्पेंड करती हैं, वो जानती हैं कि उनका एहसास हमारे लिए हमेशा हमेशा जिंदा है, और वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा है। जो दिल में होते हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, फिर चाहे वो आपके सामने हो या ना।
5: एग्जैक्टली exactly. और साथ ही साथ मैं बता दूं कि अंशिका उनका उनका स्वभाव ऐसा होता था ना कि वो अपने सामने किसी को दुखी देख ही नहीं सकती थी, और इसीलिए हमारे कॉलेज में ना, मतलब जब हम लोग के टाइम पर जब हम लोग आए थे यहाँ पर इस कॉलेज में, तो मेरे मतलब मेरे कुछ कहे बिना ही उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, और जॉब के लिए उन्होंने खुद ऑफर किया था. तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि उनके सामने बस जैसे हमारे क्या कहते हैं भोले बाबा है ना शिव, हम सभी को पता है कि उनके सामने अगर आपने रो दिया तो यानी जिसके नाम लेके रो दिया, जिसके लिए रो दिया, मान लीजिए कि उसका तो बिल्कुल बंटाधार हो ही जाता है, ठीक है. लेकिन आपके आंसुओं को वो नहीं देख पाते हैं. सेम ऐसे हमारी मैम थी कि आपके आंसुओं को वो बिल्कुल नहीं देख पाती थी. तो भाई आज के दिन हमारी प्यार भरी स्नेह भरा स्नेह भरे दिल से उनको एक बार फिर से श्रद्धांजलि.
6: बहुत बहुत श्रद्धांजलि, बहुत प्यार, बहुत सम्मान उनके लिए. तो याद करते हैं और यादों में हमेशा है, दिल में भी हमेशा है.
5: बिल्कुल
6: बिल्कुल. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आज बहुत ही प्यारा सा ये रिश्तों पे है, तो आज हम रिश्तों में बात ये करने वाले हैं मैम. टॉपिक ये है हमारा कि रिश्तों में ईगो क्यों आ जाता है. तो आज मैं आपको कुछ साइकोलॉजी से जोड़कर बताऊंगी कि आखिर ईगो होता क्या है और हमारे रिश्ते में आता क्यों.
5: ओके.
6: अगर हम इसे साइकोलॉजी की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो ये सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी कहती है कि हमारे अंदर तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो. इड का मतलब होता है कि हमारे अंदर वो मन जिसे हम बच्चा बोलते हैं, जो ये सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है, दुनिया में कुछ भी पा सकता है, यहाँ तक कि चांद भी हासिल कर सकता है, बट ऐसा होता नहीं है. ईगो जो हमारे रिश्तों में कड़वाहट ले आता है, और हमारा सुपर ईगो जो दोनों में सामंजस्य से बिठाता है और हमेशा कायदे के थ्रू ही हर काम को करता है. अगर इस तरीके से आप ईगो को समझेंगे तो ईगो रिश्तों में सबसे ज़्यादा तब आता है दो लोगों के बीच जब उनमें इनसिक्योरिटी आ जाती है. आपके रिश्ते में कभी इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिश्तों में आ जाती है. हमें ये लगने लगता है कि, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो हस्बैंड वाइफ हैं उनके रिश्ते में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके रिश्ते में, कई बार दो अच्छे दोस्तों के रिश्तों में भी ईगो आ जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि असुरक्षा की भावना हो जाती है कि मेरा ये दोस्त अगर किसी और से अच्छे से बात कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि मुझसे ज़्यादा अच्छे से उससे बनने लगी अचानक से, और जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं,
5: बिल्कुल नहीं.
6: रिश्ते में अगर हम एक बार अपनी जगह पुख्ता बना लेते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए हमारी ही रहती है, उसे कोई ले नहीं पाता है. भले हो सकता है कि आप नहीं है तो आपकी जगह किसी और से दो मिनट बात कर ली हो, लेकिन दो मिनट के बाद यही महसूस होगा कि यार वो नहीं है, अगर आपने अपनी जगह ढंग से बनाई है तो. तो इनसिक्योरिटी रिश्तों में आ जाती है जिसकी वजह से ईगो हो जाता है, धीरे धीरे हम कटना शुरू कर देते हैं और एक कड़वाहट को महसूस करने लगते हैं. दूसरा कारण होता है ईगो आने का कि कई बार हम ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए. कहने का मतलब है कि रिश्तों में कभी किसी के आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए. कई बार आप अपनी बहुत छोटे छोटे शब्दों से किसी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं. बहुत छोटा सा शब्द होता है, तुम वहां गई थी, क्यों गई थी, मुझसे तो नहीं पूछा, मुझे बताया नहीं तुमने, मुझे बता के जाना चाहिए था. वैसे ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट तो हर्ट हो सकती है ना, कि कोई क्यों, मतलब मुझसे पूछ कर जाना चाहिए था तो बिल्कुल नहीं होता, मुझे बता कर जाना चाहिए था, हाँ ये ठीक है. लेकिन ये बोलने का भी एक लहजा होता है. कई बार हम कहते हैं अरे जैसे मान लीजिए एक कंडीशन देती हूँ मैम, कि मान लीजिए कोई 2 बजे रात में 12 बजे रात में कहीं जा रहा है, तो एक पूछने का सेंस होता है, अरे क्या बात है बेटा, घर में कोई बीमार है, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं.
5: बिल्कुल.
6: तो वो आपको जवाब देगा कि हाँ मम्मा बीमार है या पापा बीमार है, मुझे कुछ इमरजेंसी है. दूसरा तरीका होता है, अरे 12 बजे रात में घूम रही है, जरा देख लो. तो वो सेंस अलग,
5: दोनों का टोन अलग है, दोनों का टोन अलग हो गया, मीनिंग अलग हो गई, और लोग ये चीज को बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं, मतलब इसको समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से कोई सामने वाला परेशान है.
6: बिल्कुल.
5: और थर्ड पॉइंट ये भी हो सकता है कि देखो अकेले घूम रही है, कहीं गई होगी घूमने. तो उसके पेरेंट्स देखो बिल्कुल उसका ध्यान नहीं देते. तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही सिचुएशन के कई पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं.
6: तो हमेशा अपनी टोन और अपनी जीप को बहुत संभाल के किसी के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए. क्योंकि देखिए, मान लीजिए आपका रिश्ता किसी से बहुत अच्छा है, दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन इस तरह की टोन आप एक महीना यूज करो, आप देखो आपके रिश्ते में कितनी कड़वाहट भर जाती है. क्योंकि कहते हैं कि शब्द बहुत सही चोट करते हैं.
5: बिल्कुल.
6: कोई हथियार उतना सही चोट नहीं कर सकता है किसी इंसान पर. शायद उसका घाव 10 दिन 20 दिन 25 दिन बाद भर जाता है, और हम भूल भी जाते हैं कि हमें कभी चोट लगी थी या किसी ने मारा था, लेकिन शब्दों की चोट पूरी लाइफ रहती
5: पूरी लाइफ रहती
6: और हम उस इंसान के साथ कभी जुड़ना नहीं चाहते हैं जो हमें शब्दों की चोट करते हैं।
5: Exactly.
6: हमारा मन यही करता है यार उससे बहुत दूर रहो वो ठीक
5: हाँ,
6: मन नहीं करता बैठने का मिलने का। मेरी लाइफ में भी ऐसे हैं कुछ लोग जिनके साथ मुझे बहुत मजबूरी मेरी होती है कि जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके साथ बैठूं, वरना मैं यही कोशिश करती हूँ कि जितना ज्यादा हो सके मैं उतना अवॉइड करूं। इसलिए कहीं ना कहीं रिश्तों में ईगो आता है हमारी बोलने की तरीके की वजह से।
5: Exactly.
6: इसलिए उसे हमेशा सुधारना चाहिए। तीसरा और सबसे बड़ा कारण होता है रिश्तों में ईगो आ जाने का कि हमेशा खुद को सही साबित करने की जद्दोजहद। हमेशा खुद को सही साबित करने की जद्दोजहद रिश्तों में कभी नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ की बात हुई कि हर बात हर पॉइंट पर आप ही सही हैं? मतलब क्या तस्वीर का एक रुख आपने देखा तो वही सही है, दूसरा आपको जानना नहीं है पूछना नहीं है? अगर इसी एग्जांपल को जो हमने अभी दिया हम इसको उलट दें थोड़ा सा पलट दें अगर तो मान लीजिए कि आपने किसी को रात में 2 बजे जाते हुए देखा तो आपने मन में एक धारणा बनाई कि ये गलत मतलब ये जा रही होंगी तो कुछ गलती करने जा रही होंगी, लेकिन हो सकता है कोई फैमिली इमरजेंसी हो कोई घर में बीमार हो, आपने वो पहलू क्यों नहीं देखा? और ये इंसान जो इस तरह की कंडीशन में होते हैं वो ये मान भी लेते हैं कि जो वो सोच रहे हैं बस वही सही है, बाकी सामने वाला कितनी भी एक्सप्लेनेशन दे डाले कि नहीं ये नहीं ये बात थी, अरे जाओ हम सब समझते हैं। तो क्या समझते हैं आप? इसका मतलब है आपने अपने माइंड में जो बुन लिया आप बस उतना ही समझते हो, आपकी उतनी ही दुनिया है बाकी कोई दुनिया नहीं। और इससे हमारे रिश्ते में धीरे धीरे ईगो आता है, उस इंसान में ईगो आता है, और ईगो आपके रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि जहां मैं आ गया वहां फिर मैं से शुरू होकर मैं पर ही लाइफ पूरी खत्म हो जाती है, हम की तरफ कभी जाते ही नहीं, हमें लगता है हम सही हम जो कर रहे हैं बस सिर्फ हम नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही, मैं जो देख रहा हूँ वो सही, मैं जो करना चाहता हूँ वो भी सही। रिश्तों में यह कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा दूसरे को भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको आम पसंद हो तो दूसरे को संतरा पसंद हो, तो व्हाट इज मीन हो सकता है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है कि हम हमेशा सोचे कि हमें आम पसंद है तो दूसरे को भी आम पसंद होना चाहिए,
5: ऐसा भी नहीं है कि अगर मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें किसी दूसरों की चॉइस पे दूसरों की खुशी पे भी हमें काम करना पड़ता है, लाइफ में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं।
6: अब ऐसा तो देखिए इसको एक एग्जांपल मैं ये देती हूँ कि मान लीजिए मैम ही है, हम अगर उनका बेटर चाहते हैं कि वो बेटर हो आगे जाएं खुश रहें तो हम उसके लिए पुश करेंगे कि मैम आप ये करिए तो आप खुश रहेंगे, क्यों? क्योंकि मैं उनका बेटर चाहती हूँ।
5: हाँ।
6: भले वो देखिए कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं ना अच्छा इस तरह इस बात को लेते हैं कि मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना पड़े, माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर जब उनकी बाहर कहीं किसी और सिटी में जॉब लग जाती है तो माँ बाप ये नहीं कहते हैं कि बेटा मुझे छोड़ के मत जाओ।
5: हाँ।
6: हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, माँ बाप कहते हैं आप जाइए अपनी लाइफ बनाइए हम जहाँ हैं वहाँ रह लेंगे, बस कभी कभार मिलने चले आना कुछ फेस्टिवल्स पे चले आना, इतनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और बच्चे भी कहते हैं नहीं मम्मी पापा हम जा जरूर रहे लेकिन हम आपकी पूरी केयर करेंगे।
5: हाँ।
6: तो दूर सही लेकिन किसी के बेटरमेंट के लिए अगर किसी को दूर भी जाना पड़े तो वो छोड़ना एक खुशी होती है कि कोई बात नहीं मुझसे 2 गज दूर सही लेकिन अगला इंसान खुश है। ठीक
5: हाँ।
6: इसी तरीके से ईगो आपके रिश्ते में नहीं आता है, लेकिन ये सोचना कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं जाना

0: है उनके पास में, लेकिन इतनी ज्यादा मतलब अपने आप को मतलब वो बना लेना कि यस मैं लॉयन हूँ यहाँ का, मतलब मैं ही हूँ मतलब घर में, कि हाँ मतलब मेरे हिसाब से कुछ नहीं, जो मैं करना चाहता हूँ करना चाहती हूँ सिर्फ वही होगा, किसी और के कुछ नहीं हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ईगो का कारण बनता है।
1: बिल्कुल। और एक कारण और होता है ईगो का, जो कि काफी बड़ा होता है, जो कि होता है जब आप फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं तब आपको ईगो आ जाता है। और देखिए, पैसे हम हमेशा कहते हैं कि सब कुछ नहीं होते पर बहुत कुछ होते हैं। अपनी लाइफ एक अच्छी तरीके से जीने के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, कि हमारे पास सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, घर होना चाहिए, बस। लेकिन जब हमारी इच्छाएं ऊपर तक बढ़ जाती हैं, एक गाड़ी है तो दो होनी चाहिए, एक फ्लैट है तो दो होना चाहिए, एक फोन है तो दो होना चाहिए, अगर हमारे पास 10,000 का फोन है तो हमारे मन में आता है यार इसमें मजा नहीं है, 1,00,000 का आईफोन होना चाहिए, वहां आप ऊपर जाने लगते हो। और एक बात और है कि लक्ष्मी और सरस्वती का कोई मेल नहीं। अगर आपके पास लक्ष्मी है तो इसका मतलब है आपके पास सरस्वती तो कतई नहीं है।
0: और जिनके पास लक्ष्मी जी और सरस्वती दोनों ना हो तो?
1: नहीं, ऐसे तो नहीं होता है मैम, एक तो होता ही है।
0: ऐसे होता है?
1: नहीं, ऐसा नहीं,
0: ऐसा है। एग्जाम्पल मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है।
1: नहीं मतलब मेरा सेंस ये कहता है कि सरस्वती होंगी, बट कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग इतने इनोसेंट होते हैं,
0: बहुत कम है,
1: हाँ
0: कम समय के लिए
1: नहीं, कि उन्हें अपने ज्ञान का भी पता नहीं होता, जो बहुत इनोसेंट होते हैं। आप कभी देखिए, बच्चा होता है उसके पास है बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन उसे अपनी नॉलेज का कोई वो नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, मतलब ये हो सकता है गलत भी बैठ जाए, बट मुझे लगता है ये एग्जाम्पल सही बैठेगा, कि भगवान जो हनुमान थे उनको बहुत सारी शक्तियाँ थी, बहुत सारे वरदान थे, लेकिन वो सारी अपनी शक्ति और अपना वरदान जो है वो भूल गए थे। तो जामवन जी जब उनको समय समय पर याद दिलाते थे कि तुम्हारे पास ये शक्तियाँ हैं, तो उनको वो याद आ जाता था, फिर वो भूल जाते थे, और फिर थोड़ी देर बाद जब जामवन जी याद दिलाते थे, मतलब जितनी बार वो याद दिलाते थे उतनी बार ही उनको याद आता था, अदरवाइज वो भूल जाते थे। तो कुछ लोगों की कंडीशन वैसी ही होती है कि जब उन्हें आप रिमेम्बर कराते हो तब उन्हें याद आता है, और नहीं तो वो भूल जाते हैं। वो बच्चों वाली इनोसेंस होती है, वो है लक्ष्मी, मतलब भगवान ईश्वर करे सरस्वती भी हो लक्ष्मी भी हो, लेकिन जो अहम में रहते हैं
0: उनके लिए ये बात,
1: उनके पास कभी दोनों नहीं होता,
0: उनके पास
1: सिर्फ एक ही होगी।
0: बिल्कुल, हाँ उनके पास तो फिर मतलब किसी और, बहुत सारे मेरी हम सभी की जिंदगी में ऐसे लोग आते
1: ऐसे
0: हैं,
1: लोग
0: तो किसी के पास अगर लक्ष्मी है तो सरस्वती नहीं है, सरस्वती है तो लक्ष्मी नहीं है।
1: बिल्कुल। और एक बात और है कि लक्ष्मी नहीं है तो कमाई जा सकती है, लेकिन वो सरस्वती के बलबूते पर।
0: हाँ।
1: अगर आपके पास सरस्वती ही नहीं है तो फिर तो आप लक्ष्मी भी,
0: अगर बुद्धि ही नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता,
1: फिर तो कुछ नहीं हो सकता है ना। इसलिए सरस्वती सबसे पहले होनी चाहिए, वो अगर होंगी तो लक्ष्मी आप अर्जित कर लेंगे चाहे किसी भी तरीके से। तो फोकस ऑन दैट। तो अभी तक हमने आपको बताया ईगो रिश्तों में क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, अब अपने रिश्ते को ईगो आने के बाद सही कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, लेकिन सही करने का डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है, वो हमारी बहुत ही प्यारी क्यूट इनोसेंट अच्छी सी
0: ठीक है, ज्यादा बटरिंग ना करो।
1: नहीं नहीं नहीं
0: ठीक है, तो मैं बताऊंगी लेकिन आफ्टर ब्रेक, ठीक है। तो चलिए फटाफट एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के उस पार आएंगे, हम बताएंगे आपको कि अगर आपके रिश्तों में ईगोस्टिक है तो उसको कैसे ठीक करा जा सकता है, बिल्कुल गो टू हेल कह करके या प्यार से समझा करके। तो ये सब जानेंगे लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9268 9976 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता और साथ में है
6: RJ अंशिका।
5: तो चलिए भाई, जिस ईगो स्टिक के लिए बात हो रही थी, और अब टाइम आ गया है कि हम बताने जा रहे हैं आपको कि कैसे इसको हम निवारण में ला सकते हैं।
6: निवारण बताइए।
5: अगर रिश्ते में ईगो आपके घर कर चुका है तो इसे कैसे ठीक करें? ये ठीक करने का डिपार्टमेंट ये मुझे क्यों देती है, आई डोंट नो।
6: आप ठीक बहुत अच्छे से करती है ना, लोगों को, हाँ, चीजों को
5: ठीक है,
6: थ्योरीज को भी
5: ठीक है। बोले सबसे पहला इसमें आता है कि सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि जब हमारी सेल्फ अवेयरनेस होती है उसमें होता है कि सबसे पहले खुद से पूछें कि क्या आपने अपनी गलती मानने से डरते हो? क्या आप अपनी गलती मानने से डरते हैं? बताइए।
6: नहीं
5: डरते हैं, नहीं डरते हैं ना।
6: मैं तो नहीं डरती।
5: ईगो को पहचानने से ही उसे खत्म किया जा सकता है। जैसे अगर हमने कोई गलती करी है और हम उस गलती को मान रहे हैं, यानी आपके अंदर ईगो नहीं। अगर आपने उस गलती को नहीं माना, आर्गुमेंट किया, बहस करी, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ईगो है। अंशिका ने ऐसे कई बार किया है पहले, अब नहीं करती है, बट पहले ऐसा किया है, अपनी गलती नहीं मानना, आर्गुमेंट करना, अब इसके अंदर सुधार आ गया है, अब उसको बोलो यस ठीक है। दूसरा आता है कि एक्टिव लर्निंग। तो एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है कि जब पार्टनर से हम बात करें तो जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि उनकी बात और दर्द को समझने और सुनने के लिए। अब पार्टनर इन द सेंस की कोई भी हो सकता
6: कोई
5: है,
6: भी हो सकता
5: दो
6: है।
5: बहने भी हो सकती हैं, दो भाई भी हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, पापा और बेटा हो सकता है, बेटी और माँ हो सकती है, दो फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर मेल एंड फीमेल आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं,
6: कोई भी
5: हो सकता है। तो अगर पार्टनर की बात आप सुन रहे हैं तो तुरंत बात को समझें और तुरंत उसको एक्टिवनेस में ना आए, तुरंत उसको सुने, लेकिन आप ना जैसे कि एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, उसके दर्द को समझने की, उस बात के पीछे का कारण समझिए कि क्या बात है कि जिसकी वजह से उसके अंदर ये चीजें आई।
6: समझ में
5: ऐसे करना। सेकंड आता है कि मैं की जगह हम का प्रयोग, क्योंकि बातचीत में तुमने ऐसा किया कहने के बजाय मुझे ऐसा महसूस हुआ। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सामने वाला आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपके डिफेंस में बात करेगा। फिर जैसे कहते हैं ना कि मुझे, जैसे हम अंशिका से कभी नाराज अगर हो जाते हैं तो मैंने ऐसा किया कि अंशिका मुझे ऐसा फील हुआ, अगर मैं ये कहूँ कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, तुम ही ने किया है, तुमने जानबूझ के किया है, तो इस लैंग्वेज में और इस लैंग्वेज में कि मुझे ऐसा फील हुआ, हो सकता है तुमने किया हो बट तुम्हारा सेंस ऐसा ना हो, तो दोनों में कितना अंतर है?
6: बहुत ज्यादा,
5: बहुत अंतर है ना। एंड उसके बाद आता है कि माफी मांगना और माफ करना। झुकने से कोई छोटा नहीं होता है। रिश्ते को जीतने के लिए अपने ईगो को हारने देना सबसे बड़ी समझदारी भरा कदम होता है। ठीक है,
6: समझ गई।
5: लेकिन जहां आप ईगो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए वहां पर तो झुकना भी नहीं चाहिए।
6: बिल्कुल नहीं,
5: बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, काउंसलिंग की मदद करनी चाहिए। अगर ईगो की दीवार बहुत मजबूत हो चुकी है तो किसी सेटिस्फाइड रिलेशनशिप काउंसलर या फिर आप एक टॉक थेरेपी से उस रिश्ते को और मजबूत कर सकते हैं। टॉक थेरेपी का मतलब है कि उस रिश्ते को और पकने दें। पकने का मतलब होता है कि उसको समय दें, थोड़े दिन के लिए आप लिव आउट कर दें, आप उसको बिल्कुल स्पेस कर दें कि आपकी वैल्यू उनको समझ में आए और उनकी वैल्यू आपको समझ में आए, तो ही ये। और उसके बाद एक टॉक थेरेपी, जो कि बात करने से बड़े बड़े मसलों के हल भी निकल आते हैं।
6: बिल्कुल समझ में आया, इसीलिए मैं हमेशा निवारण मैम को देती हूँ क्योंकि वो बहुत प्यार से समझा देती है, बहुत अच्छे से। तो वो बहुत ब्रीफ में आपको समझा दिया गया है, इन सभी पॉइंट्स पर काम करें और अपने रिश्तों को हमेशा बेहतर रखें और ईगो नाम की दीमक कभी नहीं लगने दें अपने रिश्तों में।
5: लेकिन उसके पहले बता दूं कि हमारे लिसनर्स जैसे कि सुनील यादव जी, गुड आफ्टरनून बोथ ऑफ यू।
6: गुड आफ्टरनून सुनील जी।
5: सुनील जी लिख रहे हैं कि मैं दिल्ली में हूँ, बारिश हो रही है और गोंडा में बारिश हो रही है क्या? थोड़ी सी मॉर्निंग में हुई थी सुनील जी, बट अभी ऐसा नहीं है, हल्की सी बारिश वाला मौसम है। गीता जी, शुभ दोपहरिया आरजे समता मैम एंड आरजे अंशिका मैम।
6: शुभ दोपहरिया गीता जी।
5: नागेश्वर जी लिख रहे हैं कि आरजे समता मैम एंड अंशिका मैम को शुभ दोपहरिया एंड गुड आफ्टरनून।
6: शुभ दोपहरिया नागेश्वर जी।
5: एंड लिख रहे हैं कि हर जगह औरतों को ही गलत ठहराया जाता है, सामने वाले की परेशानी नहीं समझते हैं, हो सकता है आधी रात में उसको बाहर निकलने की कोई मजबूरी होगी।
6: बिल्कुल।
5: महेंद्र राजस्थान से महेंद्र जी ने लिखा है कि मैम आप सही कह रही हैं, बिल्कुल राइट। एंड नागेश्वर जी लिख रहे हैं फिर से कि हैप्पी बर्थडे कृष्णा मैम, आप जहां भी हो आपका आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखिएगा, आपकी यादें सदा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी।
6: थैंक यू नागेश्वर जी इस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लाइंस के लिए।
5: तो अब क्या करना चाहिए?
6: अब करना ये चाहिए कि हमने बहुत सारी कर ली है बकबक, हमने बहुत सारी कर ली है बकबक, तो चलिए लेते हैं एक प्यारा सा सबक, सुनते हैं एक प्यारा सा गाना तराना और उसके बाद आते हैं बताने आगे का फसाना।
5: ओह माय गॉड, तो चलिए हर बार की तरीके से हम इनको अभी देते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और हम आते हैं छोटा सा एक खा करके थोड़ा सा क्या जिसको कहते हैं किटकैट।
6: नहीं,
5: तो चलिए दोस्तों हम बस यू गए
6: किटकैट खा के आते हैं।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर
3: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है
5: आरजे अंशिका।
4: तो चलिए भाई, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी हमारे पास है पूरे 15 मिनट, तो शुरू करते हैं आज के ब्यूटीफुल डे को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, यानी कि आज के ब्यूटीफुल से टिप्स।
5: बिल्कुल, आज टिप्स भी हैं, कुछ ट्रिक्स भी हैं आपके फेस को भी अच्छा बनाने के लिए, और साथ ही साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं, तो सब बताते हैं आपको। तो सबसे पहले मैं जो बताना चाहती हूँ वो आज बालों के लिए है।
4: हाँ, मैं पता ये चीज़ मैं बोलने वाली थी कि अंशिका कुछ बालों के लिए बताएंगे, क्योंकि इस समय ना बाल बहुत ज़्यादा सबके टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, क्योंकि मौसम ऐसा है, बारिश वाला है और इचिंग होती है बालों हमारी सर की स्कैल्प पे। तो कुछ ऐसी रेमेडी बताएं ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं ना उन्हें राहत फील हो।
5: तो चलिए सिर्फ दो चीज़ों से बताते हैं, और वो दो चीज़ें भी ऐसी जो आपके घर में 2400 घंटे तो होती ही होंगी। तो एक है जो हम यूज़ करते हैं, पोहे में डालते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में,
4: कड़ी पत्ता।
5: राइट,
4: देखा, हम पता है हमें।
5: और दूसरा है जिसके लिए एक प्यारा सा मुहावरा कहा जाता है कि अगर ये आपकी आंखों में बहुत लगता है तो सास बहुत प्यार करती है, बाकी मुझे तो पता नहीं।
4: प्याज।
5: यस,
4: ये इतने बच्चों वाले टिप्स पूछोगी तो, सवाल पूछोगी तो कोई भी बता लेगा।
5: हाँ, तो मैंने इसलिए पूछा।
4: हाँ जी,
5: तो चलिए इन दोनों से बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको प्याज का रस निकाल लेना है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि प्याज और कड़ी पत्ता ही क्यों, तो मैं बता दूं कि प्याज में सल्फर होता है जो कि हमारी बालों की स्कैल्प को मजबूती देता है, जिससे कि बाल जड़ से नहीं टूटते। आपने देखा होगा किसी किसी के बाल बुरे लंबे लंबे जड़ से टूटते हैं, वो नहीं होगा, और प्याज के रस की वजह से आपको इचिंग भी नहीं होगी। करी पत्ता इसलिए क्योंकि करी पत्ता सॉफ्ट कर देता है बालों को, उसमें शाइनिंग लेकर के आता है। अब बताते हैं करना क्या है। अपने बालों के हिसाब से आप एक प्याज या आधा प्याज, जितना भी आपके बालों में हो जाए उस हिसाब से आपको रस निकाल लेना है प्याज का। प्याज का रस निकाल लीजिए और उसके बाद उसमें थोड़े से करी पत्ते पीस करके आपको मिला लेने।
4: फ्रेश। अच्छा,
5: फ्रेश करी पत्ते अगर हो सकते हैं तो फ्रेश, अदरवाइज अगर आपके पास खरीद करके भी रखे हुए हैं तो कोशिश करिएगा कि बहुत ज्यादा पुराने ना हो। ठीक है, करी पत्ता ले लेना है। अपने बालों के अकॉर्डिंग प्याज और करी पत्ता दोनों आप लीजिएगा, और करी प्याज का रस और करी पत्ते को पीस कर अच्छे से मिला लीजिए, और कॉटन की मदद से धीरे धीरे आपको उन्हें अपनी बालों की जड़ों में लगाना है। और ठीक 20 मिनट के बाद आपको अपने बाल किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेने हैं, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप चाहें तो वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार इसको कर सकते हैं, खास तौर से मानसून में, क्योंकि मानसून में क्या होता है ना कि हम कितना भी बचने की कोशिश करें लेकिन कहीं ना कहीं हम जब बाहर निकलते हैं, घर के काम करते हैं और पानी बरसता है तो थोड़ा बहुत पानी तो बालों में चला ही जाता
4: है। अरे कितना अवॉइड करेंगे, कहीं हम लोग मार्केट जा रहे हैं, कहीं कॉलेज जा रहे हैं, कहीं कुछ भी, या घर में ही अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो काफी चीजें ऐसी होती है कि अब हमेशा तो हम लोग छाता लेके घूमेंगे नहीं।
5: बिल्कुल,
4: तो फिर ऐसा ही होता है कि थोड़ी बहुत तो पानी की बूंदें हमारे बालों में पड़ ही जाती है,
5: इसलिए आप इसको यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा
4: जी।
5: दूसरी चीज है कि कुछ टिप्स भी हैं जो कि ये है कि गीले बालों में कभी कंघी नहीं करनी चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है गीले बालों में कोम करने की, या फिर कुछ लोग कहते हैं अरे गीले बालों में तेल लगाने की भी बहुत लोगों की आदत होती है।
4: मेरी मम्मी की आदत बहुत है
5: कि गीले बालों में तेल लगाओ तो बाल शाइन करते हैं, लेकिन गीले बालों में तेल लगाने से बाल शाइन नहीं करते बल्कि चिपचिपे हो जाते हैं
4: और वो जल्दी से टूटते भी।
5: इसलिए कभी गीले बालों में नहीं लगाना चाहिए तेल। दूसरी चीज ये होती है कि बहुत ज्यादा बालों को हीट नहीं देनी चाहिए। बहुत ज्यादा हीट देने का मतलब है, जैसे बहुत लोग हेयर ड्रायर का, स्ट्रेटनर का, कुछ लोग तो हेयर ड्रायर मैंने देखा है मैम डेली में यूज करते हैं कि अगर बाल धुले जरा से धुले नहीं या गीले हो गए तो तुरंत अरे हेयर ड्रायर है ना लाओ सुखा ले
4: सुखा ले।
5: हेयर ड्रायर से देखिए जो उसमें से जो हवा निकलती है जो जो आपके बालों को वो करती है वो गर्म होती है। बालों को ज्यादा हीट देने से बाल धीरे धीरे पतले होकर टूटना शुरू हो जाते हैं।
4: गीता मैम पूछ रही हैं कि प्लीज मैम बताएं कि माइल्ड शैम्पू क्या होता है, जो कि हमेशा से हम लोग कहते हैं ना, तो माइल्ड शैम्पू क्या होता है?
5: माइल्ड शैम्पू का मतलब होता है कि जैसे आप रेगुलर जो भी शैम्पू यूज करते हैं, जैसे कि एक कोई ब्रांड का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन माइल्ड शैम्पू का मतलब होता है केमिकल्स भी उसमें कम होते हैं।
4: और सबसे अच्छी बात मैं एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि कभी कभी ये होता है गीता जी कि हम लोग ना कोई मेडिकेटेड शैम्पू का यूज करते हैं, ठीक है। मेडिकेटेड शैम्पू मतलब किसी भी आप मेडिकल की शॉप से अब तो बहुत सारे ब्रांड्स के मिल रहे हैं, तो मेडिकेटेड शैम्पू होते हैं ना, दैट्स कॉल माइल्ड शैम्पू। अगर हम किसी भी मतलब जैसे किसी भी ब्रांड का ले रहे हैं, जैसे कि अब मैं क्यों मतलब क्या वाटिका हो गया और सनसिल्क हो गया और कौन से शैम्पू आते हैं, वाटिका है, सनसिल्क है, हेड एंड शोल्डर है, ये सब जो शैम्पू होते हैं ना ये माइल्ड शैम्पू नहीं होते हैं। ये इसमें आपको केमिकल तो मतलब आता ही आता है क्योंकि इससे जल्दी से आपके बालों की जो मैल होती है ये फटाफट साफ होती है। लेकिन अगर आप मेडिकेटेड शैम्पू जो आप लेते हैं, जो कि जैसे रीठा आंवला जिसमें मिक्स होता है और भिंगराज, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, यानी कि मेडिकेटेड शैम्पू का मतलब हो गया कि किसी भी आप मेडिकल्स की जो शॉप पे शैम्पू आते हैं जो आपको क्या कहते हैं रिकमेंड किए जाते हैं शैम्पू, मैं खुद वही यूज़ करती हूँ, मुझे ब्रांड नहीं पता है, उसका नाम नहीं पता है, लेकिन वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। माइल्ड शैम्पू का मतलब हो गया कि जिसमें केमिकल नहीं हो, सल्फर कम हो और आपकी जो सर की स्कैल्प है वो उससे ज्यादा जल्दी से खराब नहीं हो।
5: जैसे एक शैम्पू आता है आंवले वाला जो यूज किया जाता है वो माइल्ड शैम्पू।
4: आंवला होता है, शिकाकाई होता है, रीठा होता है, तो उसका नाम नहीं पता है, उसी को ही जैसे इस टाइप के जो शैम्पू होते हैं उसको माइल्ड शैम्पू कहते हैं।
5: राइट, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे कि हमेशा बालों को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए हमेशा हमें जब भी बालों की बात आए तो मेथी ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेथी आपके बालों को प्रॉपर प्रोटीन देता है। कभी भी जैसे हम हमेशा ये क्यों बताते हैं आप लोगों को, जब भी बताते हैं चाहे मैम बताती हैं मैं बताती हूँ कि हमेशा मेथी दाना यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसमें प्रॉपर प्रोटीन होता है। लेकिन आज हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मेथी लगाने के साथ साथ जैसे मैम हमेशा बताती हैं कि मेथी खानी भी चाहिए, दोनों, तो वो दोहरे तरीके से आपको बालों के लिए फायदेमंद होती है। अब आते हैं कि कुछ फ्रूट्स से भी बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी आंवले की,
4: बिल्कुल
5: आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आज मैं आपको एक कप बता देती हूँ आंवले और पपीते का, जो मुझे पता चला था, लेकिन मैंने
4: आंवला और पपीता दोनों खाने वाली चीजें
5: दोनों खाने वाली चीज़ें। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको आंवला फ्रेश लेना है, जिसे हम फ्रेश आंवले लेते हैं ना अचार के लिए, वैसे ही फ्रेश आंवले लीजिएगा और उसको अच्छे से मैश कर लीजिएगा। चाहे तो आप ग्राइंडर में डाल के उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक प्रिकॉशन करना है कि पानी बिल्कुल नहीं, वरना वो बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आंवला ले लेना है, चाहे आप आंवले का पाउडर ले लीजिए, आंवले का पाउडर मुझे लगता है ज्यादा बेटर होगा, आप 2 चम्मच आंवला पाउडर ले लीजिए और उसके साथ पपीते का टुकड़ा ले लीजिए
4: जी,
5: वो आप अपने हिसाब से लीजिएगा जितना आपके बालों में अच्छे से लग जाए, और दोनों को ही आपको मैश कर लेना है अच्छे से, मतलब पपीते को अच्छे से मैश कर लेना है, उसमें आंवला पाउडर मिला देना है और फिर इसे अच्छे से पूरा एक बैटर की तरीके से, पेस्ट की तरीके से बना लेना है और अपने बालों में लगाना है।
4: बिल्कुल,
5: इसके आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपके बाल जो है वो झरेंगे नहीं, और जिनके भी बाल आपने देखे होंगे कई बार फोरहेड से बाल गायब होते हैं, जैसे जगह खाली होती है तो वहां पर नए बाल आ जाते हैं, तो इसको आप यूज करिए, लेकिन मंथ में सिर्फ एक बार इसको यूज करिएगा।
4: बिल्कुल, तो अंशिका बस छोटू सा एक गाना अभी प्ले करेंगे एंड देन उसके बाद आएंगे हम लिसनर से बाय बाय करने के लिए, क्योंकि ना टाइम हमारा बिल्कुल ओके है और खत्म होने वाला है। तो चलते हैं फटाफट एक प्यारे से गाने की और एंड देन आएंगे आपसे आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ बताएंगे एंड आपको टाटा बाय बाय वाला गाना भी सुनाएंगे। तो बस हम यू गए यू आए।

0: चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं आप केवल म्यूजिक सुनिए केवल प्यारी प्यारी सी म्यूजिक सुनिए। तो आइए अभी आज का टिप ऑफ द डे हम आपको बताने के बाद में हम आपसे करेंगे टाटा बाय बाय।
1: तो आज का टिप ऑफ द डे, टिप ऑफ द डे लास्ट बट नॉट लीस्ट वाला हमारा ब्रह्मास्त्र है जो कि है कि 100 सवाल के एक जवाब और वो है एलोवेरा जेल।
0: ओह माय गॉड,
1: रात को सोने से पहले फ्रेश एलोवेरा जेल लगाएं, मॉनसून में चिपचिपेपन और कम दाग धब्बे
0: फेस पे और क्या कहते हैं कि बालों पे भी लगा सकते हैं। और फेस पे लगाने के लिए उसमें हल्का सा एक दो ड्रॉप अगर आपने उसमें मिला दिया क्या कहते हैं कि नारियल का तेल, तो मैं क्या ही बता दूं, बिल्कुल मस्त एंड मस्त हो जाएगा, बढ़िया वाला हो जाएगा। ठीक है, तो भैया चलिए हम दोनों को दें इजाजत, और अंशिका को तो मैंने भगा दिया क्योंकि बेचारी वो बहुत अभी वो कॉलर ट्यून गोंडा में भी आएगी, तो हम दोनों को दें अभी यानी मुझे दें इजाजत। मैं मिलूंगी कल सुपर से भी ऊपर वाले, सैटरडे है और सैटरडे के दिन फन होता है आप सभी को पता है, तो हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 981 9076।

0: पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा,
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
4: हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। 89.6 FM आप सुन रहे हैं, आपके अपने गोरा शहर की धड़कन रेडियो ज्ञानस्थली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो जॉकी उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी वैल्यू स्टूडियो में। और घड़ी में वक्त हो चला है 3:03 बाय स्टूडियो क्लॉक। एंड ऑफकोर्स ये वक्त होता है आपके अपने कॉल ट्यून गोरा, यानी कि आपके फरमाइशों के कार्यक्रम का, फरमाइशों वाले प्रोग्राम का, यानी कि सुरों की महफिल का। तो इस सुरों की महफिल में आपका स्वागत है, जहां पसंद होती है आपकी और ऑफ कोर्स आपकी होस्ट एंड दोस्त का साथ होता है, बातें होती हैं हमारी। तो भैया चैट बॉक्स में अटेंडेंस लगा दीजिए, साथ ही कॉल करके अपनी फरमाइशें हम तक भेज दीजिए। कुछ फरमाइशें आना शुरू भी हो चुकी हैं, तो अगर आपकी फरमाइश अभी तक नहीं पहुंची है तो इंतजार ना करें, क्योंकि फ्राइडे स्पेशल होता है पूरे पूरे 2 घंटे का। तो आप मुझे आराम से अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर। और जो हमारी पहली फरमाइश आई है वो यहां से नहीं आई है, भारत से छोड़ के, भैया भारत के बाहर से आई है, यानी सऊदी से आई है। तो हम फरमाइश की तरफ तो बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमको पता चला स्टूडियो में आज एंट्री लेते ही कि कल हमारे लिसनर मुझे बड़ा मिस कर रहे थे। जब हम गहरी नींद की आगोश में थे, तब हमारे लिसनर हमें चैट बॉक्स में बहुत मिस कर रहे थे। तो भैया हम आज आ चुके हैं, तो आप बताइए आप कहाँ पर हैं। फिलहाल एक चीज़ और बतानी है आपको कि मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स आ चुके हैं दोस्तों। आपको नहीं पता जो आपको दिखता है वो असल में होता है कि नहीं होता है, तो ज़रा सावधान रहिएगा। किताबों के पीछे अक्सर आपने लिखा देखा होगा नकलों से सावधान, वही मैं आज आपको बताने भी आई हूँ कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो किसी न किसी की नकल कर रहे हैं। फिलहाल के लिए स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप स्कैम्स में नहीं फंसेंगे और इन्जॉय करते रहेंगे कॉल ट्यून गोना। हम आपको सुनाने जा रहे हैं आज की हमारी पहली फरमाइश जो आई है सऊदी से, और ये फरमाइश आपको पता ही है, गैस कर लिया होगा आई थिंक आपने की किसने की है। भैया मुस्तफा जी ने की है, और कौन किया है और कौन करेगा। और मुस्तफा जी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। ओए होए होए, बहुत ही रोमांटिक, बेहद ही खूबसूरत गाना आया है, एंजॉय करते रहिए। है, मिलते हैं इस गाने के उस बार लेकर के आपकी फरमाइश, तो भेजते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गोना अपनी आर श्रीमती के साथ।

हां जी, तो आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में रूठने मनाने वाला वो गाना जिसको सुनने के बाद आई थिंक आपका भी दिल रूठने का कर रहा है ना भाई। अगर इस तरह से मनाया जाएगा तो रूठने में क्यों मजा नहीं आएगा। हम आपको बता दें, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गाना है ये, एंड दो कलियां फिल्म से है, ऑफकोर्स फिल्माया गया था 1968 में। इस कदर खूबसूरत है कि अगर मुझे कोई ऐसे मनाए ना तो मैं हर दिन मुंह फुला के बैठ जाऊं, मुझे बड़ा मजा आएगा। फिलहाल आपने बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश की थी, तो और इसी गाने के साथ हमारे कॉल ट्यून गोना का आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, आपके सुर की महफिल सज चुकी है और सऊदी से हमने पहला गाना प्ले कर भी दिया है। फिलहाल क्या ख्याल है आप सभी का? आई होप आपको याद होगा कि आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गोना फ्राइडे स्पेशल विद योर आरजे उन्नति, और आपने ट्यून किया 89.6 एफएम ये गोना शहर की धड़कन। अपनी फरमाइशें आप भेज सकते हैं हमें कॉल करके 6393316429 पर, आईडी 6393316429, और मैं आपका इंतजार करती रहूंगी आपकी फरमाइशों का, आपके डेडिकेटेड सॉन्ग्स और कुछ मैसेजेस का। इससे पहले कि हम अपने अगले गाने की तरफ चलें, आइए चलते हैं चैट बॉक्स में, क्योंकि आपके मैसेजेस इंतजार कर रहे हैं मेरा, और मैं कब से इंतजार कर रही थी इस फ्राइडे का। तो भैया हमारे सबसे पहले जो मैसेज आया है वो मुस्तफ़ा जी का ही आया है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं हम कॉल ट्यून गोना में। इसके बाद महेंद्र दीपन जी जो मैं सुन रहे हैं राजस्थान फिलहाल हैं इस वक्त सूरत में आई थिंक, लिखा है गुड आफ्टरनून मैम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे?

तो भैया उजरे भैया ने हमको इस गाने को भेजा है और आप सुनिए हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। ओए होए होए, मतलब क्या आज आप लोगों ने क्या ठान लिया है कि हम आएंगे और 90s के 80s के 60s के वो गाने बजाएंगे जो नतीजे आपको बड़े पसंद आएंगे। फिलहाल अगर हाँ तो इंजॉय करते रहे कॉल ट्यून गोंडा, मिलते हैं इस गाने के उस पर। उजरे भैया की फरमाइश, आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गोंडा, वे देव राज है उन्नति, भूलिएगा नहीं।

भैया कहीं नहीं जाएंगे घूम घाम के आपके साथ स्टूडियो में जुड़ जाएंगे और कालोचून घूंटा में आपके गानों की फरमाइश की प्लेलिस्ट यूं ही प्ले करते जाएंगे और हम कहां ही जा सकते हैं। फिलहाल उजरे भैया की फरमाइश पे आप एंजॉय कर रहे थे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से धरती धरती काहे पुकार के ओके 1969 में फिल्म आई थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले 1968 का गाना सुना था और एक साल आगे बढ़कर हम 1969 पर आ गए अपनी अगली फरमाइश को लेकर के। जितेंद्र नंदा के ऊपर फिल्माया गया सॉन्ग है लता जी और मुकेश की आवाज़ में, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है और मजरू सुल्तानपुरी के बोल लिखे हैं। इतने खूबसूरत से गाने को एंजॉय करने के बाद आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। लेकिन उससे पहले महेंद्र जी लिख रहे हैं, सही कहा, अभी सूरत से ही सुन रहा हूं। जी मुझे याद है बादाम का असर थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है। एंड जुगल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जुगल किशोर वर्मा फ्रॉम एमपी, सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार, आपका भी स्वागत करते हैं क्वालिटी उनगोंडा में। एंड आज ट्रेन की स्पीड तेज रहेगी, जी हाँ बिल्कुल फुल रफ्तार में रहने वाली है, फुल एनर्जेटिक आप भी फील करने वाले हैं आज की दोपहर को। तो क्या ख्याल है अगली फरमाइश की तरफ बढ़ा जाए? अगर हाँ तो भैया एंजॉय कीजिए नन्या मिश्रा जी की फरमाइश पर। और ये आई है हमारे पास एक खूबसूरत सी गजल, अब आप गजल सुनेंगे किसकी, गुलाम अली की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत सा गजल है, एंजॉय करते रहिए। ये पागल दिल मेरा हमेशा याद करता है, क्या याद करता है ये तो भैया गुलाम अली बताएंगे।

0: दस्त में।
1: भैया मैं आपको बता दूं, आज ना मैंने दोपहर में ही शाम का दीदार कर लिया है। सोचो कैसे, हमारी अनन्या मिश्रा जी ने जिस गजल की फरमाइश की है ना, वो गजल एक्चुअल में मैं सुनती थी हमेशा रात के वक्त, जब चांद आसमान में खिल जाता था, और जब नहीं खिलता था तो चांद को आसमान में मिस करते हुए सुन लेते थे। लेकिन आज भरी दोपहर के अंदर हमने शाम का दीदार कर लिया है, चांद तो दिखा नहीं, लेकिन हाँ हमें ये गाना बड़ा खूबसूरत लगा है, गजल बड़ी खूबसूरत लगी है, और आप गुलाम अली की आवाज़ में इस गाने को इंजॉय कर रहे थे। फिलहाल क्या ख्याल है, अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं? जी हाँ बेशक बढ़ते हैं, और अमित चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो लिख रहे हैं, बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ओके मैम, मैं भी भेज सकता हूँ फरमाइश? अजी नेकी और पूछ बुझ जुगल जी, बिल्कुल भेजिए, उठाइए अपना फोन, डायल कीजिए 6393316429 6393316429 और फटाक से भेज दीजिए अपनी फरमाइश। इंतजार नक्को नक्की बिल्कुल नहीं करते इल्ले। एंड अमित चौधरी जी लिख रहे हैं, नमस्कार महाराष्ट्र से। नमस्कार आपको गोंडा से। जी हाँ, आइए चलते हमारी अगली फरमाइश की तरफ, और हमारी अगली फरमाइश है सुनील कुशवाहा जी की। वो सुनना चाहते हैं, आपके करीब हम रहते हैं। जी बेशक सही फरमाया है आपने, दिल के करीब हमारे सभी लिसनर बड़े प्यार से रहते हैं। फिलहाल इसमें तो भैया है हमारे ऋषि कपूर जी और तब्बू जी, तो इस गाने को एंजॉय कीजिए। 90s का खूबसूरत सॉन्ग है, बोल है समीर साहब के, नदीम श्रवण का म्यूजिक, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉल ऑन गोंडा।

ऐसे गाने सिर्फ समीर साहब ही लिखते हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें, समीर साहब के बोल है, नदीम श्रवण का म्यूजिक है, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में आपने इंजॉय किया आपके करीब हम रहते हैं, बेहद करीब रहते हैं, सुनील कुशवाहा जी की फरमाइश थी। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं कॉलेज इन गोंडा फ्राइडे स्पेशल विद योर आरजुनती 89.6 एफएम। यह गोंडा शहर की धड़कन पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा आज पूरे दो घंटे, इसलिए लगातार अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर बिना शिकायत करे हुए कि मेरी फरमाइश तो कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि जब मैं हूं तो सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा मैं खुद के लिए कह सकती हूं। फिलहाल केके जी लिख रहे हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक यू सो मच, और उसका क्रेडिट हमारे सुनील जी को ही जाता है। एंड राजू टेलर जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजू एंड मिस्टर चांद बाबू एंड गोपाल वर्मा जी, थैंक यू, एंजॉय, ये लिखा है उन्होंने। और हमें एमपी से भी फरमाइश मिल चुकी है। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, और चांद बाबू जी सुनना चाहते हैं, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं। सनम दिलवाले फिल्म से अक्षय देवगन पर फिल्माया गया सॉन्ग, और ये गाना मेरे दिल के बड़े करीब था जब मैं छोटी थी, फिलहाल अभी भी है, और क्यों करीब है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, उदित नारायण और अलका जी की आवाज़ जहाँ आ जाती है वो गाना मेरा अपने आप ही फेवरेट हो जाता है। तो दिलवाले से आप सुनने जा रहे हैं, 1994 में इस गाने को रिलीज किया गया था, बोल है अगेन समीर साहब की और म्यूजिक ऑफ कोर्स नदीम श्रवण का। एंजॉय करते रहिए कॉल ट्यून गुना, मिलते हैं इस गाने के उस पार लेकर के आपकी अगली फरमाइश को।

हाँ जी भैया, आप समझ गए हम कि आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दिल बिल ना चीतिएगा क्योंकि बड़ा महंगा पड़ जाएगा, लेकिन बहुत दर्द हो जाएगा, हम ये बता रहे हैं आपको। फिलहाल आप एंजॉय कर रहे हैं चांद बाबू की फरमाइश, मौका मिलेगा तो हम तुझे बता देंगे कि कितना प्यार करते हैं सनम। और ऑफकोर्स ये गाना था हमारे समीर साहब का लिखा हुआ, नदीम श्रवण का म्यूजिक, 1994 में रिलीज हुआ था, कुमार सानू सॉरी उदित नारायण और अलका जी की आवाज़ में था। एंड इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं नागेश्वर धाकर जी, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून यू यू यू यू यू उन्नति मैम, नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपकी सुरीली आवाज़ सुनने को मिली है, बहुत बहुत शुक्रिया है, आपका स्वागत करते हैं हम कॉलर ट्यून गोंडा में। एंड कितने करीब रहती हैं भैया, हम इतने करीब आपके रहते हैं कि जब हम नहीं भी होते हैं ना तो भी आप हमें इमेजिन कर ही लेते हैं, और हमको पता चला था आज एंट्री लेते ही कि कल आपको हमारी बहुत याद आ रही थी और आप किसी स्कैमर के चक्कर में भी पड़ गए थे हमारी वजह से। फिलहाल ऐसा नहीं था, हम घोड़े बेच के सो रहे थे और आप हमें इमेजिन कर रहे थे, बस इतने ही दिल के हम आपके करीब रहते हैं। बहुत खूबसूरत सॉन्ग लिखा है, थैंक यू सो मच के जी, और ऑफकोर्स क्रेडिट हमारे चांद बाबू को जाता है क्योंकि उन्हीं की फरमाइश थी है। एंड जुगल जी लिख रहे हैं आज ज्योति मैम आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आपके बोलने की स्पीड बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आपका प्रोग्राम पहली बार सुन रहा हूँ, पहली बार आया हूँ, जी हाँ, और एक्चुअली जब से आप आए हैं तब से हम भी पहली दफ़ा ही आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हर फ्राइडे आपसे मुलाकात होती रहेगी मेरी। और इसी के साथ आपके लगातार मैसेजेस हैं, लगातार बने हुए हैं, आप हमारे साथ चैट बॉक्स में, और हम चलेंगे अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश यानी गैस किसकी हो सकती है, अगर नहीं गैस कर रहे तो हम ही बता देते हैं कि भैया घनश्याम जी ने हमें फरमाइश भेज दी है और वो सुनना चाहते हैं, मैं हूँ बड़ी दीवानी सजना और मैं छोटी दीवानी हूँ, फिलहाल आप एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए आपका अपना शो कॉलर ट्यून गोंडा भी आज के साथ 89.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन पर। अपनी फरमाइशें आप भेज सकते हैं 6393316429 पर, क्योंकि आज आपकी फरमाइशों का ये कार्यक्रम दो घंटे यूँ ही जारी रहेगा। अनुमली का म्यूजिक एंजॉय कीजिए, अनुराधा पॉटवाल और बबला मेहता की आवाज़ में, स्टे ट्यून्ड।

हां जी, और हमसे देखा नहीं गया इतना मेरा बालम, मेरा जानू, मेरा सोना मुना, इसलिए हम बीच में ही टपक पड़े। फिलहाल आप एंजॉय कर रहे हैं अनु मलिक के म्यूजिक को, अनुराधा पॉडफॉलर बबल मेहता की आवाज में। इतना खूबसूरत गाना था, बीच में रोकने के लिए माफी, लेकिन अगली फरमाइश की तरफ बढ़ना भी होता है भाई साहब। घनश्याम जी की फरमाइश पर आपने एंजॉय किया, मैं हूँ बड़ी दीवानी सचना। एंड ऑफकोर्स हमारे साथ सनी पांडे जी जुड़ गए हैं, जो डांस करते हुए ही एंट्री कर चुके हैं। नाइस सॉन्ग लिखा है हमारे के जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसके बाद लिखा है, आज 2 घंटे का प्रोग्राम है इसलिए मैं भी फोन फुल चार्ज करके बैठा हूँ। क्या बात है जनाब, आप जैसे लिसनर मेरे दिल के बड़े करीब रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए फ़ोन चार्ज करके लेकर आते हैं। वैसे हमारे फ़ोन की परसेंटेज क्या कहती है? हमारे फ़ोन की परसेंटेज कहती है कि ये 70% पे आके रुक चुका है। और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अमित कुमार जी की फरमाइश पर आप सुनने जा रहे हैं, पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर। और इस गाने को सुनते ही ना मुझे मेरे बरेली वाले दोस्त याद आ जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्होंने ही इस गाने पर परफॉर्मेंसेस की हुई थी। और मैं देख देख के पक चुकी थी कि ये लोग एक ही गाना क्यों पकड़ पकड़ के हर साल डांस कर लेते हैं यार। लेकिन अब उन्हीं लोगों की काफ़ी याद भी मुझे आती है, कि वो पकाऊ लोग जो मुझे हमेशा इस गाने को पकड़ के, चाहे अंताक्षरी चल रही हो, चाहे कोई गाना गाना हो, चाहे कोई कॉम्पिटिशन हो, चाहे डांस हो, बस एक ही गाने के पीछे नहा धो के पड़ चुके थे, वो लोग अब मिल क्यों नहीं रहे हैं? मिलने चाहिए ना, सबके सब बड़े हो चुके हैं और बड़े लोगों से बिल्कुल भी वाइब मैच नहीं हो रही है मेरी। फिलहाल एंजॉय करते रहिए कॉल ऑफ ड्यून। गुना आपको बता दें, सिंगर्स की यहाँ पर एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। उद्भव जी, मनोहर शेट्टी, ईशान, श्वेता पंडित, सोनाली और प्रीता, इतने सारे लोगों ने मिलकर एक खूबसूरत गाना बनाया है। जतिन ललित का म्यूजिक है और हम बता दें, बोल किसी ऐसे वैसे इंसान ने नहीं, बहुत ही खूबसूरत राइटर आनंद बख्शी ने लिखा हुआ है।

अंजी और यूं ही नहीं आनंद बख्शी के फैन हर कोई हो जाते हैं। इवन खुद राइटर्स भी आनंद बख्शी के गानों को ऐसे ही थोड़े पसंद करते हैं, उनके पसंद करने का भी अंदाज है। आपको बता दें कि भैया समीर साहब, गुलजार साहब और गालिब, तीनों ही लोग आनंद बख्शी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इवन उनके लिखने का जो अंदाज था ना, इतना खूबसूरत था, तो कई राइटर्स ने उनसे कह दिया कि वो कलम ही मुझे दे दो जिस कलम से आपने गाना लिखा हुआ है। इसीलिए उनको इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। मोहब्बतें से आप सुन रहे थे, एक बहुत ही ट्रेंडिंग सॉन्ग है जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़ोरों शोरों से फेमस हो रहा है। और जिस तरह से ना वो सैया जी के पास भाग कर आती ना लहंगा पहन कर, उस स्पीड में अगर मैं भागती चार जगह पर गिरती और उसके बाद भी ना भाग पाती। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। और ये फरमाइश थी हमारे अमित कुमार जी की, बहुत ही खूबसूरत फरमाइश थी, हमने एंजॉय की कॉलर ट्यून गोंडा में। और अब वक्त है अगली फरमाइश की तरफ चलने का। अगली फरमाइश आई है हमारे राजू टेलर्स जी की, जो हमें हथियागढ़ से सुन रहे हैं और वो ये गाना सुनना चाहते हैं। बीन बजेगी और मैं चाहूंगी कि ये बीन किसी नागिन तक ना पहुंचे, नहीं तो अदरवाइज पता चले स्टूडियो में भी कोई रिंगता वांगता चला है और मैं यहाँ दोनों पैरें ऊपर करके बैठ जाऊँ। उससे अच्छा है कि आप जल्दी जल्दी इस गाने को सुने और हंस के बाद हम चलेंगे हमारे अगले गाने की तरफ, जो कि ऑफकोर्स हथियागढ़ से आई है दोबारा से इरशाद जी की। स्टे ट्यून्ड। बिल्कुल नागेश्वर जी, आप लक्स के साथ साथ डॉल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।

और बचपन में जब मैंने ये फिल्म देखी थी ना, क्योंकि मुझे बड़ी पसंद आई थी कि सांप को भी पाला जा सकता है, और मुझे भी भूत चढ़ा था कि मैं भी सांप लाऊंगी, सांप को पालूंगी और वो बीन बजाने भी आ जाएगा। बाद में समझ में आया कि बीन बजाने से सांप को कभी सुनाई ही नहीं पड़ता है, वो दो बीन की मूवमेंट देख कर हिला डुला करता है, ना कि वो साउंड सुन के आता है। इवन मुझे बचपन से बड़े जानवर वाली फिल्में पसंद थी, चाहे उसमें हाथी हो, चाहे उसमें सांप हो, चाहे उसमें कुत्ता हो, चाहे उसमें इच्छाधारी नागिन ही क्यों ना हो, बिकॉज नाग है, नागिन है, और स्पेशली जब वो रेंगता हुआ आता है ना, तो क्या क्या मज़ेदार लगता है। मेरा टॉक्सिक ट्रेट यही कहता था कि हम भी ट्राइगर श्रॉफ के पप्पा जैसे सांप पाल ही ले। वो तो मेरी अच्छी बात है मम्मी की, जो उन्होंने मुझे रोक लिया सांप पालने से, नहीं तो आज मेरे पास भी 3-4 सांप जरूर होते। फिलहाल कोई बात नहीं, हम अपनी इस चीज़ को बाद में पूरा करेंगे किसी अगले जन्म में, किसी अगले यूनिवर्स में, अगर पॉसिबल हो सकता है तो, क्योंकि अभी तो कोई ऐसा मेरा इरादा बचा नहीं, और क्योंकि इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा सांप निकल रहे हैं बारिश की वजह से, तो आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, और अगर आप झाड़ियों के आसपास रहते हैं तो ज़्यादा ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि भैया आसपास जहाँ पे बहुत सारी झाड़ी है, जंगल है, या फिर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनके आसपास कुछ सांपों का मिलना आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, रोड पे चलते चलते मिल जाते हैं, इसलिए रात में निकलते वक्त ध्यान रखिएगा आप, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हॉस्पिटल जाएं, ना कि किसी बाबा के पास। ये बात मैं हर बार आपको याद दिलाती रहती हूँ। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग आया है इरशाद जी का, और वो सुनना चाहते हैं ये वाला बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, तौबा कैसे ये नादान घुंघरू पायल के। एंजॉय कीजिए, अभी तक आपने एंजॉय किया था दूध का कर्ज फिल्म से मोहम्मद अजीज की आवाज़ में, अनु मलिक का म्यूजिक, जय के शॉप में फिल्माया गया, और सांप का नाम मुझे पता नहीं है, सो एक सांप पर फिल्माया गया गाना। स्टे ट्यून्ड। एंड नाइस फरमाइश लिखी है नागेश्वर धाकर जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये फरमाइश आती है हमारी राजू टेलर्स जी के पास।

वैसे लता जी ने इसमें कोई भी बात झूठ नहीं कही है। घुंगरू जो होते हैं ना वो बड़े नादान होते हैं। जब भी रात के 12 बजे मेरी हॉरर मूवी देखते टाइम निकलते थे ना, जब भी मेरे मम्मी के पैरों में ये पायल बजती थी, घुंगरू बजते थे, और मैं उस वक्त बैठ के बड़ी आराम से एक थी डायन फिल्म देख रही थी। और मुझे याद है कि मुझे लगा था वो जो मंजुलिका उसके अंदर घूम रही है ना, वो सीधा फिल्म से निकल के मेरे घर में आ चुकी है। हालांकि मुझे पता था घर में इस वक्त सब सो चुके हैं और इसीलिए मेरे जो प्राण थे वो ऑलमोस्ट ऊपर जा चुके थे। फिर मैंने उसको पकड़ के नीचे किया कि नहीं, मम्मी है, मम्मी से नहीं डरते। आपने इंजॉय किया लता जी की आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत फरमाइश अरशाद जी की फरमाइश थी हथियागढ़ से। और अब आ रही हमारी मोहम्मद वारिस जी की, जो हम सुन रहे हैं लुधियाना से, और वो सुनना चाहते हैं इतना प्यारा खूबसूरत सॉन्ग जो है जिंदगी बन गए हो तुम। बेहद ही रोमांटिक सॉन्ग आया है, तो मुबारक हो, आप इंजॉय करने जा रहे हैं अलका जी और अदित की आवाज़ में वापस से एक बहुत ही खूबसूरत गाना। ऑफ कोर्स लिखा है समीर साहब ने और कंपोज़र हैं हमारे नदीम एंड श्रवण जी। समीर जी के साथ हमेशा नदीम श्रवण ही आते हैं और उनके बहुत खूबसूरत से गाने आप इंजॉय करते रहते हैं 90s में। फिलहाल आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोना अपनी आशुनदी के साथ। आपकी फरमाइशों का सिलसिला आज पूरे 2 घंटे जारी रहेगा, तो फिक्र नॉट, आपकी फरमाइशें हम पूरी करके जाएंगे।

हां जी, तो आप सुन रहे थे कसूर फिल्म से जो मेरी रूह को चैन दे सांस दे वो जिंदगी बन गए हो तो। मलका जी, उदित जी की आवाज में समीर के बोल थे, नदीम श्रवण का म्यूजिक ऑफ कोर्स, और इस फिल्म का ट्विस्ट जिसने भी देखा है उसको याद होगा, बहुत ही गजब का ट्विस्ट है। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, और सनी जी की तरफ से आए हैं बहुत सारे इमोजीज फॉर हमारे लुधियाना से मोहम्मद वारिस जी को डेडिकेटेड। और आप एंजॉय करने जा रहे हैं आप राम सागर मौर्या जी, जो मैं पंजाब से सुनते हैं, उनकी फरमाइश आशुतोष राणा पर फिल्माया गया गाना उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में 90s हिट चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: नजर आए।
1: जी, और चांद तारों में आपने अगर दीदार कर लिया हो तो आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। और हम आपको सुनाते हैं राजेश मीना जी की फरमाइश। उन्होंने फरमाइश की है भोले बाबा का गीत, तो क्यों ना भैया आपको ये वाला गाना सुना ही दिया जाए। और ऑफकोर्स एंजॉय करते रहिए। पार्वती बोली शंकर से क्या बोली, आप ये एंजॉय कीजिए। बहुत ही प्यारा भजन आपके लिए प्ले करते हैं हम, और राजेश मीना जी की फरमाइश है। हमारे साथ एक और लिसनर जुड़े हैं फ्रॉम राजस्थान, आपका स्वागत करते हैं। कॉल ऑफ ट्यून को नाले सुनते रहिए।

हाँ जी, तो आप एंजॉय कर रहे थे राजेश मीना जी की फरमाइश फ्रॉम बैंगलोर, भोले बाबा का एक छोटा सा भजन आपने एंजॉय किया। और अब हम चलेंगे हमारे अगले गाने की तरफ, रमेश कुमार फ्रॉम महाराष्ट्र, और वो सुनना चाहते हैं हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने। भैया ये तो हसीना ही बता सकती हैं, तो आप एंजॉय करते रहिए। और हमारे साथ रोहित जैन जुड़ गए हैं जो लिख रहे हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कॉल ट्यून गोना में। आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यही गोना शहर की धड़कन।

हां जी, तो भैया यहीं से स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेते हैं और उदित जी की और अलका जी की आवाज में आपने एंजॉय किया लहू के दो रंग फिल्म से। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने। एंड महेंद्र जी पूछ रहे हैं हमारा नंबर कब आएगा। मैम जी बहुत जल्दी आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। जितनी जल्दी आपने कॉल किया था उतनी ही जल्दी आपका नंबर भी आने वाला है। फिलहाल अगली फरमाइश आई है बेहद खूबसूरत और गाना है दिल जिगर नजर क्या है मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूं। हालांकि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं बहुत अच्छी सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये गाना इतना पसंदीदा है कि बिना गुनगुनाए रहा नहीं जाता। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉल ऑफ ट्यून गोला विद योर आरजे उन्नति।

खूबसूरत गाना है ना, कि बीच में रोकते हुए लग रहा है गुनाह कर रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। हम चलेंगे अगले गाने की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ। कुमार सानू की आवाज में आपने एंजॉय किया 90s का ये खूबसूरत गाना। लिरिसिस्ट है हमारे नवाब आरजू साहब और नदीम श्रवण का म्यूजिक है, यानी कि संगीत जो है वो नदीम श्रवण का है। आइए चलते हैं अगले गाने पर, और हमारा अगला गाना आया है के गुप्ता जी का। सुनना चाहते हैं सावन का महीना आया, बेशक सावन का महीना आ चुका है और सावन के साथ साथ और भी लोगों का महीना आ चुका है। किसका आया हाँ बताइए जरा, सावन में और क्या क्या निकल रहा है रास्ते पे आजकल। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉल ऑफ इन गोंडा।

जी, तो आप एंजॉय कर रहे थे के गुप्ता जी की फरमाइश। सावन का महीना आया है, घटा से बरसा है पानी, और अब वक्त है हमारे अगली फरमाइश की। और आप सुनने जा रहे हैं राजू सलमानी की फरमाइश, ऑफ कोर्स दुश्मन फिल्म से, हमी से मोहब्बत, हमी से बेवफाई। मोहम्मद रफी की आवाज़ में एंजॉय कीजिए। दिलीप और वैजंती माला पर फिल्माया गया खूबसूरत सा बहुत ही उम्दा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं। मुस्तफा जी हमें चांद तारे भेज चुके हैं, और इस गाने को भेजा गया है जो कि हमारे के गुप्ता जी की फरमाइश थी। इम्तियाज अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोना में।

हाँ जी, तो आप एंजॉय कर रहे थे राजू सलमानी जी की फरमाइश आवाज विकास से, उन्होंने एंजॉय किया दुश्मन फिल्म से। हमी से मोहब्बत, हमी से बेवफाई, क्या बात है, ओल्ड इज गोल्ड लिखा है हमारे भैया मुस्तफा जी ने सऊदी से, और अनोखी जी वापस आ चुकी हैं हाय मैम के आगे एक और लंबा साहिल लगाते हुए। फिलहाल हाय, कैसी हैं आप, और ऑफ कोर्स आपका वापस से स्वागत करते हैं आपके अपने शो कॉलर ट्यून गोना में। नेक्स्ट फरमाइश आई है हमारे पास महाराष्ट्र से, और फरमाइश है हमें चौधरी जी की, जाए तो कहाँ जाएं भैया, कहीं ना जाएं, कॉलर ट्यून में ही रहें, और बहुत ही खूबसूरत सी गजल है, एंजॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे कॉलर ट्यून गुना फ्राइडे का स्पेशल, आपके फरमाइशों का सिलसिला जारी है पूरे दो घंटे आपके अपने एफएम रेडियो 89.6 एफएम पर। स्टे ट्यून्ड।

हरी हरन की आवाज में आप एंजॉय कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉपुलर गजल, जाए तो कहाँ जाए। और दोपहर में अगर आपको रात का दीदार करना हो ना, तो ऐसी गजलें आप एंजॉय करते रहिए। आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा। अमित चौधरी जी की फरमाइश थी महाराष्ट्र से, और अब हम चलेंगे अगली फरमाइश की तरफ। मुमताज अंसारी जी सुनना चाहते हैं आपके बेहद ही पसंदीदा सॉन्ग्स में से एक, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, दीवाना फिल्म से। एंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे अगले गाने पर, अगली फरमाइश पर। और ऑफ कोर्स जुगल जी, आपका नंबर भी आएगा, जब आपने कॉल किया था बस उतनी ही देर में आपका नंबर जल्द आएगा। स्टे ट्यून्ड।

हां जी, और एनी गेस ये गाना किसने लिखा होगा? 90s के बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा सॉन्ग को लिखने वाला एक ही नाम सामने आता है बार बार हर दफा, और वो है समीर साहब। नदीम श्रवण का म्यूजिक, शाहरुख खान, ऋषि कपूर, दिव्या भारती पर फिल्माया गया गाना तेरे दर्द से दिल आबाद रहा 1992 में रिलीज की गई थी ये फिल्म दीवाना। और भैया, दर्द भरे नगमे एंजॉय करते करते हमारी अनोखी जी की आंखों में आंसू भी आ चुके हैं। फिलहाल इम्तियाज जी, माफ कीजिएगा, हम चैट बॉक्स से सॉन्ग नहीं ले सकते हैं बिकॉज ये कॉलर ट्यून गोना है और अभी तक हमारे पास ऐसी कोई रूल बुक आई नहीं है। जिस दिन बदल जाता है उस दिन हम जरूर लेंगे। फिलहाल अभी आप कॉल कर लीजिए और ऑफकोर्स आपकी कॉल उठाने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। एंड अगली फरमाइश है हमारी सुरेश कुमार जी की फ्रॉम बलरामपुर, ये रेशमी जुल्फें और ये शरबती आँखें, तो आइए इंजॉय कीजिए। वैसे अगर आँखें शरबती हैं तो नशा कैसे होने वाला है? बहुत ही खूबसूरत गाना आप सुनने जा रहे हैं दो रास्ते से, मोहम्मद रफी की आवाज में और ऑफ कोर्स ये रेशमी जुल्फे देख कर आए है।

मोहम्मद रफी की आवाज में आपने एंजॉय किया। इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबतिया है। और इसी के साथ आइए बढ़ते अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है रेनू तिवारी जी की और रेनू तिवारी जी की, और वो सुनना चाहती हैं तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे। और इसी से मिलता जुलता एक गाना और भी है, आपको याद होगा, याद है या नहीं याद है? वैसे अगर याद है तो चैट बॉक्स में जरूर बताइए कि वो कौन सा गाना है जिसमें आपको SRK यानी कि शाहरुख खान नजर आए हैं रवीना टंडन के साथ, और सेम टू सेम म्यूजिक, बिल्कुल यही फील होता है। ट्रैक कब बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं 90s का बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग ऑन योर शो कॉलर ट्यून गुना विद योर आर्जुनती।

तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में आपने इस गाने को एंजॉय किया, और इसी से मिलता जुलता सेम एक सॉन्ग है, तेरा नाम लेने की चाहत हुई। अगर आपने वो गाना सुना होगा तो आपको पता होगा ये दोनों गाने कितने ज़्यादा सिमिलर साउंड करते हैं, और 90s में ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो आपस में एक दूसरे से सिमिलर साउंड करते हैं। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, एमपी से जुगल किशोर जी की फरमाइश आया सावन झूम के, और इन्जॉय कीजिए आप इस गाने को। हम मिलेंगे अगली फरमाइश पर आपके अपने ही शो कॉलर ट्यून गोना में, जाइएगा कहीं नहीं, बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपकी आशावंदी मौजूद हैं। और ऑफकोर्स अगली फरमाइश होने वाली है राम नरेश तिवारी जी की, जो 90s का कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं। महेंद्र जी की जो राजस्थान से हमें सुन रहे हैं, कमल जी की जो 90s का ऑफकोर्स, एंड आरती जी की, दुर्गा जी की, सुरेश कुमार जी जो हमें सुन रहे हैं चौक से, और इम्तियाज जी। आप लोग बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे ट्यून्ड।

वक्त को मद्देनजर रखते हुए हम अपने अगले गाने की तरफ बढ़ेंगे। जुगल जी की फरमाइश पे आपने सुना आया सावन झूम के, और हमारी अनोखी जी पूछ रही हैं, उन्होंने मैम चिकनी चुपड़ी बातें करने में सबसे ज्यादा किसको आता है, लड़के या लड़कियां? भैया हमारे चैट बॉक्स के लिस्टनर जरा सामने आए और बताएं सबसे ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें कौन करता है। कोई मेरा नाम नहीं लेगा कि आरजी आप ही सबसे ज्यादा करती हैं, ये मेरा नाम नहीं लेगा कोई भी, अगर बताएंगे लड़के या लड़कियां, क्योंकि हमारी अनोखी जी जानना चाहती हैं फिलहाल ये बात। और हम चलेंगे अगले गाने की तरफ। 90s का सॉन्ग सुनना है हमारे कमल नयन जी और नरेश तिवारी जी को, राम नरेश तिवारी जी को। तो उनके लिए हम पेश करते हैं एक बेहद ही रोमांटिक सॉन्ग, क्योंकि हमारा कॉलर ट्यून गोंडा का आज जो मूड है वो बेहद ही रोमांटिक है। सो हमने सोचा आपको भी एक बढ़िया सा रोमांटिक सॉन्ग सुना ही देते हैं। राधा पॉटवाल की आवाज़ में एंजॉय कीजिए साजन फिल्म से, ऑफकोर्स माधुरी दीक्षित पर फिल्म आया गया सॉन्ग बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आई होप आपको ये गाना पसंद आएगा। राम नरेश तिवारी जी और कमल नयन जी, आप दोनों के लिए स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो भैया राम नरेश तिवारी जी और कमल नयन जी के लिए हमने स्पेशली ये सॉन्ग प्ले किया था। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुंबई से आसिफ खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप? और देर आए दुरुस्त आए, फिलहाल के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ। महेंद्र जी जो हमें सुन रहे हैं राजस्थान से, और ये गाना है यानी कि ये फरमाइश है उनके नाम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, कॉलर ट्यून गोंडा आप इंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद हम चलेंगे हमारी आरती जी, दुर्गा जी, सुरेश कुमार जी और ऑफकोर्स इम्तियाज जी की फरमाइश की तरफ। स्टे ट्यून्ड।

0: हां जी, और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ, दुर्गा जी, और उससे पहले हमारी आरती जी की फरमाइश जो आई है वो एंजॉय कर लेते हैं। बागवान फिल्म से आप सुनने जा रहे हैं उसका टाइटल ट्रैक, तो हम आपको सुनाते हैं ये वाला सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड। और ऑफ कोर्स अभी तक आप एंजॉय कर रहे थे हमारे महेंद्र जी की फरमाइश फ्रॉम राजस्थान, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गोंडा।
1: बाघ को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, यही साया उसके काम आता है।

आरती जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं बागवान का टाइटल ट्रैक, और इसी के साथ चलेंगे हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश है जो आई है हमारी दुर्गा जी की, सोचो जरा सोचो ना। तो आइए एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा नगमा, खूबसूरत सा गीत, और हम मिलेंगे अगली फरमाइश पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो आप सुन रहे थे माई दुर्गा जी की फरमाइश सोचो ना जरा सोचो ना, और इसी के साथ आइए चलते हैं अगले गाने की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ। मोहम्मद रफी की आवाज में, मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुनने जा रहे हैं सुरेश कुमार जी की फरमाइश, क्या तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, अगर नहीं तो देखो मेरी जान जा रही है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉलर ट्यून गोंडा। मिलते हैं अपनी आखिरी फरमाइश को लेकर के, तब तक के लिए हमारी अनोखी जी ने लिखा है सुपर डुपर सॉन्ग मैम, और इसका क्रेडिट जाता है हमारे आरती जी को और दुर्गा जी को जिनके गाने आप एंजॉय कर रहे थे। फिलहाल सुनते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी आखिरी फरमाइश की तरफ। इम्तियाज जी की फरमाइश है रुक रुक रुक, और भैया ये गाना आप एंजॉय कीजिए। और जाने से पहले मैं अपने प्यारे प्यारे लिसनर्स के लिए, जिन्होंने आज हमें भेजा ही नहीं है अपनी फरमाइश को किसी कारण के चलते और लगातार हमारे साथ बने हुए, उनके लिए भी छोटा सा सॉन्ग जरूर डेडिकेट करके जाऊंगी। तो बस एंजॉय करते रहिए। एंड हमारे साथ एक और लिसनर जुड़ गई है, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। डियर रणती मैम, आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार आपको भी, कैसी हैं आप? आपका स्वागत करते हैं हम कॉलर ट्यून गोंडा में। तो भैया बस थोड़ा सा इंतजार और इसके लिए एक गाना जो मैं आपको डेडिकेट जरूर करती हूँ हर बार जाने से पहले, उसका वेट कीजिए।

जी हाँ, तो आप सुन रहे थे इम्तियाज जी की फरमाइश पर रुक रुक रुक अरे बाबा रुक ओह माय डार्लिंग गिव मी अ लुक। फिलहाल इसी गाने के साथ अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, लेकिन जाने से पहले ऑफ कोर्स अपने लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमें आज अपनी फरमाइशें नहीं भेजी हैं, जिसमें हमारी अनोखी शर्मा जी, नागेश्वर धाकर जी और हमारे वो लिसनर जो लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, आसिफ खान जो मुंबई से जुड़े थे अभी हाल फिलहाल में ही, और ऑफ कोर्स जो हमें सुन रहे हैं लगातार रेडियो गार्डन एप्लीकेशन या फ्रीक्वेंसी से और उनकी फरमाइशें हम तक नहीं पहुंची हैं। तो ये गाना आप सबको डेडिकेटेड है आपकी अपनी आयशी की तरफ से। और जाने से पहले ओके बाय मैम जी, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच आपकी इस फीडबैक के लिए। मैम आप पहचान जाते हैं, आपका शुक्रिया। जी हाँ, आई नो यू, बिकॉज आपका आने का अंदाज ही कुछ उस तरह से कि मैं आपकी प्रेजेंस को तुरंत से रीड कर लेती हूँ कि आप कौन है। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो जरूर से बताइएगा। एंड बाय बाय लिखा है, बाय बाय टू यू, एंजॉय करते रहिए, आप सुन रहे हैं रेडियो 11.6 FM, यह गोना शहर की धड़कन। आपकी आज नौती जुड़ी थी अब तक आपके साथ कॉल ऑफ ट्यून गोना में।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। मैं हूं आयकी श्रीवास्तव।
2: और मैं आयुषी,
1: लेकर हाजिर हूं गोंडा हलचल। गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं से आप सभी जनपद वासियों को कराते हैं रूबरू। जनपद गोंडा के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय गौरव, अनुशासन एवं पूर्ण सम्मान के साथ मनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई है। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 15 अगस्त के दिन प्रत्येक कार्यक्रम निर्धारित समय सीमा पर गरिमामय वातावरण में तथा शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप सम्पन्न कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान को स्मरण करने का अवसर है। इसलिए सभी अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन पूरी गंभीरता एवं समर्पण भाव के साथ करेंगे।
2: दुर्जनपुर घाट बाजार जाने वाले मार्ग पर भारी जलभराव हो गया है। कुछ महीने पहले ही पीडब्ल्यूडी ने सड़क मरम्मत की थी, लेकिन बारिश और घरों से पानी भरने के कारण सड़क टूट गई। जगह जगह पर गड्ढे बन गए, पानी में गड्ढे दिखते नहीं, जिससे दुर्घटना होने का डर और भी ज्यादा बढ़ गया है। ग्रामीणों में रघुवीर यादव, मंजीत कुमार ने कई बार शिकायत लेकर के गए हैं, लेकिन अभी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।
1: गोंडा की जिला सेवा योजन अधिकारी प्रिया गौतम बनी। बता दें कि कानपुर नगर में तैनात सहायक जिला सेवा योजन अधिकारी प्रिया गौतम को पदोन्नत देकर गोंडा का नया जिला सेवा योजन अधिकारी बनाया गया है। यहाँ पर तैनात जिला सेवा योजन अधिकारी गुलाब चंद्र मोर का स्थानांतरण वाराणसी हो गया है। गुलाब चंद्र मोर जून 2024 से गोंडा में तैनात थे। हाल ही में पदोन्नत मिलने के बाद उनका स्थानांतरण वाराणसी किया गया है। देवीपाटन मंडल के सहायक निदेशक राजीव कुमार सिंह का भी प्रयागराज स्थानांतरण किया गया है।
2: छात्र नेता अंकित शुक्ला के नेतृत्व में छात्र 20 घंटे से रुपईडीहा ब्लॉक पर धरने पर थे। मंगलवार दोपहर शुरू हुआ धरना बुधवार तक जारी रहा। छात्र ने डीएम से 10 सूत्रीय मांग पर लिखित आश्वासन चाहा है। इसमें बिजली, सड़क, स्वास्थ्य शामिल है। मजिस्ट्रेट ज्ञापन लेने आए, लेकिन छात्रों ने लेने से मना कर दिया। रात भर बारिश में भी धरना जारी रहा।
1: गोंडा पुलिस ने साइबर हेल्प डेस्क ने ठगी के शिकार दो पीड़ितों के 4,30,000 रुपए वापस कराए हैं। बता दें कि उमरी बेगमगंज क्षेत्र के सनोली मोहम्मदपुर निवासी पंकज कुमार ने जाल साजो के बहकावे में आकर मिल्क डेयरी के नाम पर 3,90,000 रुपए का भुगतान किया था। बाद में उन्हें ठगी का पता चला। साइबर हेल्प डेस्क से संपर्क करने पर यह रकम वापस करा दी गई। आदमपुर निवासी संजय कुमार सिंह के खाते से अज्ञात लिंक के जरिए 40,000 रुपए निकाल लिए गए थे, उसको भी तत्काल पुलिस ने वापस कराई।
2: चकसनिया गांव में कपड़े बेचने आए फेरी वाले की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। आरोप है कि फेरी वाले ने कपड़े खरीदने आई एक युवती से उसका मोबाइल नंबर मांगा है। युवती ने घर जाकर बताया, फिर कुछ युवक आए और फेरी वाले को पेड़ से बांध कर पीटा। वीडियो वायरल हुआ, पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है।
1: घाघरा व सरयू नदी काफी उफान पर है। बता दें कि ढेमुआ घाट पर सरकारी स्टीमर का संचालन अब तक शुरू नहीं होने से लोगों को निजी स्टीमर का सहारा लेना पड़ रहा है। निजी स्टीमर संचालक बिना सुरक्षा मानक के क्षमता से अधिक यात्रियों को नदी पार करा रहे हैं। एक बाइक पार करने के लिए 50 रुपए की वसूली भी की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने 15 जुलाई से निःशुल्क सरकारी स्टीमर चलाने का आश्वासन यानी कि वादा किया था, लेकिन अब तक संचालन नहीं शुरू हुआ। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निजी स्टीमर संचालकों की रोजाना हजारों से ज्यादा कमाई हो रही है।
2: केसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की सत्यमेव जयते रैली बृहस्पतिवार को नंदिनी नगर स्टेडियम में हुई। यौन शोषण मामले में बरी होने के बाद ये उनकी पहली बड़ी सभा है। आयोजकों ने 3 लाख लोगों के आने का दावा किया है। 40 कुंटल यानी कि 12 लाख के लड्डू भी तैयार किए गए हैं। स्टेडियम में टेंट, LED और भोजन की व्यवस्था भी की गई थी।
1: भारत सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लॉन्च किया गया टीबी मुक्त भारत मोबाइल ऐप। खुशी ऐप लाएगा टीबी मरीजों के चेहरे पर अब मुस्कान। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत डिजिटल जागरूकता और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मुक्त भारत मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किए गए इस ऐप के माध्यम से टीबी मरीजों को उपचार, पोषण सहायता और अन्य जरूरी सहयोग उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। जिला कार्यक्रम समन्वयक विवेक शरण ने बताया कि ऐप को स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं निक्षय मित्र और स्वयं सेवक के मोबाइल में भी डाउनलोड कराया जाएगा, जिससे मरीजों का विवरण दर्ज होने के बाद उनकी उपचार संबंधी गतिविधियों पर ऑनलाइन नजर रखी जाएगी। इस ऐप में खुशी का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित चैटबॉट में भी शामिल है। यह चैटबॉट टीवी मरीजों और आम लोगों के सवालों का सामना आसानी से करेगी।
2: तरफगंज के क्षेत्र में कई ग्रामीण सड़कों पर मरम्मत के अभाव से टूट गई है। बुधवार रात बारिश के बाद झामपुरवा, झालीपुरवा और अंजन बाबा मार्ग पर जलभराव और कीचड़ हो गया था। स्कूली बच्चे और बाइक सवार उस सड़क की वजह से गिर रहे थे। ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें की लेकिन मरम्मत अभी तक नहीं हुई। ADO पंचायत दुर्गा प्रसाद ने कहा है कि जल्द काम इस पर करवाया जाएगा।
1: उल्लास ऐप से होगा 17,000 निरक्षरों का अब सर्वे। बता दें कि जनपद में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष से अधिक आयु निरक्षरों का सर्वे शुरू होगा। इसके लिए शिक्षा मित्र अब घर घर जाकर उल्लास ऐप के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। सर्वे के आधार पर उन्हें साक्षरता कार्यक्रम से जोड़कर सितंबर 2026 तक साक्षर बनाया जाएगा। जनपद में वर्ष 2026 एवं 27 के लिए 17,000 निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वे के दौरान महिलाओं और पुरुष दोनों का चिन्हांकन किया जाएगा। इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, पंचायत सहायक और अन्य स्वयं सेवक का भी सहयोग लिया जाएगा। जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में दुग्ध विभाग द्वारा जनपद स्तरीय कॉन्क्लेव कार्यक्रम का एक भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, पशु पालकों को आत्मनिर्भर बनाना तथा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने डेयरी क्षेत्र को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला बताते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किसानों एवं पशुपालकों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजना के प्रचार प्रसार एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के चयनित लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र एवं डेमो चेक वितरण किए गए। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के अंतर्गत 28 लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं, जबकि 7 लाभार्थियों को 80,000 रुपए के डेमो चेक वितरण किए गए। इसके अतिरिक्त नंद बाबा मिशन योजना के अंतर्गत संचालित मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में चयनित 3 लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी 5,90,000 रुपए के डेमो चेक प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर उपस्थित लाभार्थियों ने सरकार एवं दुग्ध विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन योजनाओं से डेयरी व्यवसाय को नई दिशा मिलेगी तथा विशेष क्षेत्रों में रोजगार एवं आय के अवसर बढ़ेंगे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पशुपालकों, किसानों एवं अन्य प्रतिभागियों को दुग्ध विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, पात्रता आवेदन प्रक्रिया तथा मिलने वाले लाभों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई है।
2: शिवपुरी कॉलोनी में जलभराव नगर प्रशासन से हुई मांग। बता दें कि गोंडा के शिवपुरी कॉलोनी में हल्की बारिश में ही सड़क पर पानी भर गया है। बाइक और पैदल चलने वालों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। दुर्घटना का भी खतरा सड़क खराब होने की वजह से बढ़ चुका है। ग्रामीणों की ग्राम प्रधान से कई बार शिकायतें उन्होंने की है लेकिन इसका अभी तक कोई भी समाधान नहीं किया गया है। अब नगर प्रशासन ने नाली और सड़क की मरम्मत की मांग भी हुई है।
1: उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण 5 से 8 अगस्त तक देवीपाटन मंडल के 4 जनपद बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती एवं बलरामपुर का भ्रमण कर रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह के नेतृत्व में सदस्य ब्रजेश कुमार सेवानिवृत्त जिला जज, संतोष कुमार विश्वकर्मा सेवानिवृत्त ADJ, डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया सेवानिवृत्त IAS तथा AP सिंह सेवानिवृत्त IAS विभिन्न जनपद में सुनवाई करेंगे। संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर स्थानीय ग्रामीण निकायों से जुड़े विषयों पर आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करेंगे तथा विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों का स्थलीय निरीक्षण कर विकास कार्यों और व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 अगस्त को आयोग बहराइच में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक जन सुनवाई किया है। वहीं 7 अगस्त को श्रावस्ती में करीब 11:30 से 1 बजे तक सुनवाई किया जाएगा।
2: घाघरा खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बता दें कि घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार सुबह 9 बजे एलिगन ब्रिज पर नदी के खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर घाघरा बही हुई दिखी लोगों को। 10 बजे 3 बैराजों से 288,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। प्रशासन ने तटीय गांवों पर अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ खंड 24 घंटे निगरानी रख रहा है।
1: एक सप्ताह में धनराशि जमा न करने वाले सचिवों पर अब होगी FIR दर्ज। बता दें कि जनपद में सहकारिता विभाग द्वारा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने एवं बकाया धनराशि की वसूली के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 18 जुलाई 2026 को कुल 28 सचिवों को धनराशि जमा करने के संबंध में नोटिस जारी की गई थी। विभाग द्वारा प्राप्त अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 9 समितियों के सचिवों ने निर्धारित संपूर्ण धनराशि जमा करा दी है, जबकि 5 सचिवों द्वारा आंशिक धनराशि जमा की गई है। इसके अतिरिक्त 11 सचिवों द्वारा अभी तक कोई भी धनराशि जमा नहीं की गई है तथा विशेष सचिवों द्वारा निर्धारित धनराशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है। विभाग द्वारा सभी मामलों की समीक्षा करते हुए वसूली प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक AR कोऑपरेटिव श्री रविशंकर चौधरी को निर्देश दिया है कि सभी संबंधित सचिव को अद्यतन स्थित की विस्तृत एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन सचिवों द्वारा नोटिस जारी होने के बाद भी अपेक्षित धनराशि जमा नहीं की गई है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि विभागीय स्तर पर किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी, प्रत्येक प्रकरण की नियमित निगरानी की जाएगी।
2: देवरिया कला गांव में जल निकासी नाले में मिट्टी झाड़ियां जमा हो गई हैं, जिसकी वजह से पानी भी रुक गया है। नाला पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। ग्रामीणों ने कहा है कि अभी तक उसमें सफाई नहीं की गई है। जल भराव और गंदगी से बीमारियों का भी खतरा अब लोगों में ज्यादा बढ़ गया है। ADO पंचायत गिरिजेश

0: रूप से बीमार महिला की समस्या का तत्काल समाधान कराया है। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनता दर्शन के दौरान विकासखंड रुपेडी के ग्राम भुलेडी निवासी श्रीमती ज्योति राज पत्नी श्री फूलचंद चौधरी अपनी गंभीर स्वास्थ्य समस्या को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित हुई थी। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, जिसके कारण उन्हें नियमित रूप से महंगी दवाइयां का सेवन करना पड़ता है तथा समय समय पर डायलिसिस भी करानी पड़ती है। आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर होने के कारण उनके लिए इलाज का खर्च वहन करना बेहद कठिन हो गया है। उन्होंने बताया कि उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे उन्हें सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिल सके। महिला की व्यवस्था सुनते ही जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि शिकायतकर्ता का अंत्योदय राशन कार्ड तत्काल जारी किया जाए।
1: वजीरगंज थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर घाट बाजार जाने वाले मार्ग पर भारी जलभराव हो गया है। कुछ महीने पहले पीडब्ल्यूडी ने मरम्मत की थी, लेकिन बारिश और घरों से पानी निकलने की वजह से हालत खराब हो गई है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं। पानी की वजह से गड्ढे दिखते भी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों में हादसे का डर ज्यादा ही बढ़ गया है।
0: जनपद में 427 अनदेशकों को एरियल की सौगात। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जनपद के 427 अनदेशकों में खुशी का लहर छा गया। न्यायालय ने मार्च 2017 से फरवरी 2026 तक बढ़े हुए मानदेय का एरियल देने का आदेश दिया है। अनुदेशक संघ के जिला अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह के मुताबिक तत्कालीन सरकार ने मार्च 2017 से अनुदेशकों का मानदेय 8,470 से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया है। बढ़ा हुआ मानदेय लंबे समय तक लागू नहीं किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मार्च 2017 से फरवरी 2026 तक का एरियल भुगतान किया जाएगा।
1: बुधवार को गोंडा गोरखपुर रेल खंड पर लखपत नगर स्टेशन के पास 25 वर्षीय संजू देवी ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संजू देवी पत्नी बिंदु राजभर की पहचान हो गई है। आत्महत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। GRPI मनकापुर प्रभारी ईश चंद यादव ने बताया कि मामला GRPI क्षेत्र का है, कानूनी कार्रवाई भी इस पर की जा रही है।
0: जनपद में मानदेय के साथ 15 दिवसीय माटी कला शिल्पकारी प्रशिक्षण का सुनहरा अवसर। 10 अगस्त तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित माटी कला कौशल विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026 एवं 27 में जनपद के पात्र अभ्यर्थियों के लिए 15 दिवसीय आवासीय शिल्पकारी प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्णतया निःशुल्क होगा तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रत्येक प्रशिक्षु को 250 रुपए प्रतिदिन की दर से मानदेय प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण का आयोजन मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र बहराइच में किया जाएगा, जहां प्रतिभागियों के रहने एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। योजना का उद्देश्य माटी कला से जुड़े परंपरागत शिल्पियों, उद्यमियों एवं कारीगरों के कौशल का विकास कर उन्हें स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। इच्छुक अभ्यर्थी नवीन पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक तथा राशन कार्ड की छायाप्रति के साथ किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय 122 राजा मोहल्ला उतरौला रोड गोंडा में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
1: गोंडा स्थित सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्ती PG कॉलेज में आज यानी 7 अगस्त को फाउंडर्स डे आयोजित किया गया, जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता, राखी निर्माण प्रतियोगिता, एकल गायन, काव्य पाठ जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कई सारी छात्राओं ने इस पर पार्टिसिपेट भी किया तथा अपने काम के अकॉर्डिंग उन्हें पुरस्कृत भी किया गया।
0: कलेक्ट्रेट सभागार में हर घर तिरंगा अभियान 2026 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक सम्पन्न हुआ। कलेक्ट्रेट सभागार में श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में बता दें कि जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान 2026 की तैयारियों के संबंध में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में अभियान की रूपरेखा, विभागवार जिम्मेदारी तथा कार्यक्रम को सफल आयोजन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन जनपद में 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और तिरंगे के प्रतिमान की भावना को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि अभियान के अंतर्गत सभी विद्यालय, सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय, विभिन्न संस्था तथा जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यक्रम पूरी गरिमा, सम्मान और हर्ष उल्लास के साथ

0: संपन्न कराया जाए। तिरंगा यात्रा के दौरान राष्ट्रभक्ति की भावना को और अधिक सशक्त बनाने के लिए वंदे मातरम का गीत भी बजाया जाएगा। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित करते हुए अभियान को जन भागीदारी के साथ सफल बनाया जाए, ताकि प्रत्येक नागरिक इस राष्ट्रीय अभियान से जुड़ सके।
1: गोंडा स्थित सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्ती पीजी कॉलेज में कल यानी कि 6 अगस्त को ओरिएंटेशन डे मनाया गया, जिसमें बीए फर्स्ट ईयर नया सत्र शुरू हो गया है, साथ ही साथ उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं।
0: गोंडा में अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जनपद गोंडा पुलिस द्वारा दिव्यांगजनों की सुरक्षा, सम्मान, सहायता एवं उनके साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से विशेष कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान प्रारंभ किया गया है। वर्तमान सामाजिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के समस्त थाना क्षेत्र में निवास करने वाले दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण कर उनका विवरण संकलित किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक थाने की कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट CPU गठित की गई है, जो नियमित रूप से दिव्यांगजनों से संपर्क स्थापित कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं सुरक्षा संबंधी चिंताओं की जानकारी प्राप्त कर रही है। अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजन रजिस्टर तैयार किया गया है, जिसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आयु, दिव्यांगता का प्रकार, स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्थिति सहित संपर्क से संबंधित आवश्यक विवरण अंकित किया जाएगा। CPU टीम द्वारा प्रत्येक सप्ताह निर्धारित दिवस सोमवार, बुधवार एवं शनिवार को दिव्यांगजनों से संपर्क स्थापित कर उनका कुलक्षेम जाना जाएगा तथा चिन्हित दिव्यांगजनों की व्यक्तिगत सामाजिक, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक समस्याओं की जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो आज की हलचल में बस इतना ही। आप सुनते रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9860 9176, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा,
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: नमस्कार, सांझा विरासत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी अपनी RJ मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। सांझा विरासत के इस अंक में आज हम आपको एक ऐसे शहर में ले जा रहे हैं जहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ चूड़ियों की खनक ही सुनाई देगी। चूड़ियाँ एक पारंपरिक गहना है। चूड़ियों की खनक से घर में न सिर्फ खुशहाली आती है बल्कि वास्तु दोष भी दूर होता है। वहीं हिंदू धर्म में चूड़ियों को सुहाग का प्रतीक भी माना गया है। भारत सहित दक्षिण एशिया में सभी धर्म व संप्रदाय की स्त्रियां कांच, प्लास्टिक, पीतल, लाख, हाथी दांत आदि विविध प्रकार की चूड़ियां अपनी कलाई में पहनती हैं। विविध रंग रूप और चमक दमक के कारण भारतीय सभ्यता व समाज में कांच की चूड़ियों का महत्वपूर्ण स्थान है। कई प्रक्रियाओं व हाथों से गुजरने के बाद कांच की रंग बिरंगी फैंसी चूड़ियां फिरोजाबाद के कारखानों में तैयार की जाती हैं। यहां के चूड़ी उद्योग से ज्यादातर घरेलू महिलाएं व बच्चे भी जुड़े हुए हैं, जो अपने घर से ही जुड़ाई, झलाई, पैकिंग आदि का कार्य करते हुए जीविकोपार्जन कर रही है। सुहाग नगरी फिरोजाबाद में बनी चूड़ियों की खनक पूरे देश में सुनाई देती है। फिरोजाबाद प्रदेश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां बनाई जाती हैं। यहां बनी चूड़ियों की सप्लाई देश के हर एक प्रांत, शहर, कस्बा और गांव में होती है। आज सांझे विरासत के इस अंक में हम चूड़ियां बनाने के कारखानों और उनके प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कांच बनाने की शुरुआत चंद्रवाड़ के राजाओं व आगरा के मुगल शासकों की राजधानी बनने से लगभग 250 से 300 वर्ष पूर्व से मानी गई है। उत्तर प्रदेश के वैसे तो हर जिले की अपनी अलग कहानी है, अपनी अलग पहचान है, लेकिन आगरा और दिल्ली से सटे फिरोजाबाद शहर की चूड़ियां विश्व विख्यात हैं। हर व्यक्ति के मन में यही तमन्ना होती है कि आखिर सुहागन महिलाओं की कलाइयों में खनकने वाली कांच की चूड़ियों का इतिहास क्या है। शहर में चूड़ियों का इतिहास करीब करीब 110 साल पुराना है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। आकर्षक व कलात्मक कांच की चूड़ियां और आइटम के लिए विश्व विख्यात फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ सबसे पहले चूड़ी का निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन थे? अगर नहीं पता तो आइए बात करते हैं इस विषय पर। इतिहासकार डॉक्टर एबी चौबे बताते हैं कि सन 1910 में सेठ नंदराम जर्मन से एक कांच के जानकार को फिरोजाबाद बुलाकर लाए थे। तब यहाँ आधुनिक चूड़ियों का काम शुरू हुआ। लेकिन फिरोजाबाद में सबसे पहली चूड़ी जो बनाई गई वो हाजी उस्ताद रुस्तम ने बनाई थी। उस्ताद रुस्तम ने यहाँ रेत और रापड़ी जैसी चीजों का इस्तेमाल करके चूड़ी बनाना प्रारंभ किया। इसके अलावा उनके साथ उनके परिवार के लोग भी इस काम में शामिल थे। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ पहले मोटी और भद्दी हुआ करती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे सुधार हुआ। हरी, नीली, पीली कई कलर की चूड़ियां बनाई जाने लगी। आज के समय में फिरोजाबाद पूरे विश्व में चूड़ियों के लिए खासा प्रसिद्ध है। यहाँ बनने वाली चूड़ियां भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक भेजी जाती हैं। यहाँ चूड़ियों की सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं, जहाँ मजदूर दिन रात काम करके चूड़ियां बनाते हैं। फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के जनक कहे जाने वाले हाजी उस्ताद रुस्तम की कब्र आज भी फिरोजाबाद में बनी हुई है। कहा जाता है कि पहले उस्ताद रुस्तम इसी जगह पर रहकर चूड़ियां बनाते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये काम शहर में फैल गया और यहाँ अब सैकड़ों फैक्ट्रियां चूड़ी बनाने के काम में लगी हुई हैं। सन 1910 में रेती और रापड़ी से बनती थी चूड़ी। इतिहासकारों की माने तो फिरोजाबाद में उस्ताद रुस्तम द्वारा चूड़ियों को बनाने के लिए रेती और रापड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। धीरे धीरे चूड़ी का विकास हुआ और आधुनिक चूड़ियां बनने लगी। जैसा कि हम जानते हैं, देश का हर शहर अपनी किसी न किसी खूबी के लिए जाना जाता है। ऐसे ही है फिरोजाबाद, जो रंग बिरंगी चूड़ियों के लिए जाना जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा औद्योगिक शहर फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश राज्य के शहर फिरोजाबाद में चूड़ी बनाना एक घरेलू व्यवसाय है। यहाँ कांच के कारखाने पीढ़ियों से पारंपरिक तरीकों से चलाए जा रहे हैं। फिरोजाबाद के बाजार में रंग बिरंगी गलियों से जाते हुए अपने दोनों ओर देख आपका मन भी रंगीन हो जाएगा और बिल्कुल चूड़ियों की खनक जैसा खनकने लगेगा आपका भी दिल। फिरोजाबाद को प्राचीन समय में चंद्रवार नगर के नाम से जाना जाता था। फिरोजाबाद जिला उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा डिवीजन के जिलों में से एक है। फिरोजाबाद में मुख्य रूप से चूड़ियों का कारोबार होता है। कांच की चूड़ियों के उद्योग के कारण फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहा जाता है। फिरोजाबाद में 200 से अधिक सालों से कांच की चूड़ियां बन रही हैं। ये शहर अब दुनिया भर में कांच की चूड़ियों का सबसे बड़ा निर्माता है। माना जाता है कि फिरोजाबाद में हाजी रुस्तम ने 1920 में चूड़ी का ये कारोबार शुरू किया था। फिरोजाबाद में कांच उद्योग के पिता कहे जाने वाले हाजी रुस्तम को हर साल श्रद्धांजलि दी जाती है और भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस तरह फिरोजाबाद में चूड़ियों के कारखानों का विस्तार होने लगा और ये शहर चूड़ियों के लिए जाना जाने लगा। 1989 के करीब यहाँ अन्य कांच की चीजों का कारोबार भी होने लगा। फिरोजाबाद में चूड़ियों के अलावा कांच के झूमर भी बनाए जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की आबादी बेहद घनी है। यहाँ ज्यादातर लोग कांच के कारोबार से जुड़े हैं। फिरोजाबाद में घरों की महिलाएं चूड़ियों पर पॉलिश और हिल लगाकर अच्छा खासा पैसा कमा लेती हैं। फिरोजाबाद शहर में आप अपने चारों ओर रंग बिरंगी चूड़ियां देख सकते हैं और मनमोहक चूड़ियां खरीद सकते हैं। यहाँ की चूड़ियों के कारखानों का कारोबार प्रतिदिन करोड़ों रुपए के टर्नओवर के हिसाब से होता है। यहाँ चूड़ियाँ किसी एक रेट में उपलब्ध नहीं है, बल्कि 10-20 रुपए से लेकर 5-7 हजार तक की चूड़ियाँ बाजार में उपलब्ध होती हैं। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ केवल देश के अलग अलग राज्य जैसे उड़ीसा, राजस्थान, दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजी जाती हैं, जिसमें अमेरिका और स्वीडन जैसे देश सबसे अव्वल हैं। फिरोजाबाद में कांच के कारोबार पर कोरोना वायरस से लोगों के जीवन पर काफी बुरा असर पड़ा। लॉकडाउन के चलते शहर के कारखानों को बंद कर दिया गया था। फिरोजाबाद जिले में करीब 125 चूड़ियों के कारोबार भी ठप पड़ गए। लॉकडाउन होने के बाद यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए, जहाँ लाखों श्रमिकों को कारखानों से निकाल दिया गया। आपको बता दें कि चूड़ियाँ सिर्फ कारखाने में ही बनकर तैयार नहीं होती, ये कारखानों में ढलने के बाद कई हाथों से गुजरती हैं, तब जाकर किसी महिला की कलाई में सजने के लिए ये तैयार हो पाती है। बदलते दौर में देश का उद्योग तरक्की की राह पर है, वहीं कोरोना काल के बाद चूड़ियों का संसार सिमटने लगा। हालात ये हैं कि पिछले 3 महीनों में चूड़ियों के करीब 100 से ज्यादा कारखाने बंद हो गए थे लॉकडाउन के दौरान। कुछ सप्ताह में 3 दिन चल रहे थे। इसके पीछे भट्टियों का इस्तेमाल होने वाली गैस और केमिकल की महंगाई के अलावा घटते कांच की चूड़ियों के चलन को जिम्मेदार माना जा रहा है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि आजकल कांच के बजाय लोग ज्यादातर मेटल की चूड़ियां और वुलन चूड़ियां और उसके साथ साथ अलग अलग स्टाइल की क्राफ्टेड चूड़ियां ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फिरोजाबाद में जिन कारखानों में चूड़ियों का उत्पादन नहीं हो रहा है, वहाँ कारखानेदार मेंटेनेंस के नाम पर कारखाने को बंद कर देते हैं, जिससे उन्हें गेल गैस द्वारा दी जाने वाली गैस की आपूर्ति बंद न कर दी जाए। अघोषित चूड़ी कारखानों में कामकाज न होने के कारण इनमें काम करने वाले मजदूर बेरोजगार घूम रहे हैं। एक कारखाने में करीब 250 मजदूर काम करते हैं। इस हिसाब से करीब 20,000 मजदूरों का काम छिन गया। फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग की हालत इस वक्त काफी दयनीय हो गई है। फिरोजाबाद में बढ़ती नेचुरल गैस केमिकल के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है। नेचुरल गैस पर करीब 10 से 25 रुपए तक की वृद्धि हो चुकी है, जबकि केमिकल के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। डायरेक्टर द ग्लास इंडस्ट्रियल सिंडिकेट चूड़ी उद्यमी संगठन हनुमान प्रसाद गर्ग ने बताया था कि महंगाई की मार से चूड़ी की मांग में कमी आई है। महंगाई होने के कारण लागत बढ़ गई है। चूड़ी कारखाने में 3 से 5 हजार गैस घन मीटर इस्तेमाल होती है। ऐसे में कारखानेदारों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। फिरोजाबाद की चूड़ियां देश के विभिन्न हिस्सों के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में भी भेजी जाती हैं। वीके बंसल, जो कि चूड़ी के कारखानेदार हैं, उन्होंने बताया कि मटेरियल के दाम बढ़ जाने से चूड़ी उत्पादन महंगा हो गया है, इसलिए भी आधे से अधिक कारखाने बंद हो गए हैं और काफी ज्यादा लोग फिरोजाबाद के बेरोजगार घूम रहे हैं। आकर्षक व कलात्मक कांच की चूड़ियां व आइटन के लिए विश्व विख्यात फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, ये तो आपको मालूम ही है। और ये भी मालूम है कि 110 साल पुराना इतिहास है फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियों का। फिरोजाबाद के तत्कालीन राज्यसभा सदस्य पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी की प्रेरणा से प्रेरित होकर साहित्य रत्न गणेश शर्मा, जिन्हें प्राणेश के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा लिखी गई एवं वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक फिरोजाबाद परिचय के अनुसार कांच बनाने की शुरुआत चंद्रवाड़ के राजाओं एवं आगरा के मुगल शासक की राजधानी बनने से लगभग 250 से 300 वर्ष पुरानी मानी गई है। गाँव उर्मुरा और रपड़ी में आसानी से रेता और सींग उपलब्ध हो जाता था, इसीलिए फिरोजाबाद के लोग अपने मकान के नजदीक ही छोटी भट्टी तैयार कर बहुत ही भद्दी तथा रंग विहीन कांच की चूड़ियां बनाया करते थे। चूड़ियों की अधिक मांग और खपत के कारण कांच का ज्यादा उत्पादन होता था। समय बीतता गया, लेकिन कार्य करने की पद्धति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तब कुछ लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि से रंग बिरंगी चमक वाले विदेशी कांच के टुकड़ों को मंगाना शुरू कर दिया। वजन में पौंड, आधा पौंड के होते थे, जिन्हें यहाँ के लोग निमकदानी और अंग्रेजी में ब्रोकन ग्लास कहते थे। फिर कारीगर इन्हीं से चूड़ियां बनाने लगे। ये माल बम्बई और कलकत्ता से होकर आता था। जिसकी वजह से न सिर्फ महंगा पड़ता था बल्कि लाने में भी बहुत कठिनाइयां होती थी। इसलिए कुछ लोगों ने देहरादून की कांच फैक्ट्रियों का अध्ययन किया और वहां से कांच मंगवाया, लेकिन कालांतर में वह कारखाना बंद हो गया और कारीगर इधर उधर चले गए। द इंडियन ग्लास वर्क नाम की पहली फैक्ट्री खुली। सेठ नंदराम के अथक प्रयासों के चलते जर्मनी के एक विशेषज्ञ देहरादून में बंद हो चुकी कांच फैक्ट्री से यहाँ आए और सन 1910 ईस्वी में फिरोजाबाद का पहला कारखाना द इंडियन ग्लास वर्क स्थापित किया गया। इस कारखाना भट्टी में कोयले की गैस से सिर्फ कांच को ही पकाया जाता था और ब्लॉक ग्लास बनाया जाता था। द इंडियन ग्लास वर्क्स कारखाने की स्थापना के साथ ही फिरोजाबाद में कांच बनाने की नींव पड़ी। साथ ही यहां से अन्य स्थानों पर भी कांच जाने लगा। इस समय तक बनने वाली चूड़ियां सिर्फ लाल, पीले, नीले रंग की भद्दी, मोटी और भारी चूड़ियां हुआ करती थी। हाजी रुस्तम उस्ताद ने शुरू की आधुनिक चूड़ियां, ऐसा कहा जाता है और ऐसा मैंने आपको बताया भी। आधुनिक ढंग के कारखाने की सर्वप्रथम नींव हाजी रुस्तम उस्ताद ने डाली और कल्लू उस्ताद, कादर बख्श और उस्ताद भूरे खा के परिश्रम, उत्साह, लगन व साहस के कारण विदेशों में बनने वाली चूड़ियों के समान ही फिरोजाबाद में भी सुंदर चूड़ियों का निर्माण होने लगा। अशिक्षित होने के बावजूद भी यहाँ चारों लोग केमिकल के काम व रंग बनाने में माहिर थे। इन्हीं लोगों ने लकड़ी के बेलन का प्रयोग करके चूड़ियां बनाना शुरू कर दिया। मेहनत रंग लाई और चूड़े कारीगरों के परिश्रम, कुशलता एवं सरकार की व्यापार सुरक्षा नीति के चलते भारतवर्ष के सभी छोटे व बड़े नगरों में कांच की चूड़ियों की खूब खपत होने लगी। सन 1924 ईस्वी में की गई जनपद आगरा की औद्योगिक जांच रिपोर्ट के अनुसार फिरोजाबाद में 2,445 पुरुष, 427 महिलाओं सहित 3,047 युवा कार्यरत थे। यहाँ का कांच उद्योग लगभग 12,000 लोगों को रोजगार देता था। सन 1923 ईस्वी में चूड़ियों का कुल निर्यात 60,350 मन, ब्लॉक ग्लास 25,654 मन और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया व जापान से विदेशी चूड़ियों का आयात 10,878 मन हुआ करता था। रिपोर्ट के मुताबिक आधुनिक तकनीक के कारखानों के खुल जाने से फिरोजाबाद में कुटीर उद्योग धंधे की आधार पद्धति नष्ट हो गई। यहाँ ब्लॉक ग्लास के 7 कारखाने हैं, जिनमें से 6 चालू हैं, जबकि बाकी बंद हो गए। ये कारखाने 217 व्यक्तियों को रोजगार देते हैं और इनमें 11 भट्टियां हैं। यहाँ कुशल कारीगरों को 80 रुपए और अकुशल कारीगरों को 15 से 28 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। सर्वप्रथम रेती, सिलिका सैंड, सोडा एश और कैल्साइट का मिश्रण तैयार कर फर्नेश भट्टियों के पॉट में भरने के बाद चूड़ियों को लाल रंग का बनाना है तो कैडियम सल्फाइड व सिलेनियम, नीला बनाना है तो कोबाल्ट, हरा व फिरोजी बनाना है तो कॉपर ऑक्साइड व कसीस, पीला बनाना है तो कैडियम, काला बनाना है तो मैग्नीज ऑक्साइड और रेशम की चूड़ियों के लिए पोटेशियम साइनाइड आदि केमिकल इसी घोल में मिला दिया जाता है। भट्टी का तापमान 1300 से 1500 डिग्री तक पहुंच जाता है और घोल पिघल कर कांच बन जाता है। तब चूड़ी बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। चूड़े मजदूर लोहे की रॉड में भट्टे से पिघला हुआ कांच निकालते हैं और वहां से सिकाई भट्टी पर आता है। यहां कांच के टुकड़े को आकृति और आकार देकर गर्म कांच को ठंडा किया जाता है। श्रमिक फिर से उसी कांच पर भट्टी से नया कांच लेता है और कांच पर कांच चढ़ाने की ये प्रक्रिया 3 से 4 बार तक दोहराई जाती है। इसके बाद यह बेलन पर मेकिंग के लिए जाता है, जहां बेलन चलाने वाला कारीगर हाथों से रॉड का बैलेंस इस तरह से बनाता है कि बेलन पर चलने वाले कांच की डोर एक सी रहे। बेलन पर चूड़ी को आकार मिलता है और वहां एक गोल लंबे लच्छे के रूप में तैयार किया जाता है। इस गोल लंबे लच्छे को बेलन से उठाकर दूसरे ठिकाने पर रख दिया जाता है, जहां पर श्रमिक इसे हीरे के टुकड़े से काट कर चूड़ियों को अलग अलग करने के बाद लगभग 300 चूड़ियों को एक सुतली में बांधकर तोड़ा बनाते हैं। कारखानों में एक दर्जन में 24 चूड़ियों का हिसाब रखा जाता है। इसके बाद ये तोड़े कारखाने से हाथ ठेलों के जरिए सदाई व जुड़ाई के लिए ठेकेदार के यहाँ जाते हैं। चूड़ी बिना किसी डिजाइन की बनती है और रंगीन होती है। चूड़ियों को सवारने का काम गली गली छोटे छोटे घरों में रहने वाले कारीगर करते हैं, जो तोड़े से निकाल कर एक चूड़ी को लैंप और गैस की लौ से इस तरह जोड़ते हैं कि देखने वाले को आसानी से पता न चले। इसके साथ ही चूड़ियों की छटाई हो जाती है और नया तोड़ा बनकर कारखाने में वापस चला जाता है। यहाँ से छोटे और बड़े दुकानदार माल खरीद कर ले जाते हैं। चूड़ी पर गोल्ड, सिल्वर पॉलिश या फिर आर्टिफिशियल कांच की नग लगाकर लुभावना बना देते हैं। इसके बाद चूड़ियों को आकर्षक पैकिंग कर व्यापारी और ग्राहकों को सप्लाई कर दिया जाता है। नगर की घनी आबादी के मध्य प्राचीन मंदिर श्री राधा कृष्ण जी महाराज के पास इमामबाड़ा चौराहा, छोटा चौराहा, मोहल्ला अट्टावाला, डाकियान स्ट्रीट, गली बहरान, हुंडावाला बाग, बड़ी छपैती, शेख लतीफ, चौकी गेट व अन्य स्थान फैंसी चूड़ियों के आकर्षक केंद्र हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था कांच व चूड़ी उद्योग पर टिकी है, जिसे हर वर्ष सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होता है और बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। भारतीय संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार मकर संक्रांति, पोंगल, हरियाली तीज, नवरात्रि, छठ पूजा, करवा चौथ, दीपावली व अन्य त्योहार जैसे कि ईद पर कांच की चूड़ियों का महत्व रहता है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, बांग्लादेश, आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान सहित कई अन्य देशों में भी रंग बिरंगी आकर्षक डिजाइन वाली चूड़ियों की विशेष डिमांड रहती है। साझे विरासत के इस अंक में हमने चूड़ी बनाने की कला के बारे में जाना। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी एक अन्य विषय के साथ और अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें, धन्यवाद।
6: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
7: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
6: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
7: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
6: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
8: अरे सुना,
9: क्या
8: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
9: वाओ,
8: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9286 9816 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण, याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान, टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर, हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।

हर मोड़ पर मिलते हैं कुछ चेहरे अनजाने, कुछ अपने बन जाते हैं और कुछ रह जाते हैं अफसाने। जिंदगी भी तो एक मुसाफिर कैफे है दोस्तों, जहां चाय से ज़्यादा रिश्ते उबलते हैं और खामोशी से ज़्यादा किस्से बोलते हैं। कोई कभी मुस्कुराहट उधार दे जाता है तो कोई बिछड़कर उम्र भर का साथ दे जाता है। हर कप में कहानी, हर मेज पर एक इंतजार। हर कप में कहानी, हर मेज पर एक इंतजार। हर मुसाफिर के दिल में छुपा होता है मोहब्बत का एक छोटा सा संसार।

रास्ते यूं ही बदलते रहेंगे, मंजिलें भी बदलती रहेंगी, पर कुछ मुलाकातें ऐसी होंगी जो उम्र भर दिल में चलती रहेंगी। एक कैफे था जहाँ चाय सिर्फ चाय नहीं थी, हर घूंट में छुपी थी किसी हंसी, किसी की तन्हाई, किसी की अधूरी कहानी। कुछ लोग आए, कुछ ठहरे, कुछ बिना अलविदा कहे चल गए। यही तो जिंदगी है, ना कोई हमेशा साथ चलता है, ना कोई हमेशा दूर रहता है। हम सब अपने अपने सफ़र के मुसाफिर हैं, बस फ़र्क इतना है, कोई यादें समेटता चलता है तो कोई यादें बांध कर, कोई यादें बन कर रह जाता है। तो आइए आज मिलते हैं एक ऐसी ही वेब सीरीज़ की बात करने के लिए, जिसका नाम तो बड़ा ही सुन लिया, मुसाफिर कैफ़े। एंड रिव्यू करने के लिए मैंने पिछली बार भी सोचा कि थोड़ा इंतज़ार कराया जाए, जिससे कि जो क्यूरोसिटी है वो भी बढ़ जाए। और एक अनाउंसमेंट के साथ मैं आई हूँ आज की शाम। वेलकम टू द इवनिंग, सभी का स्वागत है। शुभ संध्या, आरजुबीना आपके साथ है और ओपनिंग हो चुकी है आपके फेवरेट, आपकी मतलब पसंदीदा वेब सीरीज से, मुसाफिर कैफ़े, जो कि मुझे लगता है कि इंडिया का हर यूथ देखना चाहता है, हर वो मुसाफिर देखना चाहता है जिसने कभी ना कभी कैफ़े में प्यार किया है, या जिसने प्यार की उम्मीद में कई कप चाय पी है या कॉफ़ी पी है। सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सारे सोते हुओं को जगाने, आरजुबीना की आवाज़ काफ़ी है, लेकिन आवाज़ से काम नहीं चलने वाला, आज तो जगाने का काम होगा। क्योंकि एक गाना मैंने बचपन में सुना था, बड़ा अच्छा सा था, मुझे आज याद आया, तो मैंने सोचा उसी गाने से शुरुआत करूँ, लेकिन फिर याद आ गई मुसाफिर कैफ़े की, तो उसके लिए चार पंक्तियाँ लिख दी मैंने, तो मैंने सोचा वो भी आपके सामने कह डालूँ। और गाना कुछ इस तरह है, बड़ा अच्छा सा गाना है, मैंने मतलब बचपन में अपने बहुत सुना था, ठीक है, तो बताती हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने भी सुना हो या ना सुना हो तो आई होप ये जो गाना है वो मेरी जो तन्हाई है, मेरा जो इंतज़ार, उसको बयां कर पाएगा। ध्यान से सुनिएगा।

तो बिल्कुल मैंने किस लिए 89.6 FM पे आपसे लाइव आने का मौका ढूंढा जिससे कि आप लोगों से बातें हो सके। फिलहाल इस गाने को यहीं विराम लगाते हुए मैं ले चलती हूँ आपको शाम की एनर्जी की तरफ। ये गाना आगे कंटिन्यू करूँगी अगर आप लोग आ जाएंगे तब। तब तक के लिए मैं किस लिए इंतज़ार करूँ ये मुझे सोचने की ज़रूरत है। चलिए एक बढ़िया सा गाना सुनाती हूँ, और अगर आपके मन में भी मुसाफिर कैफ़े को लेके कोई सवाल है या आपने देख ली है ये वेब सीरीज़, अगर आपके पास कुछ कंक्लूजन है तो बिल्कुल चैट रूम में बताइएगा। फिलहाल मेरे पास बहुत कुछ है इसको बताने के लिए। लेट्स एंजॉय द ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक फ्रॉम मुसाफिर कैफ़े।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PIC

0: की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670 931 251 और 8840 098 123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।
5: डिलीशियस
6: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
5: और क्या क्या है खास?
6: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
5: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9216 9976 9216 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
8: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
9: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
10: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
9: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
10: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
9: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
10: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
11: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
12: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
11: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
13: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
9: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
14: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
9: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
14: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
9: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
15: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
16: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
15: सच में, क्या खास है वहाँ?
16: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
15: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
16: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
15: और फोटोग्राफी वगैरह?
16: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
15: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
16: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
15: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
6: जगाते हुए, बुलाते हुए आज बीना आपके साथ है, और आज बात होने वाली है आपकी फेवरेट एंड मोस्ट डिमांडेड कि मैम इसको रिव्यू करिए, इसको रिव्यू करिए। तो बिल्कुल इस वेब सीरीज के साथ मैं हूँ आपके साथ। जी हाँ, मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि मुसाफिर कैफ़े एक प्रसिद्ध लेखक जिनका नाम है दिव्य प्रकाश दुबे, जो कि लोकप्रिय आधुनिक हिंदी उपन्यास लिखते हैं बिल्कुल चेतन भगत की तरह। कहानी अगर बात करें आपके लिए इस, क्या कहते हैं,
17: वेब सीरीज की, तो बिल्कुल हमारी सोच के परे लव ट्रायंगल से घिरी हुई कहानी, पर देखने के बाद एक अजीब मतलब अलग अलग लेवल का सुकून सा देती है। रिलीज हो चुकी है 24 जुलाई को और ना सिर्फ रिलीज हुई है बल्कि हर किसी के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। हर वो दूसरा इंसान जिसको मतलब लगता है कि इस वेब सीरीज को देखना चाहिए, पहले तो इसमें विक्रांत मैसी, वेदिका, महिमा, आदिल, राजीव, अनुभा, इन सब की जो एक्टिंग है वो बहुत जबरदस्त है। नेटफ्लिक्स पे आई है, डायरेक्शन इसमें रुचिर का है और अगर ओवरऑल व्यू कहूँ तो 5 में से 4.5 स्टार्स इसको मिला है जितने भी लोगों ने इसको देखा है। अब मैं पूरी वेब सीरीज की बात करती हूँ, वेब सीरीज को देखने के बाद तो आपको लगेगा कि हाँ इसको देखते जाएं कंटिन्यूटी, लेकिन स्टोरी की अगर बात करूँ तो मुझे बहुत वैसी कोई बहुत ज़बरदस्त वाली स्टोरी नहीं लगी। स्टोरी वही है कि एक लड़का लड़की के प्यार में दीवाना, अपने सपनों को भी दांव पे लगाने के लिए तैयार है, लड़की एम्बिशियस, लड़के के साथ कुछ अच्छे पल बिता के अपने सपनों के पीछे भाग जाती है, फिर लड़का अकेला शराब के नशे में डूबा, फिर एक लड़की और आती है जो लड़के को संभालती है और लड़के के सपनों में अपने सपने ढूंढ लेती है। तो कुछ ऐसी कहानी है, लेकिन इसका जो खास बात यह है कि इसका सेकंड पार्ट आ चुका है। अब आपको क्या लगता है कि सेकंड पार्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल मैं अगर कहूँ पूरी वेब सीरीज की तो क्या एक्टिंग की है, चंदर यानी कि विक्रांत मैसी, सुधा यानी कि वेदिका और प्रीति यानी कि महिमा, इन तीनों के इर्द गिर्द ये घूमती वेब सीरीज हमें मतलब एक अलग दुनिया में ले जाती है। सुकून है भाई इस वेब सीरीज में, कुछ हो या ना हो लेकिन सुकून है। मसूरी और भोपाल के जो लोकेशंस हैं उनको बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा है कि क्या बताऊँ, आप सीन को अपने घर के अंदर फील करेंगे कहीं से भी बैठ के देखें। स्क्रीन प्ले की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी दो समांतर कहानियां हैं जो ऑडियंस को एक मतलब अट्रैक्शन की ओर ले जाती हैं। शुरुआत में थोड़ी सी धीमी धीमी सी चलती है पर आगे मज़ा आता है। अगर आपको कुछ सुकून वाला, मज़ेदार, मार धाड़ से परे, कुछ अलग, हाँ है तो लव ट्रायंगल ही पहले ही बता दिया मैंने, पर हाँ कुछ अच्छा देखने का मन है जो हर 10 मिनट में आपको एक ट्विस्ट देने वाला है, अपने अपने किरदारों से अपनी दुनिया में ले जाने वाला है, तो ये मुसाफिर कैफे है, बहुत पसंद आने वाली है आपको। अगर आप सीधी सिंपल मतलब आपको बहुत ट्विस्ट वाली या बहुत डरावने मार धाड़ की मतलब ऐसी मूवीज़ नहीं पसंद है तो आपके लिए है ये। और मैं सच्ची बताऊँ तो मैंने इसको जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये सेटिस्फेक्शन वाली वेब सीरीज़ है, इसको देखने के बाद दिल को काफ़ी तसल्ली सी मिलेगी। सो इसका सीक्वल जल्दी ही आने वाला है, तो मतलब ऐसी बहुत कम वेब सीरीज होती हैं कि लोग सब लोग देख ही ना पाए उससे पहले दूसरा सीक्वल आने को तैयार है। तो भाई आने वाला है इसका दूसरा सीक्वल भी, मेरी तरफ से भाई 10 में मैं इसको 9 स्टार्स दूंगी। मुझे बहुत पसंद आई, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, एक्टिंग ज़बरदस्त है, बस स्टोरी थोड़ी सी हल्की है, हल्की इसलिए क्योंकि एक उपन्यास पे बनी है तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट अ बिग डील। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तैयार रहिएगा, नेक्स्ट मतलब इसके सीक्वल के लिए तैयार रहिएगा। कुछ अच्छा नहीं देखा है तो इस वीकेंड देख डालो, मजे कर डालो। तो चलिए आप बताइए कि आपको इसको सुन के जान के कैसा लगा। तो एक और गाना मुसाफिर कैफे से आपके ओर फेंकते हुए अगली मूवी के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको एंजॉय कर लीजिए और चैट रूम में जल्दी जल्दी आ जाइए क्योंकि 7:10 पे हम लोग गेम खेलना शुरू करेंगे और गेम में अगर आप नहीं होंगे तो आपके बिना आपकी पसंद के गाने तो मैं खुद नहीं प्ले कर पाऊंगी। ठीक है, तो फटाफट से उठ जाइए, उठ जाने के साथ मुझे बताइए कि कौन कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा है।

0: जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन। हम लोग की भी मतलब लाइफ में ऐसी बहुत सारी मूवीज हम लोगों ने देखी हैं जो काफ़ी सिमिलर हैं, काफ़ी एक दूसरे से मैच करती हैं, पर अगर कुछ अच्छा देखना हो तो या कुछ बढ़िया हमें मतलब जो ऐसा लगे कि हाँ जिसे देखने के बाद कुछ दिन तक उसकी स्मृतियां हमारे दिमाग में रहें, तो आजकल ऐसी कुछ खास मूवीज़ आ चुकी हैं जिनके बारे में मैं आज आपको रिव्यू करने वाली हूँ। फिलहाल तो मैंने मुसाफिर के बारे में बता दिया आपको कि लव ट्रायंगल से मतलब जुड़ी ये फिल्म आपके लिए बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एंड लास्ट वीक मैंने आपको हनुमान अंश के बारे में बताया था। साइड हीरोज़ भी 31 जुलाई को रिलीज़ हो चुकी है और इंद्रजाल भी मैंने आपको बताई थी कि 24 जुलाई को रिलीज़ हो चुकी है। एक मिस्ट्री से जुड़ी हुई है, मतलब कुछ कहानियाँ जो अनसुलझी हैं उनसे जुड़ी हुई, ठीक है। तो बढ़िया है, आप अगर कुछ बेहतरीन देखना चाहते हो तो इस वीकेंड आपके लिए ये सब फिल्में हैं जो आप मतलब अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं और लगेगा आपको कि हाँ कुछ अच्छा आप लोगों ने देखा। और मेरे तरफ से तो आप लोग मतलब आपको देखना चाहिए मुसाफिर कैफे इज़ फॉर यू। इसी के साथ एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा आ चुकी है, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बता देती हूँ कि ऑपरेशन सफ़ेद सागर क्या है। अब आप सोच रहे होंगे यार इसके बारे में तो अभी तक हम लोगों ने ज़्यादा नहीं सुना है, पर देखिए हम लोग अक्सर कुछ चीज़ें कोड वर्ड में बातें करते हैं और उन कोड वर्ड्स को हर कोई नहीं समझता है, ठीक है। तो बता दूं कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो चुकी है ऑपरेशन सफ़ेद सागर आज की तारीख में। ये वो कहानी है जो कारगिल से जुड़ी है और हमने कारगिल के बारे में जितना भी जाना है जान लीजिए बहुत थोड़ा जाना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो अभी भी दबे हुए हैं मलबे में। तो उन्हीं किस्सों में से एक है ये ऑपरेशन सफ़ेद सागर। 7 अगस्त यानी कि आज रिलीज़ हो चुकी है। ओनी सेन ने इसे अपना डायरेक्शन दिया है। अगर इस सीरीज़ में मुख्य भूमिका की बात करूँ तो सिद्धार्थ और जिमी शेरगिल एकदम लीड रोल में दिखेंगे। सिद्धार्थ और जिमी शेरगिल काफ़ी अच्छा, मतलब इनका जो कहते हैं ना कि एक्टिंग जो है वो तो बढ़िया है ही, साथ ही साथ मुझे मतलब जो इन दोनों की केमिस्ट्री है, अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री, किसी भी सीन में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने कभी साथ में फिल्में नहीं की हैं। कहानी की बात करूँ तो सीरीज़ जो है पूरी की पूरी कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय जो वायुसेना है उसके पराक्रम की जो कहानियाँ हैं वो बताने वाली है। ये बताएगी कैसे ऊंचे पहाड़ों पर छुपे दुश्मनों के खिलाफ आसमान में एक ऐतिहासिक अभियान चलाया जा रहा था। कमियां जो हैं इस पूरे जो कहते हैं कि वेब सीरीज़ की, वो मुझे बस यही लगी कि इसमें 2 एपिसोड थोड़ा ज़्यादा कर दिए, ये 1-2 एपिसोड इसमें कम होता तो बढ़िया लगती, थोड़ा फास्ट हो जाती। और पूरी की पूरी जो मतलब वेब सीरीज़ है इसमें जो 4th एपिसोड है इसका, ओह माय गॉड, आपके गूज बम्प्स फील होंगे पूरे के पूरे, मतलब जब तक ये वेब सीरीज़ चलेगी आपकी आंखों के सामने तब तक आपके गूज बम्प्स नहीं रुकने वाले, इतनी ख़तरनाक वेब सीरीज़ है ये। उस समय मतलब लगेगा कि भारतीय सेना में जाना कोई मतलब मामूली बात नहीं है, जिसके पास बहुत बड़ा जिगर होता है वो ही जा पाता है। 1999 की ऐसे बहुत से किस्से हैं जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। वैसे तो हमने बचपन से कारगिल का संघर्ष सुना है, लेकिन आपको बता दूं कि इसमें कारगिल संघर्ष जो था जब लड़ाई शुरू हुई उसके कुछ महीने पहले ही ये जो कहते हैं ना कि कहानी का जो हिस्सा है वो शुरू हो चुका था, मतलब जो दिखाया गया है फिल्म में वो शुरू हो चुका था। जब भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ दिल्ली लाहौर पर बस सेवा का उद्घाटन कर रहे थे, तब पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ गुप्त रूप से जो था वो नियंत्रण रेखा जो यानी कि LOC को पार कर रहा था। मतलब हमारा प्रधानमंत्री वहां जाके वो उद्घाटन कर रहा है, वो हमारे LOC को मतलब पार कर रहे हैं। तो इस चीज को दिखाते हुए इस पूरी फिल्म को बहुत अच्छे से बनाया गया है। मेरी तरफ से ये स्पेशली हमारे मतलब सैनिकों के लिए फिल्म है, तो इसको तो मैं एक भी मतलब इसकी कमी नहीं निकाल सकती। ऑपरेशन जो सफ़ेद सागर है वो हमारे जो लड़ाकू विमान हैं उनमें कैसे लोग घुटन होने के बावजूद भी अपनी कुशलता से दुश्मनों को हराते हैं। हवाई युद्ध करना, देखो हवा में एक नियंत्रण बना के जैसे पायलट का काम करना ही बहुत बड़ी बात होती है, पर अगर हम बात करें हमारे वायुसेना की, ये लोग कितना बड़ा जिगर रखते हैं कि ये हवा में लड़ाइयां कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हवाई युद्ध के जो दृश्य होते हैं वो देखने में अच्छे लगते हैं, पर जो उस समय उस युद्ध को कर रहा होता है, लड़ रहा होता है, उसका दिल जानता है कि सिर्फ कुछ सेकंड्स और शायद जिंदगी का वो हिस्सा ख़त्म हो जाएगा जिसमें कि शरीर के कुछ अंश भी बचेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कारगिल से जुड़ी कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं, और ना सिर्फ दिखाई जा रही हैं और हमें फील कराया जा रहा है कि यार क्या क्या हुआ। तो सबसे खास चीज़ इसको जो अलग बनाती वो है कि पहाड़ों पर जो ऊंची श्रृंखलाओं के ऊपर इन्होंने कितनी गरिमा और कितनी मतलब कह सकते हैं साहस के साथ कितनी बढ़िया शूटिंग की है, बेहतरीन है वेब सीरीज़। आप मतलब मेरी तरफ से इसको 10/10 मैं दूंगी, क्योंकि मैं देशभक्ति की बात होती है तो मेरे अंदर थोड़ा सा अलग ही कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है, तो मैं एक भी पॉइंट इसका काटना नहीं चाहूँगी। तो मेरी तरफ से ऑपरेशन सफ़ेद सागर को पूरा का पूरा मतलब सपोर्ट दूंगी मैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, अभी आज ही रिलीज़ हुई तो अभी तो आपने देखा नहीं होगा, तो आप लोग अगर पैट्रियोटिज्म आपके अंदर, और जैसा कि हम लोग जानते हैं और हमारा फेवरेट मतलब दिन जिसको साल भर इंतज़ार करते हैं, यानी कि स्वतंत्रता दिवस, जिसकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, वो दिन भी आने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल ये वेब सीरीज जरूर देखिए अपने पैट्रियटिज्म को सपोर्ट करते हुए। तो चलिए सुनते हैं आजमाले सॉन्ग फ्रॉम ऑपरेशन सफेद सागर।
1: जिन्हें अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का मौका मिलता है।
2: मेरी स्क्वाड्रन में वेस्टर्न एयर कमांड के यंगेस्ट फाइटर पायलट्स हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे बॉयज मिग रेडी हों सर।
3: इट्स टाइम टू कॉल द गोल्डन एरोज़।

प्यार है इंडिया से, यारी है मशीन से, उड़े चाहे आसमां में, दिल है जमीन पे।

ऑन एयर आवाज़ दिया करिए, हम दौड़ के चले आएंगे। ओके मानवेंद्र महेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि ऑन एयर आवाज़ देने से आप लोग दौड़े चले आते हैं। फिलहाल दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आइए। देखिए आज हमने बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ की बात कर ली है। देखिए मूवीज़ तो बहुत ज़्यादा आजकल लोग प्रेफर नहीं करते, अपने टाइम के अकॉर्डिंग छोटी छोटी वेब सीरीज़ या किश्तों में छोटे छोटे एपिसोड्स देख लेते हैं, और कोई भी मतलब अपने टाइम के अकॉर्डिंग OTT प्लेटफॉर्म्स को हम लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बहरहाल अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, पर देखते हैं ना कि कभी कभी जाके हॉल में बैठ के मूवीज़ देखना मज़ेदार लगता है। मतलब अजीब सी, मतलब सुकून वाली वाइब आती है वहाँ पे। एनीवे सुकून तो मतलब ऐसा, मैं शांति की बात नहीं कर रही, सुकून की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई मर्तबा ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें लोगों को टाइम देना चाहिए, और लोगों को टाइम देने के साथ साथ हमें एक जो दौर है उससे थोड़ा हट के कुछ करना चाहिए। फिलहाल दौर तो बदलेगा ही, लेकिन आप सबसे बता दूं कि आज बॉलीवुड क्विज़ में ना सिर्फ क्विज़ होंगे बल्कि आप लोग को कुछ म्यूज़िक ऐसे मैं सुनाऊंगी, आपको गेस करना है कि वो गाना कौन सा है। ठीक है, मतलब आपको म्यूज़िक सुनने को मिलेगा, आप गेस करेंगे, जो सबसे पहले गेस करेगा आइदर फ्रॉम कॉल आइदर इन चैट रूम उनको अपनी पसंद का गाना सुनने को मिलेगा। आप कॉल करके भी गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप लोग एकदम फ्री हैं। ओके तो चलिए देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मेरी पसंद का गाना चल रहा है। हाँ फिलहाल मुझे लगता है कि बारिश वाला गाना बजा देना चाहिए। यही गाना प्ले कर देती हूँ क्योंकि ये ना सिर्फ गाना है बल्कि एक खुशी है जिसको हम लोग जीना चाहते हैं। तो ताल से ताल मिला ना सिर्फ गाना है, बारिश की धुन पे एक ऐसा म्यूजिक है जिसको हर कोई जीना चाहता है। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक। और जितने लोग रेडी हैं वो फटाफट से आ जाएं, और इस गाने के बाद आपको म्यूजिक सुना दिया जाएगा और आपको गेस करना है गाना कौन सा है। गेस करने वाले को उसकी पसंद का गाना सुनने को मिलेगा।

तो चलिए ताल से ताल मिलाते हैं और बिना किसी देरी के वापस से उसी दौर में चले जाते हैं जहाँ बैठे थे हम लोग काफ़ी देर पहले। तो चलिए चलिए चलिए बातें करते करते मैंने कहा था ना कि आज आपको म्यूज़िक सुना दिया जाएगा और आप लोग गेस करिएगा कि कौन सा गाना है। तो आई होप ये जो एनर्जी है ये आप लोग की ऐसी ही नहीं बनी हुई है, आपके पास जो गेस करने की कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए सबसे पहले आपको म्यूज़िक सुना दिया जाए, चलिए देखते हैं कौन गेस कर पाता है।

0: आई होप आप लोग गाना गेस कर चुके होंगे, और अगर गेस कर चुके हैं जल्दी से गेस करके गाना अपने चैट रूम में या कॉल करके बता सकते हैं कौन सा गाना है, ठीक है? और जो सबसे पहले बताएगा वो अपनी पसंद का गाना सुनेगा। तब तक के लिए आप मेरी पसंद का गाना सुनिए, क्योंकि बारिश का मौसम है तो बारिश वाले गाने तो होने ही चाहिए। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा बारिश वाला सॉन्ग, जो आपको और मुझे ले चलेगा उस दौर में जहाँ कुछ ही देर पहले हमने भी सोचा था कि चलिए बारिश में आग लगा ली जाए। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।
1: हाय,
0: हमारे
1: पहुंच
0: लिए और आप।
2: मैं पहुंच गई हूँ। He's just coming to pick me up.
1: 6 महीने में सिर्फ 2 दिन मिलना कैसे कर लेते हो यार? How do you sustain your love?
2: हम जब भी मिलते हैं, It's like falling in love all over again.

तो चलिए अगला म्यूजिक सुनने के लिए हो जाइए तैयार। चलिए देखते हैं कौन है जो गेस कर लेगा एक ही बार। सो बिना देरी किए सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा म्यूजिक।

आप लोग सुन चुके हैं और गेस भी करने को तैयार हैं। देखते हैं कौन सबसे पहले गेस करता है। बहुत ही प्यारा सा गाना है ये और मुझे उम्मीद है कि आप लोग गेस कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो बताइएगा। फ़िलहाल ये गाना बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत आसान भी नहीं है। तो चलिए सुनते हैं अगला गाना आप लोग के लिए हमारी तरफ से, बारिश वाला। वैसे रितेश गुड इवनिंग, क्या लिखा आपने मुझे कुछ समझ नहीं आया। सनी पांडे गुड इवनिंग, कैसे हैं सनी।

चलिए देखें किसने गेस किया सबसे पहले। भाई कोई गेस नहीं कर पाया। जी हाँ, हमारे एक लिसनर हैं जिनका नाम है आनंद, उन्होंने जल्दी से गेस कर लिया और भाई गाने की फरमाइश भी कर दी। उन्होंने बताया गाना एक जिसकी लिरिक्स मतलब मैं आपको बता देती हूँ, गाना है कहना ही क्या, और बिल्कुल सही गेस किया उन्होंने। और इसी के साथ मैं उनकी फरमाइश भी प्ले कर देती हूँ, उनको सुनना है गाना बहुत ही प्यारा सा, मतलब जो मुझे लगता है कि हम सभी की हमेशा से चेकलिस्ट में होता है। तो चलिए सुनते हैं गाना बारिश की जाए, ये उनका फेवरेट गाना है। तो उन्होंने कहा कि मैम मुझे ये गाना सुनना है, लेकिन इस गाने को सुनाने के पहले मैं चाह रही हूँ कि आपको एक और म्यूज़िक सुना दिया जाए जिससे आप लोग गेस कर लें और अगला जो गाना है वो अपने नाम कर लें। क्योंकि मैं तो चाहती हूँ ना कि कोई भी ऐसा रहे ना जिसको अपनी पसंद का गाना सुनने को ना मिले। चलिए गेस करिए।

0: आई होप आप लोग सुन चुके होंगे और गेस भी कर चुके होंगे गाना कौन सा है। तो चलिए हम लोग तब तक सुनते हैं आनंद की फरमाइश का ये गाना।
1: मेरी दादी बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी।
2: क्यों?
1: दादी बोलती है तू दुनिया में सबसे अलग है।
2: तेरी दादी और दुनिया को पता नहीं है कि तू क्या चीज है।

0: बात है बारिश की जाए। और भाई गेस किया है हमारे लिसनर ने,
1: ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते,
0: जिसका नाम है
1: सृष्टि।
0: सृष्टि सृष्टि ने गाना गेस किया है तेरे लिए। जी हाँ, गाना था तेरे लिए हम थे जिए होठों को सिए। और इनको भी भैया सुनना है, बड़ा अच्छा सा गाना। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप लोग की पसंद जो है ना वो मुझे एक दूर दुनिया में ले जाती है। और कलरफुल गाने एक साथ सुनने को मिलते हैं। इनको सुनना है फिल्म जीनियस से गाना तेरा फितूर। तो चलिए तेरा फितूर सुनते हैं, फिर इसके बाद अगले क्लू की ओर बढ़ते हैं। और क्लू से आंसर करने वाले लोगों की कमी आज दिख रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज आप लोग को अपने पसंद के गाने कम सुनने हैं क्या। हाँ फिलहाल है, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। जितने ज़्यादा लोग कॉल पे सुन पाए उनको ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग अक्सर कहते हैं कि चैट रूम पे हम लोग आंसर नहीं दे पाते और हम लोग फंस जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आंसर कोई भी दे कहाँ से भी दे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आंसर मिलना चाहिए और आपको अपनी पसंद का गाना सुनने का मौका मिलना चाहिए।

0: तो भाई हमने सृष्टि की पसंद का गाना सुन लिया, और चलिए अगले सवाल के लिए चलिए होते हैं तैयार। देखते हैं कौन करता है गेस ये प्यारा सा म्यूज़िक। फिलहाल मुझे लगता है कि आप सब आज गेस करने में थोड़ा सा मतलब टाइम लगा रहे हैं, लेकिन चलिए अगला गाना आसान है, देखते हैं कौन गेस करता है।
1: प्लीज हिला दी।

आई होप आप लोगों ने इतना आसान सा गाना तो गैस कर ही लिया होगा. जिसने भी गैस कर लिया फटाफट से चैट रूम में बता दे या फिर कॉल करके सुना दे. और मेरी तरफ से ये प्यारा सा गाना आप लोगों के लिए प्ले करती हूँ मैं. आई होप इस गाने को सुन के आपको मज़ा आ जाएगा.

बिल्कुल इस गाने को सुनने के बाद तो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई गाना बड़ा ज़्यादा मतलब दमदार था। फिलहाल नवीन जी हमारे साथ हैं और जुगल जी हैं, अनिल शास्त्री जी हैं, लेकिन अभी गाना किसी ने गेस नहीं किया। म्यूज़िक आप लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं, लेकिन चलिए जिसने गेस किया उसका नाम बता देती हूँ। गेस करने वाली का नाम है पूजा। पूजा ने गेस किया है गाना, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। और इन्हें गाना सुनना है मस्कारा। ओहो, नया गाना सुन के तो भाई आप लोग एकदम दिल लूट लेते हैं। और वो गाना जो आपकी प्लेलिस्ट में ना हो और मैं बजाऊं और फिर आपको मजा आए, तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। किस्म से यारा लाए मस्कारा लकिया निभाए रखी। आपसे सस्ता और आसान सा क्वेश्चन पूछती हूँ, इस गाने को किस फिल्म से लिया है? मस्कारा सॉन्ग किस फिल्म का है जल्दी से बताइए, और इसमें फीमेल एक्ट्रेस का नाम है।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
6: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज, 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
7: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
8: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
8: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
9: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
10: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
9: सच में, क्या खास है वहाँ?
10: बहुत कुछ है, वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही।
11: भाई, आज की शाम आप लोगों ने जो भी गेस किया वो मज़ेदार तो था, लेकिन मैं चाहती थी कि आप लोग और अच्छा भी गेस करें, पर कोई बात नहीं। जितने आंसर्स आए वो मुझे ज़्यादातर कॉल पे मिले, पर कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर आज की शाम जितनी बेहतरीन होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं। बहरहाल, फिर से मिलेंगे हम लोग कल आप लोग के साथ डॉक्टर लव वाले शो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन। कुछ ही देर में आप सुनेंगे अपने पसंद के गाने लगातार।
9: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
10: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
9: सच में? क्या खास है वहाँ?
10: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
9: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
10: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
9: और फोटोग्राफी वगैरह?
10: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
9: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
10: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
9: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

समझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

सो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल और क्या है आज की शाम में बहुत खूबसूरत बात जज्बात, मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। लेकिन उसके पहले कुछ कहना चाहूंगी, हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। आप लोग भी बताइएगा आप लोग की क्या राय है इस लाइन पे। उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। महेंद्र राजस्थान से, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, अनुष्का श्रावस्ती से, नवीन राजपूत एमपी से, राजू विश्वास सीतापुर से, उषा कश्यप गोंडा से, इदितिक साहू गोंडा से, रौनक तिवारी गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, निबर जी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी गोंडा से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, कार्तिक कश्यप सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। सो दोस्तों, फरमाइशी का पिटारा खुल गया होगा, उसमें से आज के जज्बात निकल गए होंगे, आई एम डैम श्योर। सो एंजॉय करते हैं पहली फरमाइश। महेंद्र को राजस्थान से सुनना है गाना हम दोनों दो प्रेमी। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा किशोर कुमार लता मंगेशकर जी की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही रोमांटिक सी आवाज में महेंद्र की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी और कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धुन पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

दुनिया के हम सारे रस्में तोड़ चले। हमने एंजॉय किया है किशोर कुमार लता मंगेशकर जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा नगमा। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है जुगल किशोर वर्मा जी की MP से, और उनको सुनना है पति पत्नी और तवायफ पिक्चर का गाना कहना ना तुम ये किसी से। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा मोहम्मद अजीज और सलमा की आवाज में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकड़। स्टे ट्यून्ड।

ट्राई किया पति पत्नी और तवायफ पिक्चर का ये गाना सिर्फ और सिर्फ जग्गू दादा की फरमाइश पर, एमपी वाले जग्गू दादा की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगली वाली डिमांड की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से। एंड दोस्तों आज मैं थोड़ा लो साउंड कर रही होंगी, उसके पीछे भी एक खास वजह।

बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है और इस लाइन को तो मैं आप सभी को डेडिकेट करना चाहूंगी, क्योंकि शायद प्यार मोहब्बत थोड़े दिन के कुछ घंटों के फासले में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इश्क है जो हमेशा रहता है ना। और इसी के साथ में मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं भी आप लोग को एक न्यूज़ देने वाली हूँ, कुछ अनाउंसमेंट मतलब लाइक कुछ बताने वाली हूँ, अपने जज्बात साझा करने वाली हूँ। उसके पहले ही हमारे एक लिसनर हैं नागेश्वर धाकड़, उनका कहना है कि मतलब आप हमें छोड़कर जा रही हैं, एक आप ही के खातिर तो हम सब रुके हुए थे, अगर आप भी ऐसे चले जाओगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे मैम। अरे बुद्धू, आप लोग को छोड़ के मैं कभी जा सकती हूँ? जैसे मैंने अभी आप लोग को लाइन डेडिकेट किया है, जैसे आप लोग की लाइफ का पार्ट अब बन चुका है ये फरमाइशी का महफिल और बन चुकी है ये आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल। वैसे आप लोग भी अब तो है ही ना अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल और ज्ञान स्थल 89.6 FM की हार्ट की धड़कन। सो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि कल मैं छुट्टी पे थी और मेरे बहुत सारे लिसनर्स ने मुझे मिस भी किया है। विशाल बेदर्दी का मैसेज आया हुआ है कि आपको कल बहुत मिस किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन पहले दोस्तों मेरा एक मतलब बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था ना, लेकिन कल मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट फिर से हो गया था दोस्तों। और भाई इस बार मेरे चिन पे चोट आई है, तो मेरे चिन पे स्टिचेस लगे हुए हैं दोस्तों, तो इस वजह से मैं शायद खुल के बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा मुंह खुल नहीं रहा है। तो अगर पूरा मुंह खुलेगा नहीं तो पूरी एनर्जी निकलेगी कहाँ से। सो आज इसी बोरिंग आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में आप लोगों को काम चलाना पड़ेगा। इनफैक्ट आज क्या शायद 2-4 दिन जब तक मेरे स्टिचेस नहीं निकल जाते हैं, उसके बाद में तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट ना दोस्तों। और आप लोग मेरे साथ हो तो हमेशा ऑल राइट होएगा। सो एंजॉय कर लेते हैं अब हमारे

आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है नवीन राजपूत जी की एमपी से, और उनको सुनना है गाना तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा। एंजॉय करते हैं होगी प्यार की जीत का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा जसपिंदर नरूला और रूप कुमार राठौड़ की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रेट ऑपरेटर नवीन राजपूत जी की फरमाइश पर, जो कि है ग्राम बासला तहसील शुजालपुर जिला साजापुर मध्य प्रदेश से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: करके निभाना। और मेरी ये फितरत है दोस्तों, जब तक शायद वो तो मेरे अपने जानते होंगे, फिलहाल हाँ जब तक मैं किसी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं होती हूँ तब तक मैं वादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई मेरे से प्रॉमिस करता है और वो तोड़ता है तो मुझे कितना बुरा फील होता है। तो ऐसे अगर मैं किसी से प्रॉमिस करूँगी और उसको तोड़ दूँगी तो सामने वाले को भी तो बुरा लगेगा ना, शायद मेरे कितना बुरा ना लगे लेकिन स्टिल लगेगा ना। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है राजू विश्वास की सीतापुर से, उनको सुनना है गाना पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। एंजॉय करेंगे ये वाला नगमा, लेकिन उसके पहले हमारे लिसनर्स का कहना है कि मैम आपने ये बोलकर मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया है, मैं तो थोड़ी देर के लिए डिप्रेशन में चला गया था, पता नहीं आप लोगों के साथ कैसा रिश्ता हो जाता है, छोड़ कर जाते हो तो मन भारी हो जाता है। ये तो है। अब भाई देखो, हम किसी से भी मिलेंगे, अगर मतलब किसी से भी हम मतलब पर डे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिजिकली मिल रहे हैं, मतलब लाइक कैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन यूज्ड टू हो जाते हैं, आदत तो ही जाती है ना दोस्तों उनको सुनने की, खुद को सुनाने की। नवीन राजपूत जी का कहना है कि मैम मुझे नहीं मालूम था कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, नहीं तो इतना पूरा एड्रेस नहीं लिखता, सॉरी आपको पढ़ने में तकलीफ है। अरे आप लोग के बीच आके तो अच्छा लग रहा है, अभी तक देखो स्टार्टिंग में हंसी नहीं निकल रही थी शायद, क्योंकि दर्द से करा रही थी शायद मैं, लेकिन देखो आप लोग के बीच आते ही देखो हंसी भी निकलने लगी, बस यही प्यार ही तो है ना, और क्या है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश मींस राजू विश्वास की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन,
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल। इसीलिए
0: कहती हूँ ना कि प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है। स्टे ट्यून्ड।

से तो मिले तो रिमझिम रिमझिम बरसे सावन। ओ माय गॉड दोस्तों, इन सब के चक्कर में तो मैं तो भूल ही गई थी कि ये तो सावन चल रहा है। सावन को ऐसे उदास उदास थोड़ी जाने देना है। नो नो नो नो नेवर। सो हैप्पी सावन एवरीवन। एंजॉय करते हैं हमारी आज की कोई फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है उषा कश्यप की गोंडा से। एंजॉय करेंगे उसकी फरमाइश, मतलब ये फरमाइश। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं कहना चाहूंगी, जॉन एलिया जी ने क्या खूब कहा है कि हादसा एक ही होता है तो रोती है नजर। हादसा एक ही होता है तो रोती है नजर, हादसे जब मुतवातिर हो तो हंसी आती है। अब तो भाई ये रोज का कुछ लिसनर्स मेरे पूछ रहे कैसे हुआ, क्यों मत जानो ना। अब तो आप लोग भी 2-3 सालों में यूज्ड तो हो गए होगे कि भाई इस लड़की का तो आए दिन का है। हाँ तो अब आप लोग भी मत पूछो रीजन व्हाई व्हाई, बस ये हादसे रोज के हैं तो अब तो हंसी आती है, बस हंसी आती है, बस यही चाहते हैं कि देखते हैं कि बुढ़ापे तक कितनी पसलियां टूटती हैं। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, मींस उषा कश्यप की फरमाइश। वैसे थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और आप सबकी दुआओं का असर है कि बार बार मैं आप सबके बीच में आती हूँ। वैसे मेरे कर्म और मेरे कांड ऐसे नहीं रहते हैं दोस्तों कि भगवान मुझे फिर से आप लोग के बीच भेज दे। स्टिल यू लव मी ना, थैंक यू सो मच।

0: एंजॉय करिए बहुत अतरंगी सा अनु मलिक का सुपर डुपर हिट नगमा। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। कहाँ से ढूंढ के लेके आते हो आप लोग? ये फरमाइश थी उषा कश्यप जी की और अगली फरमाइश हमारे पास में है ऋतिक साहू की गोंडा से। ऋतिक साहू को गोंडा से सुनना है गाना आज की रात, कोई गीत नया गाऊंगा। सो एंजॉय करते हैं अजय देवगन रवीना टंडन का ये गैर पिक्चर का गाना कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।

0: तुम लोगों का दिल बहलाऊंगी। गैर पिक्चर का ये गाना कुमार सानवल का याग्निक की आवाज में हमने एंजॉय किया है। और दोस्त बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले नवीन राजपूत जी का एमपी से कहना है कि उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं। गौर फरमाइएगा, उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में हालात बदल जाते हैं। सोचता हूँ काम कर करके रिकॉर्ड तोड़ दूं, सोचता हूँ काम कर करके रिकॉर्ड तोड़ दूं, कमबख्त सैलरी देख के ख्यालात बदल जाते हैं। सो ये कहना था नवीन राजपूत का। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। रौनक तिवारी को गोंडा से सुनना है गाना मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत
1: सारे गामा कारमा।
0: सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड स्कूल वाला नगमा किशोर कुमार जी की आवाज में।

तेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा किशोर कुमार की आवाज़ में नगमा। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों कार्तिक कश्यप की, और उनको सुनना है गाना देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, और क्या कहूँ कि शर्म से हैं लब सिले हुए। एंजॉय करते हैं किशोर कुमार लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये नगमा, और इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज़ की दुनिया में, जहाँ हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है फटाफट से जाके पेट पूजा कर लीजिएगा, फिर सीधे मिलते हैं 9 बजे। सो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए, इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
4: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
4: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहाँ के सरकार के बारे में कही गई।
1: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौते पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
5: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
1: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। 2 दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। एक रिपोर्ट।
7: मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रकाश मखदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान एनएफडीसी ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि एनएफडीसी और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फोन के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, थाईलैंड और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
8: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
9: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
10: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले एक सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
11: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानु के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन उठाया और ये पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी सुपर मायशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल और से सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो तविश खान लखनऊ से, मोहम्मद मुशीफ जी बाराबंकी से स्वागत है, और आप सभी का जो मेरे लिसनर्स पहले से फरमाइशी की महफिल में एकत्रित हैं, आप सभी का भी तहे दिल से स्वागत है। और दोस्तों अब इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास कोंडा से, उनको सुनना है गाना जादू भरी आंखों वाली। सो एंजॉय करते हैं दस्तक का ये नगमा सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर, जो की है आवाज विकास गोंडा से, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.67 गोंडा शहर की धड़कन का ये फरमाइशी सेगमेंट, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आवाज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में।

दोस्तों, ये फरमाइश थी धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगी कि उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। इतने सन्नाटे में इतने हादसे कैसे हुए, शहर जब जागा तो हर मंजर मुझे बदला लगा। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है अलका याग्निक जी की आवाज़ में रोमांटिक गाना रग रग में। इस तरह से एंजॉय करते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके का ये नगमा मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

हमने एंजॉय किया है मिश्रा ऑप्टिकल गोनर से अजय मिश्रा की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा हाउ रोमांटिक वाला नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है परी तिवारी की बालपुर गोंडा से और उनको सुनना है गाना मैं निकला गड्डी लेके। सो एंजॉय करते हैं दोस्तों गदर पिक्चर का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा उदित नारायण की आवाज में सिर्फ और सिर्फ परी तिवारी की फरमाइश पर जो की है बालपुर से। स्टे ट्यून्ड। मैं भी निकला था कल गड्डी लेके और अक्सर निकलता हूँ गड्डी लेके और एक मोड़ आता है या फिर मोड़ आता है चाहे नहीं आता है बस पता नहीं कौन सा मोड़ आ जाता है भाई। दोस्तों अब डर लगने लगा है।

तो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है निशा की, पटेल नगर गोंडा से, और निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना नरक। सो एंजॉय करते हैं बी प्राग जानी शहनाज गिल का ये गाना इश्क नामा का नगमा, पंजाबी सॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ निशा की फरमाइश।

हमने एंजॉय किया है। ये नगमा बढ़ते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की। नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना तू झूमता हुआ सावन में मोरनी तेरी। सो एंजॉय करेंगे ये नगमा, इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। सो अपना ख्याल रखना दोस्तों, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन, आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल, प्लीज समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। थैंक यू सो मच मुस्तफा जी, अनोखी शर्मा, मोहम्मद मुर्शीद जी, एवरीवन, जुगल किशोर वर्मा, नागेश्वर धाकड़, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया है, मेरे सभी लिसनर्स का थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।

0: मेरी गजल को मेरी जहां फकत गजल न समझ, एक आईना है जो हरदम तेरे मुकाबिल है, वो गुजरे जमाने की बातें, वो पुरानी यादें, गजल शेरो शायरी रात की महफिल, वाह क्या बात। तो अब आप भी बनिए ना इन महफिलों का हिस्सा, हर सैटरडे टू थर्सडे अपने आरजे मनु के साथ और फ्राइडे स्पेशल आरजे अदनान के साथ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।
1: आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर, एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88 40 33 95 84, अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: फ्राइडे स्पेशल बहारे गजल में आपका इस्तकबाल करते हैं आपके अपने आरजे अदनान। 6 दिन बाद 7वां दिन एक ऐसा आता है जब हमारा और आपका वापस से मिलना जुलना होता है, और हर बार हर हफ्ते एक खास मौजू पर हमारी आपकी बातचीत होती है। हालांकि महफिल की शमा किसी के नाम से जरूर जलती है, और आज इस फ्राइडे जो महफिल की शमा जल रही है, वो दरअसल आपको हम बता दें, जिसका न कोई उस्ताद है न कोई शागिर्द, फिर भी उसकी गजलें आज तक हर उस दिल की जुबां बनी हुई है जो मोहब्बत में टूटा है या जिसने वफा निभाई और बदले में सिर्फ खामोशी पाई। नाम है सुदर्शन फाकिर। जालंधर की गलियों में पले बढ़े इस शायर का असली नाम था सुदर्शन कामरा, जो कि पढ़ाई लिखाई में राजनीति शास्त्र और अंग्रेजी पढ़ी, मगर दिल हमेशा शेर व शायरी में अटका रहा। फाकिर साहब की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इन्होंने कभी अपनी शायरी को मुश्किल उर्दू के भारी भरकम लफ्जों में कैद नहीं किया। इन्होंने वो लिखा जो एक आम इंसान भी सुनते ही समझ जाए, महसूस कर ले, और यही वजह है कि बेगम अख्तर जैसी मलिकाए गजल ने अपने आखिरी दौर में उनकी 5 गजलें गाई, और आगे चलकर जगजीत सिंह की आवाज ने इनके लफ्जों को घर घर तक पहुंचा दिया। फाकिर साहब की शायरी का असल सबक यही है, दर्द को चीख में नहीं बल्कि सुकून में बयां करो। वो टूटते हैं मगर तमीज से टूटते हैं, वो शिकायत करते हैं मगर इल्जाम किसी और पर नहीं रखते। आज की इन गजलों का फलसफा बार बार आपको मिलने वाला है, मोहब्बत में हार कर भी अपनी तहजीब ना खोने का सबक। तो चलिए महफिल की जानिब चलते हैं।

फलसफे इश्क में पेश आए सवालों की तरह, फलसफे इश्क में पेश आए सवालों की तरह, हम परेशान ही रहे अपने ख्यालों की तरह। जिंदगी में कभी कभी हमें जवाब नहीं बस सवाल मिलते हैं, और मोहब्बत तो वैसे भी सवालों का ही दूसरा नाम है। कभी हमने पूछा है क्यों हुआ, कभी पूछा अब क्या होगा, और जवाब में हमेशा एक ही सवाल खड़ा हो गया। ये गजल उसी उलझन की कहानी है। फाकिर साहब कहते हैं कि हम इश्क के फलसफे में ऐसे उलझे कि खुद अपने ख्यालों की तरह परेशान रह गए, और जब उम्मीद की शीश सागर से कुछ मांगा तो हम खुद कांच के प्याले की तरह टूट गए। सोचिए जरा, कितनी बार हमने भी किसी रिश्ते में खुद को मिसाल की तरह पेश किया, कुर्बानी दी, और वक्त ने हमें ही इम्तहान में डाल दिया। ये गजल मोहब्बत में हार जाना कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसा तजर्बा है जो दुनिया को हमेशा हवाले की तरह याद रहेगा। आइए आपको पूरी गजल बताते हैं कि सुदर्शन फाकिर साहब आखिर लिखते क्या हैं, कि फलसफे इश्क में पेश आए सवालों की तरह, हम परेशान ही रहे अपने ख्यालों की तरह, शीश सागर में बैठे रहे जिक्र मसीहा लेकर, और हम टूट गए कांच के प्यालों की तरह, जब भी अंजाम मोहब्बत ने पुकारा खुद को, वक्त ने पेश किया हमको मिसालों की तरह, जिक्र जब होगा मोहब्बत में तबाही का कहीं, याद हम आएंगे दुनिया के हवालों की तरह।

जिंदगी में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हर तकलीफ सहकर भी शिकायत नहीं करते। वो कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो सहा खुद सहा। ये गजल उन्हीं खामोश बावकार लोगों के लिए है। फाखिर साहब यहां एक ऐसे किरदार की बात करते हैं जिसने जिंदगी को पूरी शिद्दत से जिया, जहर भी खुद पिया और फिर भी किसी को मुलजिम नहीं ठहराया। और यही उनका सबसे बड़ा जुर्म रहा कि उन्होंने माफ करना सीख लिया। ये फलसफा आज के दौर में बहुत काम का है, जहां हर कोई अपनी तकलीफ के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराने में लगा है। फाखिर साहब कहते हैं कि अपने जख्मों को खुद सीना सीखो, शिकायत मत करो, बस जीना सीखो। क्या कहती है ये गजल जो फाखिर साहब इन्हीं लफ्जों में बयां करते हैं कि जिंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, जिंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, जहर खुद मैंने पिया है कोई अफसोस नहीं, मैंने मुलजिम को भी मुलजिम नहीं कहा दुनिया में, बस यही जुर्म किया है कोई अफसोस नहीं। मेरी किस्मत में लिखे थे ये उन्हीं के आंसू, मेरी किस्मत में लिखे थे ये उन्हीं के आंसू, दिल के जख्मों को सिया है कोई अफसोस नहीं, अब गिरे संग के शीशों को हो बारिश फाकिर, अब कफन ओढ़ लिया है कोई अफसोस नहीं।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9281 976 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: उल्फत का जब किसी ने नाम लिया, रो पड़े अपनी वफा का सोच के अंजाम, रो पड़े हर शाम ये सवाल, मोहब्बत से क्या मिला, हर शाम ये जवाब की हर शाम रो पड़े। राहे वफा में हमको खुशी की तलाश थी, दो गाम ही चले कि हर गाम रो पड़े। रोना नसीब में है तो औरों से क्या गिला, अपने ही सर लिया कोई इल्जाम, रो पड़े अपने ही सर लिया कोई इल्जाम, रो पड़े। कभी आपके साथ शायद ऐसा हुआ हो कि किसी ने बस मोहब्बत का नाम लिया और आपकी आंखें भर आई हो, कोई जिक्र नहीं किया, बस लफ्ज मोहब्बत सुना और पुराना दर्द ताजा हो गया। ये गजल बिल्कुल उसी एहसास की तर्जमानी करती है। फाखिर साहब कहते हैं कि जब भी वफा की बात होती है तो अपने अंजाम का ख्याल आते ही हंसू निकल आते हैं। हर शाम ही एक ऐसा सवाल, मोहब्बत से क्या मिला, और हर शाम एक ही जवाब, रोना। दरअसल ये खूबसूरत सी गजल कहीं ना कहीं इस बात को बताती है कि मोहब्बत में सफर बहुत छोटा भी हो तो भी हर कदम पर इम्तिहान मिलता है। दो कदम चले नहीं कि हर कदम पर आंसू आ गए। मगर फाकिर साहब यहां भी एक बात साफ करते हैं, रोना नसीब में है तो किसी और से गिला क्यों, ये खुद एहतिसाबी है और अपनी ही जिम्मेदारी लेने का जज्बा, जो कि इस गजल को खूबसूरत बनाता है।

अगो आफ्ताब गुम बड़ी हसीन रात थी, चराग आफ्ताब गुम बड़ी हसीन रात थी, शबाब की नकाब गुम बड़ी हसीन रात थी। कुछ रातें ऐसी ही होती हैं जो अंधेरे के बावजूद सबसे रोशन याद रहती हैं। ये गजल भी कैसी ही रात की दास्तां है, जहां चराग भी गुम था, चांद सूरज भी गुम था, फिर भी वो रात बेहद हसीन थी। फाखिर साहब का यहां इशारा है कि असली रोशनी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि उस लम्हे में होती है जो हमें किसी अपने के साथ मिलता है। शराब का प्याला हो या मोहब्बत की महफिल, जब साथ अपना का हो तो अंधेरा भी हसीन लगने लगता है। लेकिन इसमें गहरी बात छिपी है। जिस किताब में लिखा था कि इश्क हराम है, वही किताब उस रात जल गई। यानी मोहब्बत के आगे हर पाबंदी, हर उसूल फीका पड़ जाता है। ये गजल जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे, जो कि अक्सर उन घड़ियों में छिपे होते हैं जब हमारे सारे हिसाब किताब भूलकर सिर्फ महसूस करते हैं, कुछ ऐसा ही कहती है ये गजल। और आइए इस गजल को मुकम्मल तौर पर आपको हम सुना ही देते हैं कि चराग व आफ्ताब गुम बड़ी हसीन रात थी, शबाब की नकाब गुम बड़ी हसीन रात थी, मुझे पिला रहे थे वो खुद ही शम बुझ गई, गिलास गुम शराब गुम बड़ी हसीन रात थी। लिखा था जिस किताब में कि इश्क तो हराम है, हुई वही किताब गुम बड़ी हसीन रात थी, लबों से जो लब मिल गए, लबों से लब ही सिल गए, लबों से लब जो मिल गए, लबों से लब ही सिल गए, सवाल गुम जवाब गुम बड़ी हसीन रात थी।

दुनिया से वफा करके सिला ढूंढ रहे हैं, हम लोग भी नादा हैं ये क्या ढूंढ रहे हैं। कुछ देर ठहर जाइए ऐ बंदे इंसाफ, हम अपने गुनाहों में खता ढूंढ रहे हैं। ये भी तो सजा है कि गिरफ्तार वफा हूं, क्यों लोग मोहब्बत की सजा ढूंढ रहे हैं। दुनिया की तमन्ना थी कभी हमको भी फाकिर, अब जख्म

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
8: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार श्रोताओ, रात का ये समय हमेशा कुछ अलग होता है। दिन का शोर थम चुका होता है, लेकिन यादों की आवाजें जाग जाती हैं। कई लोग इस समय गहरी नींद में होते हैं और कुछ लोग अपनी अधूरी बातों के साथ जाग रहे होते हैं। मैं हूँ आपकी अपनी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो का लेट नाइट हॉरर शो। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसमें न कोई खूनी हवेली है, न कोई चीखती हुई आत्मा, लेकिन यकीन मानिए कहानी समाप्त होने के बाद आप बहुत देर तक सोचते रह जाएंगे, क्योंकि कुछ आत्माएं डराने के लिए नहीं सिर्फ अपना वादा निभाने लौटती हैं। आज की कहानी का नाम है आखिरी खत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे हरिप्रसाद। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, चेहरे पर सादगी और आंखों में बरसों की ईमानदारी। पूरे 40 वर्षों तक उन्होंने डाकिया बनकर लोगों के घर घर खत पहुंचाए। किसी के बेटे की नौकरी का पत्र, किसी की बेटी की शादी का निमंत्रण, किसी माँ के नाम विदेश से आया संदेश, हर खुशी और हर दुख उनकी इस पुरानी चपड़े की थैली से होकर गुजरता था। रिटायर हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी एक आदत आज भी नहीं बदली थी। हर शाम वो अपनी पुरानी डाक थैली साफ करते, उसे बड़े प्यार से कपड़े से पोछते और मुस्कुरा के कहते, जब तक ये थैला मेरे पास है, मुझे लगता है मैं अभी भी लोगों की उम्मीदें ढो रहा हूँ। गांव के बच्चे उन्हें प्यार से डाक बाबू कहते थे। उस दिन भी शाम से बारिश हो रही थी। हरिप्रसाद आराम से बैठ गए, अपनी थैली की फटी हुई सिलाई ठीक करने लगे। फिर अचानक उनके मन में आया, क्यों ना अंदर भी टटोल के देख लें। और फिर अचानक उंगलियां भीतर किसी कागज से टकराई। उन्होंने हैरानी से अंदर हाथ डाला, धीरे धीरे एक पुराना पीला लिफाफा बाहर निकला। धूल जमी हुई थी, किनारे घिस चुके थे, लेकिन उस पे लिखा नाम अब भी साफ दिखाई दे रहा था। श्री अर्जुन मिश्र, भेजने वाली मीरा, तारीख 16 जुलाई 1994। हरि प्रसाद की आंखें फैल गई। उन्होंने खुद से कहा, हे भगवान, ये खत मेरी थैली में आज तक कैसे रह गया। उनके हाथ कांपने लगे। 40 साल की नौकरी में उनसे कभी ऐसी भूल नहीं हुई थी। उन्होंने लिफाफा मेज पे रखा और गहरी सांस ली। उसी क्षण बहुत तेज से बिजली कड़कने लगी और लाइट चली गई। पूरे कमरे में अंधेरा और सन्नाटा घिर गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ पल बाद उन्हें बहुत ही हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी, जैसे कोई स्त्री बहुत दूर से कोई पुराना दर्द भरा गीत गा रही हो। हरिप्रसाद ने टॉर्च जलाई। कमरा एकदम खाली था। उन्होंने खिड़की की ओर रोशनी डाली। बारिश की बूंदें कांच पे फिसल रही थी। कोई नहीं, उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद पड़ोस में से कोई आवाज आ गई होगी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर मेज पे गई, उनका दिल जोर से धड़क उठा। मेज खाली थी। वो पुराना लिफाफा मेज से उड़के उनकी गोद पे आ गया था। उन्हें याद ही नहीं था कि उन्होंने उसे कभी उठाया भी था। उन्होंने धीरे से हाथ में लिया। लिफाफा बिल्कुल सूखा था, जबकि खिड़की खुली हुई थी और बारिश की फुहारे कमरे में आ रही थी। उसी समय हवा के साथ चमेली की भीनी सी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। हरिप्रसाद ने बहुत धीमे स्वर में पूछा, कौन है, कोई है क्या इस कमरे में। कोई उत्तर नहीं मिला, सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी और दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी। उस रात हरिप्रसाद ने
चाहकर भी वो खत नहीं खोला। उन्होंने उसे अपने सीने से लगाया और मन ही मन निश्चय किया, कल सुबह चाहे हमें जहाँ भी जाना पड़े, ये खत अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचेगा। उन्हें तो बिल्कुल ये पता ही नहीं था कि सिर्फ ये एक खत नहीं, बल्कि 32 वर्षों से अधूरी पड़ी एक कहानी थी, जो अब खुद अपना अंत लिखने के लिए बेताब थी। क्या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति हरिप्रसाद को खत की मंजिल तक ले जाना चाहती थी, या ये सब एक बूढ़े डाकिये का भ्रम था? इस रहस्य का पहला पर्दा उठेगा एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: सुबह हो गई, बाहर से पक्षियों की आवाजें आ रही थी, हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी, दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। हरि प्रसाद की आंख में तो नींद थी ही नहीं, बार बार उनकी नजर उसी पुराने लिफाफे पर चली जाती। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो खत उन्हें बुला रहा हो। सुबह की पहली चाय पीकर उन्होंने अपना पुराना झूला उठाया, लिफाफा उसके अंदर रखा और निकल पड़े उस पते की तलाश में जहां उन्हें 35 साल पहले पहुंचना था। सड़कें अभी भी कच्ची पक्की थी, लोग आ जा रहे थे, बैलगाड़ियां चल रही थी, हल्की हल्की हवा भी बह रही थी और बूंदाबांदी वो तो हो ही रही थी, मगर किसी ने भी हरि प्रसाद को रोका नहीं। वो अपनी साइकिल पे चलते गए। गांव बहुत बदल चुका था, जहाँ कभी मट्टी के घर थे अब वहाँ पक्की दीवारें थी। पुराने बरगद की जगह एक छोटा सा बाजार बन चुका था। हरि प्रसाद कई लोगों से पूछ रहे थे, बेटा अर्जुन मिश्र का घर किधर है? हर कोई सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता। किसी ने कहा, नाम तो कभी सुना ही नहीं। किसी ने कहा, शायद ये बहुत पुराने जमाने की बात होगी, यहाँ तो कोई इस नाम का रहता ही नहीं। आखिरकार गांव के चौराहे पर एक बूढ़े चाय वाले ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, अरे आप तो डाक बाबू है ना? हरि प्रसाद मुस्कुराए, बोले, हाँ भाई, पहचाना तुमने? अरे कैसे नहीं पहचानूंगा, मेरी पहली नौकरी का खत भी तो आप ही लाए थे। अब मैं रिटायर हो गया हूँ और ये चाय की दुकान पे बैठता हूँ। दोनों कुछ पल मुस्कुराए, पुरानी पुरानी बातें अपने मन में याद किया। फिर हरि प्रसाद ने धीरे से पूछा, अर्जुन मिश्र कहाँ मिलेंगे? इतना सुनते ही चाय वाले के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने कुछ क्षण चुप रहकर पूछा, आपको इतने साल बाद उनका नाम किसने याद दिलाया? एक खत, हरि प्रसाद ने बहुत धीरे से उत्तर दिया। चाय वाले के हाथ से चाय का गिलास लगभग छूट गया। क्या ये वो मीरा का खत है? हरि प्रसाद चौंक पड़े, तुम मीरा को भी जानते थे? चाय वाले ने गहरी सांस ली, पूरा गांव जानता था उनको। मीरा और अर्जुन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन शादी के दो दिन पहले मीरा अचानक गायब हो गई। डाकिया बाबू ने पूछा, गायब हो गई? हाँ, 3 दिन बाद नदी के किनारे उसकी चप्पल मिली, लेकिन मीरा वो तो कभी मिली ही नहीं, ना उसके बारे में किसी ने कुछ सुना। हरि प्रसाद ध्यान से सुनते रहे। चाय वाले ने धीमे से कहा, लोग कहते हैं उसने नदी में छलांग लगा दी, कुछ लोग कहते हैं वो नाव में बैठ करके कहीं दूर चली गई और अर्जुन मिश्र को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई आज तक किसी को नहीं पता। हरि प्रसाद ने अपने झोले को कस कर पकड़ लिया। उन्हें लगा मानो भीतर रखा लिफाफा हल्का सा गर्म हो गया है। उन्होंने झट से झोला खोला, लिफाफा वही था, लेकिन उसमें चमेली की वही भीनी सी खुशबू आ रही थी जो पिछले रात उनके कमरे में फैली थी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। चाय वाले ने रास्ता बताया। गांव के आखिरी छोर पे एक पुराना मकान है, वहीं रहते हैं अर्जुन बाबू अकेले, बिल्कुल अकेले। धीरे धीरे हरि प्रसाद उस मकान के सामने पहुँचे। लकड़ी का पुराना दरवाजा जिस पर समय की धूल जमी थी, उन्होंने धीरे से दस्तक दी। कुछ क्षण तक कोई उत्तर नहीं मिला, फिर अंदर से बहुत धीमे कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला, सामने लगभग 75 वर्ष का एक वृद्ध खड़ा था। चेहरे पे गहरी झुर्रियां, लेकिन आंखों में जैसे कोई आज भी किसी का इंतजार कर रहा हो। जी कहिए, क्या काम है? हरि प्रसाद ने कांपती आवाज में कहा। क्या आप अर्जुन मिश्रा हैं? वृद्ध ने सिर हिलाया। जी मैं ही अर्जुन हूँ। हरि प्रसाद की आंखें भर आई। उन्होंने झोले से वो पुराना लिफाफा निकाला, दोनों हाथों से आगे बढ़ाया और बस इतना कहा, अर्जुन जी मैं बहुत देर से आया हूँ। अर्जुन ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। जैसी उनकी नजर भेजने वाले के नाम पर पड़ी, उनका पूरा शरीर थरथरा उठा। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, मीरा। उसी क्षण घर की दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी, जो बरसों से बंद थी, अचानक टिक-टिक करके चलने लगी। हरि प्रसाद और अर्जुन दोनों एक साथ उस घड़ी की ओर देखने लगे। अर्जुन की आंखों में भय उतर आया। उसने धीमे स्वर में बोला, डाक बाबू, ये घड़ी तो 30 साल से बंद है। टिक टिक की आवाज और स्पष्ट हो गई और फिर अचानक चमेली की खुशबू उस कमरे में फैलने लगी। श्रोतागण, क्या ये केवल संयोग था या किसी ने सचमुच समय को फिर से चलाना शुरू कर दिया था? क्या मीरा की कहानी अब खुद अपने शब्दों में सुनाई जाएगी? जानेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

वेलकम बैक प्यारे श्रोतागण। कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी सजा मृत्यु नहीं होती, बल्कि वो इंतजार होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। 32 साल 384 महीने और 11,000 से भी ज्यादा दिन अगर कोई किसी का इंतजार करे तो क्या प्रेम बचा रहता है या सिर्फ आदत बन जाती है? आज इस प्रश्न का उत्तर शायद समय स्वयं देने वाला है। अर्जुन ने कांपते हाथों से खत खोला। हर शब्द जैसे उसके सीने में उतरता जा रहा था। पत्र समाप्त हुआ लेकिन अर्जुन उसी कागज को देखते रहे। फिर उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ पल तक कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ रोते रहे। हरिप्रसाद ने धीरे से अपना हाथ उनके कंधे पे रखा, बोला, अर्जुन जी। अर्जुन ने कहा, नहीं डाक बाबू, आज मुझे बोलने दीजिए। 32 साल से जो शब्द मेरे भीतर कैद है, आज उन्हें बाहर आने दीजिए। मीरा, मीरा तुम्हें याद है, तुम कहती थी अगर कभी हम बूढ़े हो गए तो शाम को इसी बरामदे में बैठकर बारिश देखेंगे। मैंने ये बरामदा कभी नहीं बदला। हर साल इसकी टूटी हुई कुर्सी ठीक करवाई क्योंकि मुझे लगता था एक दिन तुम आओगी और फिर मुझे बहुत डांटोगी। अर्जुन, तुमने घर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। तुम्हें पता है मीरा, लोग कहते थे तुम मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मेरा दिल हर बार कहता था, नहीं, मेरी मीरा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो जरूर लौटेगी क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था। अर्जुन ने खत को चूम लिया। उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। तुमने लिखा है तुम मुझे बचाना चाहती थी, लेकिन मीरा, कभी कभी किसी को उसकी सांसों से अलग करके क्या बचाया जा सकता है। मैं जिंदा था लेकिन जिया नहीं। लोग मुझे अकेला कहते रहे, उन्हें क्या पता मैं अकेला था ही नहीं। हर शाम मैं तुमसे बातें करता था, तुम्हारे हिस्से की चाय भी बनाता था। आज भी रसोई में 2 कप रखे हैं। हरिप्रसाद की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, अगर उस दिन ये खत मेरी नजर में आ जाता तो शायद। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं डाक बाबू, आज अपने आप को दोष मत दीजिए, गलती आपकी नहीं थी। अगर ये खत पहले आ जाता तो शायद मैं मीरा को कभी जाने ही नहीं देता, और तब हर दिन वो अपने दर्द के साथ मरती रही। हरिप्रसाद फूट फूट के रो पड़े। लेकिन एक डाकिये की सबसे बड़ी पूंजी उसका विश्वास होता है। आज पहली बार मुझे लग रहा है मैं हार गया, मैं अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर पाया। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछे। नहीं, आप हारे नहीं हो, आप तो आज भी एक प्रेम कहानी को उसकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। घड़ी में 12 बज गए। 12वीं घंटी बजते ही पूरा कमरा अचानक बिल्कुल शांत हो गया। बारिश की आवाज जैसे किसी ने धीमी कर दी हो। दीपक की लौ बिना हवा के धीरे धीरे कांपने लगी, और तभी वही चमेली की भीनी सी खुशबू जो पिछली रात हरिप्रसाद के घर आई थी पूरे कमरे में फैल गई। हरिप्रसाद ने चौक के चारों ओर देखा। अर्जुन, क्या तुमने? अर्जुन ने आंखें बंद कर ली, उनके होंठ कांपे। हाँ, वो आ गई है। हरिप्रसाद ने घबरा के पूछा, तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही है? अर्जुन मुस्कुराए, अरे ये तो वो अपना पसंदीदा गीत गा रही है। जब भी बारिश होती थी वो यही गुनगुनाती थी। गुनगुनाहट धीरे धीरे और पास आने लगी। फिर बरामदे में रखी खाली लकड़ी की कुर्सी अपने आप हल्के से हिलने लगी। हरिप्रसाद का गला सूख गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला, सिर्फ कुर्सी धीरे धीरे झूल रही थी। फिर
गीले पैरों के निशान दरवाजे से कमरे की ओर दिखाई देने लगे। बाहर बारिश हो रही थी। अंदर आते आते वे निशान सूख नहीं रहे थे, बल्कि हल्की चमेली की पंखड़ियों में बदलते जा रहे थे। हरि प्रसाद ने जीवन में पहली बार डर और शांति दोनों को एक साथ महसूस किया। अर्जुन अपनी जगह से उठे, धीरे धीरे उन निशानों की ओर बढ़े। उनकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, वो बहुत शांत थे। मीरा, अगर सचमुच तुम हो तो प्लीज इस बार छिपना मत। 32 साल से मैं सिर्फ तुम्हारी खामोशी सुन रहा हूँ। आज एक बार अपनी आवाज सुना दो। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि दोनों की सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी। और तभी अर्जुन के ठीक पीछे एक बहुत धीमी, बहुत परिचित और बहुत ही स्नेह भरी आवाज आई। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। आवाज फिर आई, इस बार और भी पास। इस बार अर्जुन, मैं तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। प्यारे श्रोतागण, कहानी अब उस मोड़ तक पहुंच चुकी है जहां शायद प्रेम मृत्यु से भी बड़ा होने वाला है। क्या सचमुच 32 वर्षों का इंतजार आज समाप्त होने जा रहा है, या रात अभी कोई और रहस्य अपने भीतर छिपाए बैठी है? कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आखिरी खत का सबसे भावुक और सबसे अलौकिक पल अभी बाकी है। सुनते रहिए 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो। हम लौटेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो का लेट नाइट हॉरर शो और मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे। कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ 32 वर्षों का इंतजार पहली बार आवाज बनकर लौटा था। अर्जुन ने धीरे धीरे मुड़कर देखा, दरवाजे के पास एक सफेद साड़ी में एक युवती खड़ी थी। वही मासूम मुस्कान, वही बड़ी बड़ी सी प्यारी आंखें, समय जैसे उसके लिए कहीं रुका ही नहीं था। लेकिन इस बार अर्जुन भागकर उसके पास नहीं गए, वो बस उसे देखते रहे, जैसे डर हो कि पलक झपकते ही फिर वो खो जाएगी काफी समय के लिए। काफी देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ आंखें बोलती रहीं। फिर मीरा मुस्कुराई, इतने सालों बाद भी सिर्फ देखते रहोगे या कुछ कहोगे भी? अर्जुन की आवाज टूट गई, अगर बोलने लगा तो शायद रोना बंद नहीं कर पाऊंगा। मीरा की भी आंखें भर गई, रो लो अर्जुन, आज 32 साल का हिसाब आंसुओं से ही पूरा होने दो। अर्जुन एक एक कदम उसकी ओर बढ़े, तुम्हें पता है मैंने कभी नहीं माना कि तुम इस संसार में नहीं हो या तुम मुझे छोड़ के चली गई। सब कहते थे भूल जाओ, लेकिन जिसे दिल हर सांस में महसूस करे उसे कोई कैसे भूल सकता है। मैं हर शाम तुमसे बात करता था, तुम्हारे पसंद का दीपक जलाता था, तुम्हारे पसंद की चाय बनाता था और जब बारिश होती थी तो एक कुर्सी हमेशा खाली छोड़ देता था। मीरा धीरे से बोली, मैं आती थी अर्जुन। अर्जुन ठिठक के, क्या? हाँ, हर बारिश में जब तुम बरामदे में बैठते थे मैं यही होती थी। जब तुम कहते थे मीरा आज बारिश बहुत हो रही है तो मैं मुस्कुराती थी, जब तुम रोते थे मैं तुम्हारे आंसू नहीं पोंछ पाती थी, सिर्फ तुम्हारे पास बैठी रहती थी। अर्जुन फूट फूट के रो पड़े, तो फिर मीरा इतना दर्द क्यों दिया, एक बार सामने क्यों नहीं आई? मीरा ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि अर्जुन तुम्हें जीना था। जब तक तुम्हारी सांसों में किसी का सहारा बनने की ताकत थी मुझे लौटने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आज तुम्हारा इंतजार पूरा हो गया है। हरी प्रसाद चुपचाप कोने में खड़े थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटी मैंने जीवन में लाखों खत पहुंचाए, लेकिन आज पहली बार समझ में आया कि कुछ खत कागज पर नहीं लिखे जाते, वे दो धड़कनों के बीच लिखे जाते हैं और उनका पता सिर्फ ईश्वर जानता है। मीरा ने सर झुकाकर प्रणाम किया, डाकिया बाबू अगर आप उस दिन ये खत पहुंचा देते तो शायद अर्जुन मुझे जीने के लिए मजबूर करता। मैं बहुत बीमार थी और मैं हर दिन उसे टूटते हुए देखती, आज जो कुछ हुआ वो शायद ईश्वर की सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर योजना थी। हरी प्रसाद की आवाज भर्रा गई, तो क्या प्रेम का अंत यही होता है? मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बाबूजी, सच्चे प्रेम का अंत नहीं होता, उसकी प्रतीक्षा समाप्त होती है। बाहर बारिश धीरे धीरे थमने लगी थी। मीरा ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया, अर्जुन आज चलोगे मेरे साथ? अर्जुन ने बिना एक पल सोचे अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। फिर अचानक उन्होंने हरी प्रसाद की ओर देखा, डाक बाबू? जी बेटा, अगर कभी ऊपर भी डाक खाना हुआ तो वहाँ भी नौकरी कर लीजिएगा, हो सकता है बहुत से खत अब भी पहुँचना बाकी हो। तीनों हंस पड़े और उसी हंसी में तीनों की आंखें भीग गई। मीरा ने धीरे से कहा, चलो अर्जुन, अब वहाँ कोई इंतजार नहीं करेगा क्योंकि हम दोनों साथ होंगे। धीरे धीरे कमरे में एक उजली शांत रोशनी फैलने लगी। हरि प्रसाद ने भी अपनी आंखें बंद कर ली,
उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा हो। गांव वालों ने अर्जुन के घर का दरवाजा खुला देखा। सब अंदर पहुंचे। अर्जुन अपनी उसी पुरानी कुर्सी पर बैठे थे, सिर हल्का सा पीछे टिका हुआ था, होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो शायद 32 वर्षों से कहीं खो गई थी। उनकी मुट्ठी बंद थी। जब हरि प्रसाद ने धीरे से उसे खोला तो उसमें वही पुराना खत था, लेकिन अब उसके नीचे एक नई पंक्ति लिखी हुई थी। वो पंक्ति कल रात वहाँ नहीं थी। उस पे लिखा था, डाक बापू धन्यवाद, आपने मेरा खत नहीं पहुँचाया, आपने मेरा इंतजार खत्म किया है, धन्यवाद मीरा। हरि प्रसाद की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने खत को अपने माथे से लगाया, धीरे से बोले, आज मेरी 40 साल की नौकरी सफल हो गई। उसी समय बरामदे से हवा का एक झोंका आया, खाली कुर्सी धीरे से अपने आप हिली और चमेली की दो ताजा कलियां अर्जुन के चरणों के पास आकर ठहर गई। श्रोताओं, हम जीवन भर लोगों को खोने से डरते हैं, लेकिन शायद प्रेम में कोई कभी खोता नहीं। कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं, कुछ हमारी यादों में और कुछ हमारी हर बारिश में। अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपने बरसों से बात नहीं की,

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
5: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
4: और जेंट्स के लिए?
5: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
4: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 9125-70-75-93 और 9696-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
6: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9281-976-9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
6: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: की स्किल है टच वुड, टच वुड, टच वुड, स्किल है, स्किल है, टच वुड, टच वुड, स्किल है। मैं पुजारी जो बन का बन जाऊंगा एक दिन जोगी, इतने टाइम से तेरे पीछे कब दोगे लाजमाले बेबी, कली कहीं तो मुझको मिल, करूं कोई अनहोनी तो तू खा लियो पिल।
1: अरे कुछ नहीं होता,
0: मैं तेरा